अनुसंधान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को

0: सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्टैग अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंदा के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल SE.com census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। जैगथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटी। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों में अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते दो गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who've gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in the society over such conduct were understandable, childhood is also

0: क्या है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और इतना ब्यूटीफुल यू नो मॉर्निंग है और आज

एक अगस्त की खूबसूरत सी सुबह, सावन का तीसरा सोमवार, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं, बादलों की चादर और मौसम की दिलकश अदाएं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने आज की सुबह को अपने सबसे सुंदर रंगों से सजा दिया हो। और सच कहूँ दोस्तों, आप सबसे हर सुबह मुलाकात होना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है, मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। और आज जब मैं ऑफिस की तरफ आ रही थी ना दोस्तों, तो रास्ते का नज़ारा दिल को छू ले गया। छोटे छोटे बच्चे चमचमाती यूनिफॉर्म में, कंधों पर स्कूल बैग लिए, कोई अपनी मम्मा के साथ तो कोई अपने पापा जी के साथ बाइक पर स्कूल जा रहे थे, तो कोई अपनी साइकिल से मुस्कुराते हुए स्कूल की ओर आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिव भक्त भी हाथों में जल बेलपत्र लेकर मंदिर जा रहे थे। और कितनी ही वर्किंग वुमेन अपने सपने और जिम्मेदारियों के साथ साथ लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर निकल चुकी थी। यही तो है जिंदगी, हर किसी की मंजिल अलग है लेकिन हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। और इस प्यारी सी सुबह की शुरुआत करते हैं मुस्कान, अच्छी सोच और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग। आपकी सुबह को बिंदास बनाने के लिए आरजी खुशी आ चुकी है। सावन का पहला शनिवार और पहली तारीख है, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज। 1 अगस्त की तारीख है दोस्तों, और आज का शुभ विचार कहता है कि मुश्किल आपकी राह नहीं रोकती बल्कि आपको मजबूत बना देती है। दोस्तों जिंदगी में ना ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने चुनौतियों का सामना ना किया हो, लेकिन हर मुश्किल हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हमारे हौसलों को और मजबूत बनाती है। कहते हैं ना, जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान संघर्ष से गुजर कर और बेहतर बनता है। तो अगर आज आपकी राह में कोई चुनौती हो तो घबराइए मत, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है वही मुश्किल आपको आपकी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा हो। तो चलिए इसी थॉट के साथ करते हैं अपने शो की शुरुआत। बाहर का मौसम बड़ा ही औसम है। वक्त हुआ है 8:26 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और इतना सुहाना सा मौसम है तो एक सुहाना सा गाना भी होना चाहिए ना आज की सुबह। ये ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी प्यारे श्रोताओं के लिए। मुझे पता है बहुत सारे श्रोता तो अभी ऑन द वे कार में हैं, और कुछ अभी किचन में मैम ब्रेकफास्ट बना रही हैं।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

बिल्कुल दोस्तों, मौसम ने तो अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है। बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और सुबह सुबह खुशी को भी यहाँ पर आने का मौका मिल चुका है आपसे मुलाकात करने का। वैसे तो मॉर्निंग में आते ही 10 बजे, लेकिन आज सुबह आपसे मुलाकात कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। 8 बजे आज जल्दी आ गए हम। तो एवरीवन बताएगा आपको कैसा लग रहा है सुबह सुबह खुशी को सुनकर, खुश हुए आप या नहीं? हाँ, मुझे पता है आप आरजे आनंद जी को मिस कर रहे हैं, लेकिन आज के लिए आनंद सर की जगह खुशी ने ले ली है। और वक्त मैं आपको बता देती हूँ एवरीवन, सुबह के 8:35 हो गए हैं। जी हाँ, 8:35 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में टाइम हो गया है। और दोस्तों, नई सुबह नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना कि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं होता, बल्कि आने वाले कल के लिए भी एक सीख भी होता है। तो आइए जानते हैं 1 अगस्त के दिन इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास दर्ज हुआ है। तो दोस्तों, साल 1920 में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना और लाखों भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा गया। इसी दिन 1920 में महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हुआ। उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। और दोस्तों, 1932 में हिंदी सिनेमा की सदाबहार अदाकारा मीना कुमारी जी का भी जन्म हुआ था। अपनी शानदार अदाकारी के कारण उन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। और 1957 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयास से नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, ताकि देश में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। १९१४ में आज ही के दिन जर्मनी ने रूस पर हमला किया और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। और दोस्तों, 1960 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने कराची के स्थान पर इस्लामाबाद को अपनी नई राजधानी घोषित किया। तो दोस्तों, इतिहास हमें ये सिखाता है कि हर दिन अपने साथ कोई ना कोई प्रेरणा, संघर्ष और उपलब्धि लेकर आता है। उम्मीद है कि आज का दिन भी आपके जीवन में नई खुशियां और नई सफलता लेकर आए। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले शानदार सेगमेंट की ओर। सुनवाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक जो आपकी मॉर्निंग को बनाएगा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो एवरीवन, आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपना गुड मॉर्निंग हमें विश कर सकते हैं। इतना स्वीट सा एंड इतने प्यारे प्यारे आप सब हैं। ओए होए, आज तो बड़े सोने लग रहे हो सारे सारे। आप किधर जा रहे हो वन सवर के? अच्छा, ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तैयार हो जाइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एवरीवन, अगर हमें कहीं भी जाना हो, चाहे ऑफिस हो या फिर कोई मीटिंग के लिए हमें कहीं भी जाना हो, तो हमेशा घर से जल्दी ही जाना चाहिए। क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है कि रास्ते में ट्रैफिक जाम की वजह से थोड़ा 10-5 मिनट इधर उधर हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आप घर से समय से पहले निकलेंगे तो आप अपनी मंजिल तक समय पर पहुंच ही जाएंगे। और क्या कुछ स्पेशल है आज के दिन, सब आपको पता लगेगा एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। बने रहिए खुशी के साथ और पहुंचाएगा अपने भी थॉट, अपने विचार एंड अपने प्यारा सा गुड मॉर्निंग। हम इंतजार कर रहे हैं। और सुनवाते हैं आज की सुबह एक बेहतरीन ट्रैक जो आपकी सफर को बनाएगा और भी ज्यादा शानदार।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग एवरीवन, विंदास मॉर्निंग में आप सभी का वेलकम है। आरजे खुशी है आपके साथ। और देखिए दोस्तों, दिल तो झूमने के लिए तैयार हो ही जाता है जब इतने खूबसूरत गीत चलते हैं, क्यों? यह है आपके अपने शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और एवरीवन, आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं आज की सुबह। एंड दोस्तों, मैं आपसे ना एक सुबह सुबह कुछ मैं सोच रही हूँ कि मालूम कर लेती अपने दोस्तों से, थोड़ी सी बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सच सच बताइएगा, ठीक है, आज की सुबह आप जब उठे तो सबसे पहले आपने क्या देखा? हाँ, मोबाइल, या प्रभु को धन्यवाद किया, या फिर मिनर में सबसे पहले अपना चेहरा देखा? हाँ बताइए। या फिर सुबह सुबह उठते ही मम्मा एक कप चाय बना दीजिएगा मेरे लिए? बताइए बताइए, क्या किया आज की सुबह सबसे पहले उठकर आपने? सबसे पहले उठकर आपने क्या किया? मोबाइल चेक किया, या प्रभु को धन्यवाद दिया, या फिर आपने मिनर में अपना चेहरा देखा कि सुबह सुबह चलिए

0: अपने ही दर्शन कर लेते हैं या फिर एक कप चाय का दीदार हो गया। बताइए बताइए दोस्तों। ओहो कितना प्यारा मुस्कुराते हैं आप, किसी की नजर ना लगे, काला टीका लगा के रखिएगा आप सब। ऐसे ही मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं आप सब। और दोस्तों मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं आज की मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन इतना प्यार करने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ श्रोता तो हमारे क्या करते हैं, सुबह उठते ही ना सबसे पहले वो रेडियो का दीदार करते हैं। अरे भाई मेरा रेडियो किधर है, 6 बज गए मुझे भजन चलाने। हाँ दिन की शुरुआत रेडियो के साथ होती है मेरी तरह। चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइएगा कि आज की मॉर्निंग आप सबसे पहले आपने किसका दीदार किया, मोबाइल का या फिर मिनर का, मतलब मिनर में खुद को देखा शीशे में, या फिर सुबह सुबह चाय के कप का दीदार हो गया है आपके, जैसे ही आप उठे तो आपके लिए चाय आ गई हो। क्योंकि कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो जिनको बैठती पसंद है, लाइक बेड के पास ही उनको चाय चाहिए उसके बाद ही वो बेड से उतरते हैं। मेरे दिन की शुरुआत कैसे होती है मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं, यस लिखकर भेज सकते हैं आज की सुबह कि मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हूँ। फिलहाल यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं, मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग मैम हम आपको सुन रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं राजू यादव जी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, अपना गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, धन्यवाद, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और ये भी कहती हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग खुशी मैम आपको, इतने स्वीट हैं आप, हाय रब्बा मैं वारी जावा आप सभी पर। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अनजान जी का, गीता कश्यप जी का, लक्ष्मी कश्यप जी हैं, संतोष कश्यप जी हैं, शुभ शनिवार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और हमारे पास एक प्यारा सा वॉइस नोट भी आया है, तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं सर की सुबह सुबह प्यारी सी आवाज़ क्या पहुँचाते हैं आज की मॉर्निंग। तो बिना किसी देरी के सुन लेते हैं उनकी खूबसूरत सी आवाज़ और आप तक भी सुनवा देते हैं।
1: चेहरे की हंसी दिखावट सी हो रही है, चेहरे की हंसी दिखावट सी हो रही है, असल जिंदगी भी बनावट सी हो रही है, अनबन बढ़ती जा रही है रिश्तों में भी, अब अपनों से भी बगावत सी हो रही है, पहले ऐसा था नहीं जैसा हूँ आजकल, पहले ऐसा था नहीं जैसा हूँ आजकल, मेरी कहानी भी कहावत सी हो रही है, दूरी बढ़ती जा रही मंजिल से मेरी, चलते चलते भी थकावट सी हो रही है, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरी बातों में भी, शब्द कम पड़ रहे हैं मेरी बातों में भी, खामोशी की जैसे मिलावट सी हो रही है, और मशवरे की आदत ना रही लोगों को, और मशवरे की आदत ना रही लोगों को, अब गुजारिश भी शिकायत सी हो रही है। सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, मैं आपका दोस्त कुलदीप गुप्ता उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा सा वॉइस नोट पहुंचाया है आज के सुबह। दोस्तों आप भी अपनी आवाज़ में कोई मैसेज देना चाहते हो, हमारी बहुत सारी ऑडियंस हमको सुन रही है एंड आपको भी सुन रही है, तो आप कोई थॉट जो आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने दिल की बात अपने दोस्तों तक पहुँचानी चाहिए तो पहुँचा सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना आज की मॉर्निंग, मैंने आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया है फ्रॉम द मूवी मुझसे शादी करोगी। और गाना बहुत ही प्यारा है, सभी को पसंद आने वाला है, क्योंकि मुझे आपकी चॉइस का पता है एवरीवन। और दिल से दिल का रिश्ता है, अपने दोस्तों की दिलों की बात खुशी नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, क्यों सही कहा ना। चलिए सुनिए गए प्यारा सा ट्रैक।

स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है दोस्तों, इतना ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज। और सच कहूँ जब इतने प्यारे प्यारे श्रोता मेरे साथ हों तो इतनी प्यारी मॉर्निंग में, और हमें क्या चाहिए, आपका साथ हमारे साथ बना हुआ है। ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर शो का नाम है बिंदास मॉर्निंग, खुशी आपके साथ है। और दोस्तों वक्त हुआ है अभी 9:07। और दोस्तों अभी मयंक शर्मा जी का कॉल आया था, उन्होंने बताया है कि दिल्ली रोड पर हल्का स्लो ट्रैफिक है। अगर आप भी दिल्ली रोड की तरफ जा रहे हैं तो आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिल जाएगा। एंड अगर आप ऑन द वे अभी कार में हैं एंड आपको लगता है कि आपके जिधर आप जा रहे हैं उधर के साइड ट्रैफिक है, तो आप मुझे ट्रैफिक अपडेट भी बता सकते हैं, ताकि जो और भी हमारे लिसनर्स हैं जो ऑन द वे कार में जा रहे हैं उनको भी राहत मिल जाएगी, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये अपडेट मुझे आप बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

और दोस्तों आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था कि आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो सबसे पहले आप मोबाइल का दीदार करते हैं या फिर मिरर में अपना चेहरा देखते हैं या फिर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है, हमारे साथ रूही जी जुड़े हैं न्यू मुरादाबाद से। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहते हैं मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करता हूँ क्योंकि दोस्तों के मैसेज आए होते हैं। अरे वाह रोहित जी, लगता है आपकी गुड मॉर्निंग की अटेंडेंस सबसे पहले व्हाट्सएप पर लगती है। बस ध्यान रहे मोबाइल के साथ साथ ना घर वालों को भी गुड मॉर्निंग स्माइल जरूर दीजिएगा, उनका नोटिफिकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आया है विकास नगर से सुमन जी का। सुमन जी कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, आपको सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कहते हैं कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले आईने में खुद को देखती हूँ और खुद को एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। वाह सुमन जी क्या बात है, इसे कहते हैं दिन की परफेक्ट बिगनिंग। जब हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं ना तो पूरे दिन भर हम मुस्कुराते हुए, हमारा पूरा दिन मुस्कुराते हुए गुजरता है। तो दोस्तों आज आप भी आईने में देखिए खुद को, एक बात जरूर कहिएगा मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ और आज का दिन मेरा सबसे खूबसूरत दिन है। फिर देखिएगा दोस्तों हर किसी की सुबह की अपनी अपनी मतलब आदतें होती हैं, कोई चाय से दिन की शुरुआत करता है, कोई भगवान के नाम से, कोई मोबाइल से और कोई मुस्कुराहट से। अब आपकी बारी है, आप बताइएगा कि आपकी सुबह का पहला साथी कौन है। और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है एंड ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं राजा कश्यप जी, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है हर हर महादेव खुशी जी, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ सर। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं बबलू सैनी जी मुंबई महाराष्ट्र से, एंड उसके अलावा एक और प्यारा सा मैसेज हमारे पास आया है और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी। कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा थॉट आज की मॉर्निंग शेयर किया है। कहते हैं कि ये दुनिया बिल्कुल ऐसी है, दिखती है सब अपने हैं, दिखते सब अपने हैं पर अपना कोई नहीं है, खोजना पड़ता है। ये तो बात है सब, लेकिन जब कोई अच्छा साथी अच्छा दोस्त मिल जाता है ना तो उस रिश्ते को हमें संभाल कर रखना चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली मेम्बर्स हो। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग मैम, नाहिद फातिमा जी का रामपुर से मैसेज आया है। कहती हैं कैसी हैं आप, आपकी आवाज बहुत स्वीट है, थैंक यू। और ये कहती हैं कि हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है, बस खुद पर भरोसा रखो, अच्छे लोग जिंदगी में फूलों की तरह होते हैं, जितना कम होते हैं उतने ही खास होते हैं। क्या बात है नाहिद जी, इतना प्यारा थॉट आज की मॉर्निंग आपने पहुंचाया, शुक्रिया आपका। कहते हैं कि हर किसी को दोस्त मिलते हैं लेकिन नसीब वालों को ही सच्चे दोस्त मिलते हैं। और ये ब्यूटीफुल लाइनें जो इन्होंने भेजी है ना रुकैया के लिए भेजी है, सुबह सुबह इतना प्यारा अपने शुरुआत की अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जो आपके दोस्त होंगे ना वो भी मुस्कुरा रहे होंगे, उनका तो दिन खूबसूरत बन गया है। अब हम आपका दिन भी खूबसूरत बनाते हैं एक प्यारे से ट्रैक से। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अभी बहुत ही प्यारा सा गाना, ये आपकी सुबह को बनाएगा और भी ज़्यादा खूबसूरत क्योंकि आप सब बहुत प्यारे हैं।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद। देखिए हम सुबह सुबह कसम कसम नहीं खाते, हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आते हैं अच्छे बच्चों की तरह। एवरीवन, ये है बिंदास मॉर्निंग और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। दोस्तों वक्त हुआ है 9:22। 1 अगस्त की तारीख है आज। दोस्तों देखिए, नई तारीख है, नया महीना है और साथ ही कुछ नए नियम भी लागू हो चुके हैं। अगर आप गैस सिलेंडर बुक कराते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं, बैंकिंग या टैक्स से जुड़े काम करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 अगस्त 2026 से हुए कुछ अहम बदलाव और वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी किए हैं। सिलेंडर बुक कराने से पहले अपने शहर की नई कीमतें जरूर चेक कर लीजिए। एंड रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट है। कुछ प्रमुख रेलवे आरक्षण केंद्र पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए नया टोकन सिस्टम लागू किया गया है। अब यात्रियों को पहले टोकन मिलेगा और उसी क्रम के अनुसार तत्काल टिकट बुक की जाएगी। इसका उद्देश्य भीड़ और धक्का मुक्की को कम करना है। बैंक और क्रेडिट कार्ड यूजर्स ध्यान से। कुछ निजी बैंकों ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन और डीसीसी से जुड़े शुल्क और नियमों में बदलाव किए हैं। विदेश में कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अपने बैंक के नए नियम जरूर देख लें। और अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो याद रखिए, बिना लेट फीस के आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। अब 1 अगस्त से देर हुई तो रिटर्न दाखिल करने पर आयकर नियमों के अनुसार फीस लेट या पेमेंट्री लागू हो सकती है। तो दोस्तों छोटी छोटी जानकारियां कई बार बड़े खर्चों से बचा लेती है, इसलिए अपडेटेड रहिए, जागरूक रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी समझदारी है। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 बिंदास मॉर्निंग में। दोस्तों आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं आज की सुबह। सुनते हैं एक शानदार गाना, उसके बाद लौटकर आती हूँ मैं और जानकारियों के साथ। बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ मुस्कुराते भी रहिए।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और सुबह सुबह बिंदास गाने सुन रहे हैं आप बिंदास मॉर्निंग में खुशी के साथ। और दोस्तों, सावन के पावन महीने में आस्था अपने चरम पर है। हरिद्वार से एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश और कई जगह पर जल भराव होने के बावजूद शिव भक्तों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। हाथों में सजी धजी कावड़, कंधों पर गंगा जल और दिल में बम बम भोले का जय घोष, शिव भक्त जो है पूरे जोश और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। मौसम ने भले ही चुनौती दी, लेकिन उनकी आस्था के कदम नहीं रुके। सच ही कहा गया है कि जहां टूट विश्वास हो, वहां मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक पाती हैं। और भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि सभी कावड़ियों की यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे।

0: और दोस्तों, दिल्ली सरकार की विद्या वाहन योजना के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने नवी कक्षा की 3000 से अधिक छात्राओं को साइकिल वितरित की है। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं के लिए स्कूल तक आना जाना आसान और सुरक्षित बना रहे, ताकि दूरी उनकी पढ़ाई में कभी बाधा ना बने। उम्मीद है कि इसे बेटियों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। दोस्तों, शिक्षा वह शक्ति है जो हर बेटी के सपनों को नई उड़ान देती है, और हम तो यही कामना करते हैं कि देश की हर बेटी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और अपने इस सपनों को साकार करे। और हमारे पास यहाँ पर कुछ मैसेज भी आए हैं, और ये मैसेज हमें मिला है मयंक शर्मा जी का, पीतल बस्ती से। कहते हैं, राम राम जी, खुशी जी, आपको भी जय श्री राम। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से। कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, कुछ मीठा हो जाए, आज पहली तारीख है। श्योर, कुछ मीठा बनाइए, सबको खिलाइए। एंड एक वॉइस नोट भी हमारे पास आया है, तो चलिए उसको भी हम प्ले कर लेते हैं। सर की बड़ी मधुर सी आवाज में क्या पहुंचाते हैं आज की सुबह, सुन लेते हैं। अच्छा लगता है जब इतने प्यारे प्यारे आपके मैसेज हमारे पास आते हैं।
1: नमस्कार राधे राधे, विनाश मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं विनाश मॉर्निंग आरजे खुशी के साथ। मैं आपका दोस्त रूपी शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से। झूठ से कहीं अधिक खतरनाक होता है अर्ध सत्य, इससे अश्वधामा नहीं द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखिए, और जो दूसरों के हित में है उसे समझने की समझ रखिए। नमस्कार राधे राधे, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग आरजे खुशी के साथ, और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज। नंबर 98-378-96-896 FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। जाते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार राधे राधे।
0: आपको भी राधे राधे भूपी शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना वॉइस नोट पहुंचाया है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। श्रोताओं, अभी लौट कर आती हूँ मैं, पूछूंगी एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आपसे, और आप उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, ये तो मैं जानती हूँ। वो मोहब्बत, एक्साइटमेंट आपका देख कर ना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है कि हमें भी कुछ क्रिएटिविटी करनी चाहिए अपने श्रोताओं के लिए। तो चलिए सुनिएगा अभी ये प्यारा सा नमस्ते इंग्लैंड से, ब्यूटीफुल ट्रैक।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

बात है एवरीवन। हाँ, सारा इंडिया घूमने का मन है आपका, बिल्कुल घूमिएगा। देखिए, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, सैटरडे है आज और पहला दिन है अगस्त का, पहली तारीख है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिन सैटरडे। आपके तो बल्ले बल्ले हो गए हैं। हाँ, एक तारीख आते ही ना सबको हो जाता है कि बस अब सैलरी आ जाएगी। इतने सारे पहले हम सारी चीजें लिस्ट बना लेते हैं, ये शॉपिंग करनी है, ये बिल देना है, ये करना है, वो करना है। इतनी सैलरी नहीं मिलती है जितने खर्चे हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, खर्च कीजिए, मना नहीं है, लेकिन खर्च के साथ साथ ना सेविंग करना भी बहुत ज़रूरी है, पैसों को सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है, सबको पता है। तो दोस्तों, शौक भी कीजिए लेकिन पैसा भी बचाइए, मनी बहुत ज़रूरी है। और घूमना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अगर साथ अपना सा हो तो हर रास्ता यादगार बन जाता है। यही एहसास लेकर सुनाया मैंने आपको ये प्यारा सा गाना आस्था गिल की आवाज में। और दोस्तों, यहाँ पर आपके प्यारे से मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल करूंगी, उनको नहीं भूलूंगी, टेंशन ना लो आप।

क्या बात है, यहाँ सुबह सुबह सरप्राइज। देखिए रीना जी भी स्टूडियो में आ चुकी हैं क्योंकि नेक्स्ट शो यही प्रेजेंट करने वाली हैं एंड आपको पता है मॉर्निंग मसाला। और अच्छा लगता है जब सुबह सुबह कोई अपना स्टूडियो में आ जाए, वो भी सर सवर के। ओए होए, बड़े

नहीं लग रहे हो तो सिर्फ दोनों नजर ना लग जाए, ठीक है? ऐसे ही स्माइल रखो. मोस्ट वेलकम. दोस्तों हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज आए हैं. ये मुरादाबाद से शफी अहमद जी मैसेज हमें करते हैं. गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अमरोहा से नेहा जी का. कहती हैं खुशी मैम नमस्ते, क्या हाल है आपके? मैं तो बहुत अच्छी हूँ. ओके. और ये कहती हैं कि मैं सबसे पहले सुबह उठकर इबादत करती हूँ और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं रेडियो को चार्जिंग पर लगाती हूँ, फिर अपने जो भी काम होते हैं पेंडिंग उसको कंप्लीट करती हूँ. अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड नेहा जी. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीपशिका का, और ये मैसेज अपना पहुँचाती हैं हमें पीतल नगरी से. कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आज सुबह सुबह आपको सुनकर अच्छा लग रहा है. थैंक यू डियर. वैसे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आप सबसे मुलाकात कर. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जी का, एंड ये कहते हैं हेलो जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर जिला मुरादाबाद गोविंदपुर से, ये मैसेज पहुँचाते हैं रजा हुसैन जी. गुड मॉर्निंग खुशी जी, शो अच्छा चल रहा है, धन्यवाद आपका. चलिए दोस्तों एक अब हमने बात ही कर ली इतनी सारी, तो ये गाना तो सुनवा देते हैं ना आज की मॉर्निंग, है ना? क्या कहती है ऑडियंस, चला दें? चलो सुन लेते हैं ये प्यारा से गाना, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत. और एक सवाल भी है मेरा जो मैं आपसे मालूम करने वाली हूँ, बहुत इजी है, टेंशन ना लो आप, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो.

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद। देखिए हम आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं और जो कि सुबह से हैं एंड 10 बज चुके हैं राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और एक ऐसा सवाल जो आपके माइंड को थोड़ा सा और तेज कर देगा। देखिए बादाम आप खाते हैं, अखरोट खाते हैं, नो डाउट मुझे पता है आपका माइंड बहुत तेज है, बहुत तेजी से चलता है। तो अब चेक कर लेते हैं हम आपका, थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, छोटा सा है ना आज की सुबह, तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, टेंशन ना लो आप। आज का मेरा सवाल है, एक मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ एवरीवन, आपको बताना है कि ये म्यूजिक कौन से फिल्म का है, ठीक है? और बस इतना ही सिंपल, ठीक है? तो मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ, आप बताइएगा इस म्यूजिक, ये जो म्यूजिक मैं प्ले कर रही हूँ कौन से फिल्म का है।

तो अब तो हमारे श्रोता गेस कर पाए हैं कि मैंने आज की इस सुबह बहुत सिंपल सा आपसे पूछा है सवाल. आज के मॉर्निंग मैंने सोचा है कि चलिए गाने हमारे श्रोता सुनते ही हैं तो उनका थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं कि देखते हैं कितना मतलब एक्सपर्ट हैं आप म्यूजिक पहचानने में. तो एक छोटा सा म्यूजिक मैंने प्ले किया है, आप मुझे बताएं कि कौन से फिल्म का म्यूजिक है. जी हाँ, कौन से गाने का ये म्यूजिक है. बहुत ही खूबसूरत सा शानदार सा है. तो जल्दी से अपने जवाब पहुंचाइए, नंबर 9837896896. और एक प्यारा सा गाना गुरु रंधावा की बहुत प्यारी सी आवाज़, क्योंकि लड़कियां सूट में बड़ी ही सोनी लगती हैं.

एवरीवन, वक्त हुआ है 10:05 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और आज की सुबह बहुत सिंपल सा मैंने आपसे क्या पूछा था, एक म्यूजिक मैंने प्ले किया था और आपको बताना था कि ये जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है कौन से फिल्म के गाने का है। तो हमारे श्रोताओं ने जवाब पहुंचा दिए हैं एंड सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आया है। हमारे पास सबसे पहले मैसेज आया है, राइट आंसर पहुंचाते हैं रिजवान खान जी, ईदगाह मुरादाबाद से। नहीं सॉरी, ये मैसेज पहुंचाते हैं ग्राम जिला मुरादाबाद ग्राम बीजनर से रिजवान खान जी, और कहते हैं कि गुड मॉर्निंग खुशी मैम, ये जो म्यूजिक आपने प्ले किया था ये म्यूजिक है फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। एग्जैक्टली राइट आंसर आपने पहुंचा है। तो आज के सुबह की लकी सुपरस्टार बनते हैं आप हमारे शो के, तो आपके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, आज की सुबह आप बनते हैं हमारे शो के सुपरस्टार बिंदास मॉर्निंग के, एंड बहुत बहुत मुबारक है आपको। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है राजा कश्यप जी का, और इन्होंने जवाब पहुंचाया है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, बट कोई बात नहीं है, कहते हैं ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एंड इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है बबलू सैनी जी का, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं, फ्रॉम द मूवी तेरे नाम का ये म्यूजिक आपने प्ले किया था मैम। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रजा हुसैन जी का जिला मुरादाबाद से, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है उमेश कुमार प्रजापति जी का, और ये भी राइट आंसर के साथ जुड़े हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर गौरव टेलर जी का, कहते हैं आनंद भाई जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? यहाँ पर आनंद तो नहीं है लेकिन खुशी है। ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद आपका। सॉरी खुशी जी, मोस्ट वेलकम, नो सॉरी सर, अपनों को सॉरी नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें पहुंचाते हैं यहाँ पर इन्होंने नाम नहीं लिखा है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं फिरोज सैफी जी, सही जवाब के साथ जुड़े हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए पुष्पिंदर जी का जिला महिला हॉस्पिटल मुरादाबाद से, और सभी हमारे साथ राइट आंसर के साथ जुड़े हैं, फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। एंड वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आज के लिए फिर से आप सभी के लिए जोरदार तालियां। और आप सबने सही जवाब पहुंचाया है, तो ये गाना आज हम आप सभी को डेडिकेट करते हैं। एंड अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी रहो हमेशा, अपनी फैमिली के साथ रहो एंड हेल्दी रहो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तो खुश भी रहेंगे। और सुनते रहिएगा ऐसे ही एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने हर दिन को खूबसूरती से इंजॉय कीजिएगा, जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

जी गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं। गुड वाली मॉर्निंग है, हर हर महादेव। और समय की बात करूं तो 10:22 हो चुके हैं। आज की तारीख यानी कि 1 अगस्त, पहली तारीख सावन का महीना और भोलेनाथ का आशीर्वाद। बस जिंदगी में खुशियों की बारिश यूं ही होती रहे, हर हर महादेव। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत चंगे होंगे और दिन की शुरुआत कर चुके होंगे। क्योंकि देखिए हल्की हल्की बारिश जो आई है ना, यानी कि फुहारे वाली बारिश, यही यानी कि जब सावन का महीना शुरू हो

जाता है। तो यानी कि कहते हैं इंद्रदेव भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। और वेदर भी इतना ही सुहाना, भाई ऐसे ही रहना चाहिए वेदर, मजा आ जाएगा। देखिए गर्मी में इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन धूप हवाएं बारिश रहे तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, हर यानी कि मजा ही मजा ही आता है। फिलहाल तो देखिए 1 तारीख है, 1 अगस्त है, और 1 अगस्त से बहुत सी चीजें हैं जो चेंजेस हो रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग मसाला शो यानी कि मसाला का तड़का नहीं, सिर्फ बातों का तड़का लगता है यहाँ पर। और इसमें क्या करना है, अपने शो में हमें मैसेज करना है, जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, लेकिन 2 नाम से ज्यादा नाम आपने मेंशन नहीं करना है। सो आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं श्रोता, तो हमारा नंबर है 9823789689 पर। गाना वही जो आप सुनना चाहे, और वंस अगेन गुड वाली मॉर्निंग, हर हर महादेव। चलिए फिलहाल एक और गाने के बाद हम कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ। बस आप कहीं मत जाइए, आरजू रीना के साथ कनेक्ट रहिए। एक बहुत ही शानदार भोले जी का भजन है जो इसको हम प्ले करेंगे, उसके बाद कनेक्ट हो जाएंगे श्रोता। चलिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है। हर हर महादेव। और सत श्री अकाल जी, समय की बात करूं तो 10:28 हो चुके हैं। मॉर्निंग मसाला शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं। तो यानी कि आज आप सभी को बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि उन्होंने फिर से सोशल मीडिया पर उन्होंने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आजकल के जेन जी हैं, मैं उनका सिचुएशन समझ सकता हूँ। हालांकि उन्हें तरह तरह की बातें कही बच्चों ने, लेकिन कहते हैं ना, एक अच्छे इंसान की पहचान उसकी बातों पर झलकता है। वैसे ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शुभ वचन यानी कि विचारों से कहा है कि मैं बच्चों को अदालत का चक्कर नहीं कटवाना चाहता हूँ। बचपन में गलतियां होती हैं, मैं आपको अवसर के साथ यानी कि समझ सकता हूँ, आपके जो परिस्थितियां थी उस टाइम मैं उसको समझ सकता हूँ, और गुमराह राह दिखाना यानी कि जो बच्चे गुमराह हो गए हैं उनको राह दिखाना मेरा काम है। हालांकि ये कठिन है लेकिन मैं कोशिश करूँगा। इन्होंने कहा है कि मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ, बच्चों को गले लगाना चाहता हूँ, उनकी बातें सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने जो भी मुझे कहा उसके लिए मैं उनको माफ़ करता हूँ और उनको एक मौका देना चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हालांकि हर किसी बच्चे को हम नहीं समझा पाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं पूरा कोशिश करूँगा कि हर बच्चे तक ये आवाज़ पहुँचे और उनका गुस्सा जो भी रहा उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और आपकी जो पेपर है, जो आपका एजुकेशन है, उस पर अब कड़ी ध्यान रखी जाएगी। अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और उसके लिए कार्रवाई जल्दी की जाएगी, ना कि उसका इंतज़ार किया जाएगा। तो इसको कहते हैं भाई, दिल बड़ा होना चाहिए। सच में दुनिया क्या कहती है आपको, उससे कोई मतलब मत रखिए। बस आप अपने काम पर रखिए, फोकस आपका होना चाहिए आपके काम पर। दुनिया आज भी कहती है, कल भी कहेगी। अगर आप दुनिया की बातें लेकर सुनोगे, आगे बढ़ोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हमारे नरेंद्र मोदी जी का दिल देखिए, वो इतना कुछ सुनने के बाद भी देश के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो हुआ हुआ, देखा जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। यही जिंदगी की असली सच्चाई है कि जो होता है होने दो, आगे बढ़ो, काम पर फोकस रखो, काम करते रहो। यार मुझे लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा जो इतनी कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ सुनने के बाद भी अपने देश के लिए खड़े हैं। मतलब आज के टाइम में ना, कोई आपसे अगर नहीं बोलेगा ना तो अगला इंसान पलट के देखेगा भी नहीं, ये की बात बोलेगा, अबे चल इसमें कितना एटीट्यूड है, कौन बात करेगा इससे। लेकिन उनका दिल देखिए आप, जो बच्चों के लिए हर बार यानी कि कांपते हुए हाथ, कांपते हुए होठ से शब्द निकालते हैं, वो देखकर, वो सुनकर, मतलब माइंड ब्लोइंग। सैल्यूट है ऐसे प्रधानमंत्री को। फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे श्रोताओं। क्या मैसेज आया है हमारे पास? रीना जी, जय श्री राम। गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हूँ आप, थैंक यू सो मच जी। एंड जानकारी भी बहुत अमेजिंग लेकर आती हो आप, और ओ माय गॉड सुनना मुझे बहुत पसंद, ओ माय गॉड। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको सुनना पसंद है और ये गाना लिखते हैं, बहुत ही शानदार गाना सुनना चाहते हैं आज की सुबह। तू धरती पर चाहे जहां भी रहेगी, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। क्या बात है जी। और ये दो लाइनें लिखते हैं, आज के समय में लोग घर के संबंधों में ईमानदारी करके करके बाहर के संबंधों में ईमानदारी खोजते हैं। यानी कि आज के समय में लोग घर के संबंधों में बेईमानी करके बाहर के लोगों में ईमानदारी खोजते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले घर में ईमानदारी, फिर बाहर ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी दोनों जगह होनी चाहिए। एक ऐसे नहीं है कि एक जगह बेईमानी करो, दूसरे जगह ईमानदारी दिखाओ, ये नहीं होना चाहिए।
और अगले मैसेज की बात करूं तो कश्मीर से मिराज उदीन जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, वो जब याद आए। क्या बात है जी, बहुत शानदार गाना है। तो श्रोताओं, ये आपको जी जो गाना है आपका, हम डेफिनेटली सुनवाएंगे, बस आप आरजोरीना के साथ कनेक्ट रहिए। अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो, गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूं, आप बताइए कैसे हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से कनेक्ट होते हैं रिजवान खान, उमेश खान और इनके दोस्त है और दीपक जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, बहुत ही बेधड़क बिंदास गाना है ये, दिल देना है तो दे दे वरना मैं चला कहाँ चले जी। ये चलिए जी, हम आपको ये गाना डेफिनेटली सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल गौरव टेलर जी के रिक्वेस्ट पर ये गाना बहुत ही खूबसूरत।

क्या बात है जी, मोहम्मद रफी की आवाज में, लता मंगेशकर जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना कि वो जब याद आए आए है। हाँ जी, हमें भी यानी कि सैटरडे का इंतजार रहता है कि बस आप सभी के साथ मॉर्निंग में ही कनेक्ट हो जाना है जी। और समय की बात करूं मॉर्निंग मसाला शो में श्रोताओं, तो समय हो चुका है 10:42 और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला शो। गुड वाली मॉर्निंग है जी। और ये कहा जा रहा है जो कि LPG सिलेंडर है उसमें यानी कि प्राइस की कटौती हो गई है, 192 रुपए कम हुए हैं LPG सिलेंडर में। लेकिन जो घरेलू सिलेंडर है उसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ।

थी, लेकिन पहले से थोड़ी सी राहत मिली है लोगों को भैया सिलेंडर को लेकर, जो कि बड़ा ही हफरा तफरी मचा हुआ था। चलिए जी, फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं।

0: कैसी हो आप? बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? दरक्षा फातिमा जी कनेक्ट होती हैं और ये गाना सुनना चाहती हैं। बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा। क्या बात है जी। और ये गाना सुनना चाहती है अपनी दोस्त रुकैया फातिमा के लिए और रीना मैम के लिए। थैंक यू सो मच जी। अच्छा कौन है? रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि सावन का महीना है और महादेव जब आते हैं तो हर कोई झूम उठता है। और ये गाना सुनना चाहते हैं, दिल है तू जान है तू, फ्रॉम मूवी बिच्छू से। अगले मैसेज की बात करूं तो आरजे रीना सिस्टर जी, राम राम सीताराम, राम राम जी सीताराम। लाजवाब प्रस्तुति, शानदार प्रोग्राम। ये कनेक्ट होते हैं हमारे साथ अजीत कसाना जी, माया देवी, आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से। और एक हमारे पास ना वॉइस मैसेज आया श्रोताओं, तो चलिए आपको इनकी मधुर आवाज सुनवाते हैं।
1: आदाब अर्ज है आपके शो में, और मैं आपके शो में पहली दफा हाजिर हो रहा हूँ।
0: ओके जी।
1: आपने कहा है कि आप अपनी पसंद का नगमा सुने, तो मैं भी अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहता हूँ। आज
0: हाँ
1: पहली तारीख है अगस्त की, और इसी हिसाब से मैं एक नगमा सुनना चाहता हूँ जो पहली तारीख के ऊपर आया गया है। मैं उसका लिंक आपको भेज रहा हूँ,
0: हाँ
1: आप
0: हाँ
1: वो नगमा
0: बिल्कुल
1: मुझे
0: बिल्कुल,
1: सुना
0: भेजिए
1: दीजिएगा।
0: भेजिए भेजिए,
1: मैं
0: हम
1: बात कर रहा हूँ
0: इंतजार में
1: कराची
0: बैठे हैं सर।
1: पाकिस्तान से, राशिद नास।
0: बिल्कुल जी, आप भेजिए, हम बैठे हैं आपके इंतजार में कि आप कब आप हमें लिंक भेजेंगे और हम आपका गाना प्ले करेंगे। तो बिंदास बेधड़क होकर बिना किसी टेंशन के आप हमें गाना भेज सकते हैं, क्योंकि ये रेडियो है, यहाँ पर दिल खोल कर जिया जाता है, यानी कि बिंदास होकर जिया जाता है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है श्रोताओं जहां पर कोई टेंशन नहीं, बेधड़क बिंदास रहिए और अपना मैसेज हमारे तक पहुंचाते रहिए। सो चलिए अगले मैसेज की बात करते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है हमारे पास और वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।

0: ओके, इन्होंने लिंक भी भेज दिया भैया। तो पहले हम गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल के लिए कहीं मत जाइए। आपका कोई मैसेज है, किसी के पहुंचाना चाहते हैं या फिर किसी का बर्थडे है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो पर जब आपके बर्थडे विशेज हो रहेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार। लेकिन गाना सुनने से पहले श्रोताओं, कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया भैया, तो पहले कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होंगे हम आप सभी के साथ। और आप बस थोड़ा इंतज़ार करिए। देखिए मेरी जान, इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेडियो है और रेडियो से अगर आप प्यार करते तो थोड़ा इंतज़ार करिए।
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के

क्या बात है जी, बोल दो ना जरा, दिल में है वो छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, लेकिन मैं तो कह दूंगी जी। देखिए, जिस तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, मैं तो डेफिनेटली कहूंगी। चलिए, फिलहाल आपने क्या करना है जी, हमें मैसेज करना है। नंबर है 9823789689 और समय की बात करूँ तो 10:55 हो चुके हैं। दिस साइड आर्जेरीना, गुड वाली मॉर्निंग है जी, मॉर्निंग में साला शो मी। और आप सभी के प्यारे प्यारे शानदार जो मैसेज आते हैं ना भाई साहब, उस देखकर तो दिल गार्डन गार्डन ही ऊंची आता है। लेकिन अब आपके शो के तरफ बढ़ते हैं कि इनका क्या मैसेज आता है हमारे पास।

0: देखिए श्रोताओं, और रक्षाबंधन यानी कि सावन का महीना है, और सावन के महीने में यानी कि रक्षाबंधन भी आ जाएगा। और इस टाइम आप जो भी पैकेट वाला सामान खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर खरीदिएगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो खरीदने से पहले आप एक बार जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद आपको खरीदना है। और फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है।

बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को

0: नागा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना। अरे
2: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हेलो जी, हेलो। गुड वाली मॉर्निंग है बिंदा, यानी कि मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करो श्रोताओं, तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 11:03 हो चुके हैं। और आइए बिना किसी देरी के आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। भैया, कितने मैसेज आ गए हैं, ओह माय गॉड, आज तो दिल गार्डन ही गार्डन है। यानी कि हमारे पास मैसेज आता है, दी नमस्ते दी, मेरा नाम मोहिनी सैनी है। ओके जी, और ये गाना सुनना चाहती हैं, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। आगे आप समझ जाइएगा जी। ये कनेक्ट होती है कुंदनपुर मुरादाबाद से। ईदगाह मुरादाबाद से सफ़ी अहमद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी, और लिखते हैं एनी सॉन्ग। ओके जी, कोई भी गाना हम आपके लिए प्ले कर देंगे। आप पे धड़क बिंदास रहिए।

एक और मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हाय दी, कैसी हो आप? बहुत अच्छी हूँ जी। ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं रुकैया फातिमा जी, और मुझे एक गाना सुनना है। ओ बेदर्दी यार बेदर्दी, हाय हाय क्या बात है जी। ये दरक्षा फातिमा के लिए गाना सुनना चाहते हैं। अरे बिल्कुल, आपको ये गाना सुनवाएंगे, आप बेहतर बिंदास रहिए।

विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये सावन का महीना है और ये गाना सुनना चाहते हैं, पुराना वाला। बिल्कुल जी, आपको हम गाना सुनवाएंगे। अगले मैसेज की बात करूं तो हर हर महादेव। रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। ये कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से और ये गाना सुनना चाहते हैं भोलेनाथ का। गाना है भोले मेरी माँ का दिल खुश होना। चलिए जी, ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और सुनते रहिए आप आर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत गाना एंजॉय किया है अलका याग्निक जी की आवाज में, उदित नारायण जी की आवाज लगता दिल तेरे बिना। गुड वाली मॉर्निंग है जी, मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। और चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते भैया, किनका क्या मैसेज आया है हमारे पास। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बोशरा जी, और ये गोदी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और गाना सुनना चाहते हैं, मुझसे शादी करोगी। नहीं करेंगे जी। शादी मुबारक हो, क्या बात है जी, गाना सुनना चाहते हैं। डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनवाएंगे सर, बस इंतजार करिए। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं शंकर लाल यादव जी लाइन पर मुरादाबाद से, और गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, इनके दोस्त है अमित यादव, रितु यादव। मुरादाबाद यूपी से कनेक्ट होते हैं जेठालाल जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी रीना मैडम जी, आपको और हमारे सभी एफएम रेडियो मुरादाबाद सुनने वाले श्रोताओं को सुबह की गुड वाली मॉर्निंग है जी, क्या बात है जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कुछ लाइनें लिखते हैं, इनका कहना है इंसान का जन्म मिलना है, इंसान बनो छोटी छोटी बातों में, दुश्मन मत बनो, इंसान में मानवता मानवता होनी चाहिए, यहाँ भगवान नहीं होता, सच्चे इंसान होते हैं, क्या बात है जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, ऐ मेरे दिल हमदम ये दुआ करे, क्या बात है जी। अगला मैसेज आते हैं हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, शैयद शारिक अली जी, मिराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, सैटरडे में आपका शो मॉर्निंग मस्ती बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच जी। और बहुत अच्छा लगता है, गाने भी बहुत अच्छे प्ले करती हो, ये तो आप सबकी मेहरबानी है जी जो आप इतने अच्छे अच्छे गाने भेजते हैं प्ले करने के लिए। और हमारी पसंद का भी गाना सुनवा दीजिए जी, डेफिनेटली सुनवाएंगे। थोड़ा रेशम लगता है, आय हाय, लता मंगेशकर की आवाज में सुनना चाहते हैं।

ये हमारे साथ कनेक्ट हो गए अजीत कसाना जी, और इनका कहना है ये गाना सुनना चाहते, फुल शबनम वाला गाना है। डेफिनेटली हम आपको ये गाना सुनवाएंगे जी, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना सुनना चाहते हैं। और इनका कहना है कि आप तो आप है, आपके पावरफुल प्रेजेंटेशन का जवाब क्या है, और आपके जो गाने हैं उसके डेडिकेशन तो अलग ही होते हैं। थैंक यू सो मच जी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप सभी का डेडिकेशन होता है, आप सभी के प्यारे प्यारे गाने होते हैं, आप सभी जो बोलते हैं वही तो हम प्ले करते हैं। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि मेरे शो में कनेक्ट होने के लिए, तो मैं आती हूँ 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, यानी कि शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इवनिंग मस्ती शो में आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, फिर आप वहाँ के जलवे देख सकते हैं जी।

0: क्या बात है जी, ओल्ड इज गोल्ड बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, मॉर्निंग मसाला शो में समय की बात करूँ तो 11:27 हो चुके हैं और आपने लता मंगेशकर जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गाना एंजॉय किया है। और सावन के महीने में आप जब भी अखबार खोलेंगे और न्यूज़ देखेंगे तो बहुत प्यारी प्यारी प्रेरणाएं जो कांवड़ यात्री होते हैं वो, मतलब एक तो ऊपर से जो अपनी दादी को कांवड़ पालकी में बिठाकर कांवड़ यात्रा कराते हैं और साथ ही साथ जल लेकर आते हैं, यानी कि बहुत यात्री श्रद्धालुओं का ये कहना है कि जो हमारी दादी है वो नहीं चल सकती है और इतना दूर नहीं जा सकती है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस पावन शुभ अवसर पर, यानी कि सावन के महीने में, अपनी दादी जी को ही पालकी में बिठाकर कांवड़ यात्रा कराया जाए और जल भी लेकर आओ उधर से और हरिद्वार भी घुमा के लाओ। क्या बात है, ऐसे ऐसे जो आप कहानी देखेंगे ना, सुनेंगे, तो ये बिल्कुल श्रवण कुमार की कहानी से रिलेट करता है कि उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बिठा के वो घुमाते थे, तो उस टाइम की कहानी अब रिलेट हो जाती है। चलिए, फिलहाल आप सभी को कवर लेके बहुत यात्री है वो निकल चुके हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना भी ध्यान रखिए, आप सभी के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध है, सो आपको बिंदास रहना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अगले मैसेज की बात करूँ तो, हेलो रीना मैम जी, गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, थैंक यू सो मच, आपका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है। ओके जी, शुक्रिया। और ये गंगा गाना सुनना चाहते हैं, गंगा नहावन आई, यानी कि चल भोले के दरबार गाना सुनना चाहते हैं। अगले मैसेज की बात करूँ तो, बबली अनजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप, गुड मॉर्निंग राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। फिल्म अनोखा अंदाज, और ये गाना सुनना चाहती हैं, दिल तोड़ के मत जाइए। ओ क्या बात है जी, दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी कनेक्ट होते हैं और बहुत ही शानदार ये गाना सुनना चाहते हैं। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे। चलिए जी, फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं और ये महादेव का गाना सुनते हैं। लेकिन गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: Hey, you're a tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
5: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: भोले मेरी माँ के आंसू लियो ना।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 11:37 हो चुके हैं। मॉर्निंग मसाला शो में आप कनेक्ट हैं आज रीना के साथ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज 1 अगस्त है, और 1 अगस्त से यानी कि 1 अगस्त का खास डे ये है कि कहते हैं ना, जिंदगी में अगर कोई ऐसा हो जो आपकी छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराए, मुश्किल वक्त में आपका हाथ थामे और बिना कुछ कहे आपकी बात समझ जाए, तो उसे कभी हल्के में मत लीजिए। क्योंकि 1 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल गर्लफ्रेंड डे। ये दिन सिर्फ महंगे गिफ्ट देने का नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का दिन है। एक प्यारा सा मैसेज, एक सच्ची तारीफ या साथ बिताया गया थोड़ा सा समय, कई बार यही सबसे बड़ा तोहफा बन जाता है। अगर अभी तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मायूस मत होइए, मुस्कुराइए, क्योंकि सही इंसान सही वक्त पर जरूर मिलता है। बहुत से परेशान हो जाते हैं भैया, ओहो, मतलब कॉलेज में स्कूल में ऐसे बच्चों के अंदर मतलब एक क्रेज होता है कि गर्लफ्रेंड बनाना है। भाई इसकी है, मेरी नहीं तो मुझे भी बनाना है, बनाना है तो बनाना है। देखिए सही समय पर हर चीज़ हो जाता है, इसीलिए बिंदा बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में आप जब आइए, जब आप उस वादे को निभा पाए, क्योंकि झूठी रिलेशनशिप मायने नहीं रखती है जनाब। उसमें मतलब कोई फीलिंग्स ही नहीं होगी। इससे अच्छा है कि किसी अगले इंसान का समय ना खराब करे, अपना भी समय ना खराब करे, और किसी के साथ, किसी के दिल के साथ मत खेलिए। क्योंकि ये कर्मा है, ये वापस लौट कर आता है, और अभी लौट कर आएगा। ये सोचेंगे कि अगले जन्म लेंगे हम, फिर उसमें हमसे बदला लिया जाएगा, नहीं, गलत सोच रहे। इसी जन्म में ही वो सारे जो आपने किसी का दिल दुखाया है, तो उसका बदला भी अभी इसी जन्म में ही लिया जाएगा। तो इस चीज को भूल जाइए कि अगले जन्म में हमें आना पड़ेगा। और एक बात बहुत ही शानदार, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई नहीं कहते हैं, है ना, शर्माते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी आपको जिसके लिए भी फीलिंग्स है बयां कर देनी चाहिए। पता चले कि आप काफी टाइम बाद बयां करने जा रहे हैं और वहां पर आप गलत साबित हो जाएंगे। इसीलिए अगले की दिल में क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपने दिल की बात रख देनी चाहिए, जो होएगा देखा जाएगा। चलिए फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं श्रोताओं। गुड मॉर्निंग रीना मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज भी बड़ी प्यारी लगती है। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू सेक्टर 10 बुद्धि विहार से।

जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो पानी पी लीजिए। सिंपल सा बात है, पानी पियेंगे तो आपको जो मिर्ची लगी वो आराम से धीरे धीरे धीरे धीरे करके जो आपकी सिसकिया है वो बंद हो जाएगी। चलिए जी, अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके लिए गुलाब का फूल भेजा है। आय हाय क्या बात है जी। सर फोटो में भेजा है, रियल में भेजिए तब मजा आएगा। ये कनेक्ट होते हैं उमा शंकर सिंह, अभी अवंतिका सिंह और अर्चित सिंह कनेक्ट होते हैं देवभूमि उत्तराखंड से। देखिए जी, हमने आपका गाना सुना दिया है, आप मैसेज कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका गाने जो है वो थोड़ा लेट अगर आपको सुनाया जा रहा है तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मैसेज हैं और जिनका मैसेज पहले शामिल हुआ है गाने उसी हिसाब से आएंगे। तो बस ये मत सोचिए कि मेरा गाना नहीं आया, मेरा गाना नहीं आया, मैं मैसेज करता हूँ, मैं मैसेज करती हूँ। तो बिल्कुल भी आप कहेंगे कि मेरा गाना पहले चलाओ तो ऐसा प्ले नहीं होएगा। यानी कि नंबर वाइज आप सभी के गाने प्ले होंगे, जिनका मैसेज शामिल हो गया उनके गाने डेफिनेटली प्ले होंगे। ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं मैसेज करूँ और अगर आपके गाने ना प्ले करूँ, गाने जरूर प्ले होंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हेलो रीना मैम, गुड वाला मॉर्निंग है, मॉर्निंग मसाला शो में आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। ये हमारे साथ कनेक्ट होती है ललिता कश्यप जी मुरादाबाद से। और आज मौसम भी बहुत ही औसम है जी। बिल्कुल सही कहा आपने, मौसम भी बहुत ही औसम है क्योंकि आज सावन का तीसरा दिन है। मैम नाश्ता कर लीजिए। बिल्कुल जी, हम कर लेंगे बिंदास होकर। और ये गाना सुनना चाहती है, भोले बाबा का ही गाना सुनना चाहती है। अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना जी, शो बहुत अच्छा चल रहा है और सभी श्रोता गाने भी बहुत अच्छे भेज रहे हैं। राधे राधे जी, राधे राधे जी। और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती, ये नशा उतार देता है, वहम का भी और वहम का भी। क्या बात है जी, वहम का भी और अहम का भी निकाल ही देता है। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं भूपेश शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से। जय श्री राम जी। और इनके साथ कनेक्ट होते हैं सपना शर्मा, उत्कर्ष शर्मा और वेदिका शर्मा जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, भोले ओ भोले मेरे प्यारे, मेरे प्यार से मिला दे। क्या बात है जी, ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनाएंगे सर।

थैंक यू जो मेरी आवाज को फुल मार्क्स मिल रहे हैं, थैंक यू, मेरे को पता चल गया है। और देखिए बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, आपका गाना भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। मैंने पहले भी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है कि गाने बैक टू बैक चलेंगे। ये नहीं है कि मैं अगले श्रोता के गाना बंद करके पहले आपका प्ले करूंगी। गाने ज़रूर प्ले होंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए, आपका गाना डेफिनेटली आ जाएगा। एकदम पेशेंस लेवल मत खोइए यार, बहुत भी श्रोता है, उनके भी मैसेज आए, उनके भी गाने अभी तक ऐसे ही है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं। चमकती रहे बबली अनजान जी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

0: तीनों प्यार में कोई हारे तो।
1: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूँ तो 11:55 हो चुके हैं श्रोताओं, मेरा जाने का समय भी हो गया है। लेकिन जाने से पहले जो मैसेज रहते हैं उनको जरूर शामिल करेंगे, और आप सभी के गाने हैं वो बैक टू बैक जरूर प्ले किए जाएंगे। चलिए जी, हमारे पास मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, और ये गाना सुनना चाहती है, मेरा सनम सबसे प्यारा। क्या बात है जी, रवि सैनी लाइन पर मुरादाबाद से ये गाना सुनना चाहते हैं। अरे सर, ये गाना आप सुनना चाहते हैं, चलिए बहुत अच्छा गाना है, कुछ ये नहीं कह सकते हम इसके ऊपर, आपको कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अगले मैसेज की बात करूँ तो जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजेस पलवलील जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, दो पंची दो तीन के तपस्या मूवी से ये गाना सुनना चाहते हैं, कुमार सानू किशोर कुमार जी की आवाज़ में। तो हम आपको ये गाना ज़रूर सुनवाएंगे, और इसी गाने के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त। हम मिलेंगे मंडे को, यानी कि 5 बजे, शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इवनिंग मस्ती शो में करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाबा टाटा, टेक केयर श्रोताओ। लेकिन आज भी मैं आपको मिलने वाली हूँ दोपहर 3 बजे, जहाँ फरमाइश आपकी गाने की होगी, तो कॉल करना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही साथ जिन्होंने इस वीक कॉल किया है, कृपया थोड़ा संभल के, क्योंकि आप सोचते होंगे पता नहीं चलता, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ आता है कि कब आपने कॉल किया है, कब आपने कॉल नहीं किया है। तो और भी नए श्रोता है, देखिए उनको भी मौका मिलना चाहिए ना, और वो भी, उनके भी गाने बहुत लाजवाब होते हैं, सुनकर तो देखिए और एक बार मौका देकर तो देखिए उनको भी, कि उनके भी गाने प्ले होने चाहिए। चलिए इसी के साथ बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हर हर महादेव, और अपनी ज़िंदगी को ये खुश बनाते रहिए और अपनी ज़िंदगी में भी खुश रहिए। चलिए, बहुत ही प्यारा गाना प्रजापति की रिक्वेस्ट में।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ईकेसीसी पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती, गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ तो इसे कैसे पहचाना जाए, अब जांच करानी चाहिए, कब जांच करानी चाहिए और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
2: देखिए आरजी रीना, सरल भाषा में कहते हैं जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
1: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
2: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
1: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
1: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
2: बिल्कुल आर्जरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और अनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
1: दृष्टि चक्र वह कैसे?
2: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
1: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज मां के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
2: देखिए आरजी रीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
1: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं
3: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहाँ खून की जांच हुई, पता चला कि उसे अनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
1: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
3: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
1: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
3: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
1: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच कब कराना चाहिए?
2: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
1: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
2: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
1: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
2: कई बातें देखी जाती हैं RJ, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
1: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
2: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
1: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
2: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
2: आर्जेरीना IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
1: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
2: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
3: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
1: किस तरह का भोजन करें?
3: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खासतौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
1: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
3: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
1: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
2: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
1: अच्छा?
2: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
1: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
2: बिल्कुल सही आर्जेरीना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है। नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
1: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
2: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
3: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
1: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
3: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA, MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
2: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदे होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
1: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक, पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बना। बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा आईवी और एफसीएम की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
2: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
2: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार विमेन्स स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
4: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं, उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
2: ठीक है मैम।
4: जिसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
2: ऑल राइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
4: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
2: ओके ठीक है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
4: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
2: ठीक है।
4: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
2: ठीक है।
4: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
2: ज्यादा है।
4: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है। इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
2: ऑलराइट। अच्छा मैम क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं, या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
4: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक
2: नहीं पहुंच पाते हैं,
4: उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
4: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
2: हाँ जी, ये दालें भी, आई थिंक
4: दालें, दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
4: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है।
2: राइट।
4: हीम प्रोटीन होता है।
2: राइट।
4: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
2: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
4: बिल्कुल करना,
2: सारे
4: विटामिन, और जितने सेब हैं,
2: हाँ जी, जो फ्रूट्स
4: हैं, ओके, फ्रूट्स हैं,
2: मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
4: बिल्कुल सही,
2: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर एनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
4: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है, और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो। ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।
2: कम हो जाता है।
4: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
2: ओह माय गॉड,
4: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
2: कॉम्प्लिकेटेड हो जाता
4: है, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती है जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
2: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
4: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिलें तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं किसी डॉक्टर को, जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
2: That's very nice, ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you, ma'am. हमारे साथ आने के लिए गाइस आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और कितनी गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर इस उपचार पर विचार कर सकते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सिहतिया सिंह जी और साथ में टीकन देवी जी। सिहतिया सिंह जी, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में आपने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, एक बार फिर सरल भाषा में समझाइए।
1: जरूर आरजे खुशी, जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10.9 ग्राम के बीच हो जाता है तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच होता है तो इसे मध्यम एनीमिया कहा जाता है और 7 ग्राम से कम हो जाता है तो गंभीर एनीमिया माना जाता है।
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतना ही ज्यादा चिंता।
1: बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिलाएं और उसके गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ सकता है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है।
0: दोस्तों, अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं।
2: यह कहानी है सुनीता की। सुनीता 7वें महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आते थे। थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती थी। घर का काम भी मुश्किल लगने लगा था। घर वाले सोचते थे कि गर्भ अवस्था में ऐसा तो होता ही है, लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच हुई। रिपोर्ट में पता चला कि उसे मध्यम एनीमिया है।
0: फिर क्या हुआ?
2: स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझाया गया, आगे की सलाह दी गई।

0: स्थिति में डॉक्टर IVFCM जैसे नसों के रास्ते से दिए जाने वाले आयरन का उपचार पर विचार कर सकती है।
1: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता।
0: बिल्कुल सही आरजे खुशी, IVFCM हर किसी के लिए नहीं, यह एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद लिया जाता है।
1: अब जरा IVFCM को और आसान भाषा में समझाइए।
0: देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM ये कोई अलग दवा है या कोई बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझे तो यह शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है जिसमें आयरन नसों के रास्ते से दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गर्भ आयरन या डिफेंसी एनीमिया पाया जाता है या डॉक्टर को लगता है कि बहुत तेजी से सुधार जरूरी है, तब इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
1: यानी ये सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है।
0: बिल्कुल आरजी खुशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता, पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिलाओं की स्थिति समझी जाती है, उसके बाद ही डॉक्टर कोई निर्णय लेते हैं।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार है।
0: बिल्कुल सही, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं पहले जांच, फिर सलाह, फिर उपचार।
1: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
0: हाँ, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में यह दिया जाता है। इसके बाद कुछ ही सड़क महिला को देखा भी जाता है ताकि सब कुछ सामान्य रहे।
1: क्या यह अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जाता है?
0: जरूरी नहीं है, लेकिन यह हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधा पर ही किया जाता है।
1: तो अपने मन से ये उपचार करवाना ठीक नहीं है?
0: बिल्कुल नहीं, सही रास्ता हमेशा जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में होगा।
2: मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगी, कई बार परिवार डर जाता है कि ड्रिप लगी है तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। IVFCM को एक प्रभावित उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन यह केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में दिया जाता है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। सिहतिया सिंह जी, एक बात और, कई श्रोता ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार क्यों करते हैं?
0: क्योंकि मध्यम या गंभीर एनीमिया केवल कमजोरी का विषय नहीं है, यह माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसीलिए जब डॉक्टर को लगता है कि आयरन की कमी को जल्द ही प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वह IVFCM जैसे विकल्प पर विचार कर सके।
2: और मैं यहाँ परिवारों से कहना चाहूँगी कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे लेकर डर या अफवाहों में ना पड़े, पहले पूरी जानकारी ले, सवाल पूछे और स्वास्थ्य कर्मी की बात समझे।
1: सिहतिया सिंह जी, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिलाओं की कमजोरी दूर करना है?
0: नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य है माँ और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना। जब अनीमिया के समय इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
1: इन्हीं फायदे केवल माँ को नहीं बच्चे को भी हो सकता है।
0: बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
1: अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से ले। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को लेकर जाए, उसमें देरी ना होने दे। तीसरा, जांच में साथ जाए। चौथा, गोली समय पर और सही तरीके से लेने में मदद करे। पांचवा, किसी परेशानी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से बात कराए। छठा, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करे। सातवा, घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए। और आठवा, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष ना दे।
1: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं, पूरी परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है?
0: इलाज के बाद भी फॉलोअप बढ़ जाता है। इलाज के बाद फॉलोअप बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की पुण्य जांच होगी, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है।
1: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी।
0: गलत। IVFCM निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। केवल ड्रिप लगाने का मतलब ये नहीं है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
1: IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए।
2: गलत। IVFCM

0: एम हर महिला के लिए नहीं है। यह केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाता है जहां डॉक्टर को इसकी आवश्यकता दिखाई देती है।
1: अगर IVF CM लग गया तो आगे किस जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं होती?
2: बिल्कुल गलत। फॉलोअप बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच की निगरानी में की जाती है।
1: IVF CM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
0: गलत। यह हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाता है।
1: अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVF CM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए?
2: गलत। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होगा।
1: धन्यवाद। इसके साथ ये प्रोग्राम समाप्त करते हैं। पर चलते चलते आज की चर्चा से 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच कराइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन कीजिए। कुछ स्थितियों में डॉक्टर IVF CM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं।
0: और मेरी तरफ से एक संदेश, खून की कमी को लंबा मत खींचिए, समय पर जांच कराइए, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिलाओं को परिवार का पूरा सहयोग दीजिए।
2: याद रखिए, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य के परिणाम संभव है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव की अवस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुमति, तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से। और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। आज का विषय है क्या कहेंगे लोग। अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, अपना टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ खराब कर लेते हैं। और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त है और एक और दोस्त है, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने। सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ RJ, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ। हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। नया जब हम आप लोग FM पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है। आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, तो कुछ नया है,
1: कुछ नया है।
0: बिल्कुल, अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को।
1: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
0: जी
1: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश, और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ। योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ। हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं।
0: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है। आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है, तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट? और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोग भी थोड़ा हेलो हाय करो इस प्रोग्राम में। हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच RJ आनंद
0: जी।
2: मैं कुमकुम आप सबकी प्यारी दोस्त फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
0: जिसका नाम है सोच बदलो।
2: जिसका नाम है सोच बदलो।
0: रीना जी आप कुछ बोलेंगी?
3: हेलो एवरीवन, मैं RJ रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर।
0: बिल्कुल जी, तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले?
1: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और चार लोग क्या कहेंगे ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है। चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है,
0: करेक्ट?
1: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है, वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाए, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं, तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं। उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
0: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
1: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को घर नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
0: एडवाइस
1: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं तब सुनिए आप उनकी।
4: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसे लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं। और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांग अड़ाते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। मुद्दे की बात यह है, क्यों कुमकुम कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
2: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
4: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
3: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोग की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
4: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें चालों के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा क्या सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ तो

0: बीते न जाए रे नाम, कुछ तो लोग कहेंगे।
1: ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए, अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलों में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते हैं कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता। तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है, लेकिन जब आप परेशान होंगे आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट होंगे। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस
2: मतलब जब से मेरी जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं सही जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी, और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम? जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी कही कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं,
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी, मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है, जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम, थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

प्रतापात का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट छाया। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। वैसे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आज के खास बातचीत में डॉक्टर गौरिका सिंघल। तो आइए मैम से मिलवाते हैं आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू छाया जी।
1: वैसे तो बहुत सारी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
2: मैं डॉक्टर गौरिका सिंघल, मैं नवजात शिशु व बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी अपना क्लिनिक रीजन क्लिनिक्स में हूँ और साथ ही मैं एपिक्स अस्पताल के साथ एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले 10-12 साल मैं GTB अस्पताल दिल्ली में थी और साथ ही मैं शांति गोपाल अस्पताल गाजियाबाद में भी मैंने काम।
1: वैसे मैम अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त का जो पहला हफ्ता होता है उसको हम मनाते हैं स्तनपान दिवस के रूप में। तो ये पूरा हफ्ता जो है स्तनपान दिवस पे लोग बात कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप हमारे श्रोताओं को ये पहले समझा दीजिए स्तनपान सप्ताह है क्या।
2: बेसिकली इस सप्ताह का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम जनता को जागरूक कर सकें कि बच्चे के लिए माँ का दूध व माँ को बच्चे को दूध पिलाना कितना फायदेमंद है और इसका क्या क्या फायदा बच्चे व माँ को मिलता है।
1: जी, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो स्तनपान के फायदे क्या होते हैं शिशु के लिए?
2: माँ का दूध शुरू के 6 माह में शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध में हर जरूरी पोषक तत्व होता है। शिशु के आंते जो है वो माँ के दूध के लिए ही अनुकूल है, इसीलिए इसे बच्चे को पचाने में बहुत आसानी होती है। साथ ही में जब माँ बच्चे को गोद में लेकर उसे स्तनपान कराती है तो माँ और बच्चे में भावनात्मक बंधन जो है वो और मजबूत हो जाता है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो शिशु को सर्दी खांसी, जुकाम, पेट, कान के इन्फेक्शन इन सब से रक्षा करती है। साथ में माँ के दूध पे बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। 6 माह तक जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें जब हम 6 माह के बाद ठोस आहार शुरू करते हैं तो आहार से होने वाली एलर्जी के प्रति सुरक्षा भी बच्चे को मिल जाती है। जो बच्चे स्तनपान कर रहे हैं उन शिशुओं में सामान्य से अधिक मोटा होने का कारण वह मधुमेह की संभावना भी कम हो जाती है।
1: ये तो रही शिशु के फायदे की बात, अब जरा हम आपसे जान लेते हैं कि माँ को क्या फायदे होते हैं।
2: स्तनपान से जितने फायदे शिशु को होते हैं उतने ही फायदे स्तनपान कराने से माँ को भी मिलते हैं। माँ का जो गर्भाशय यूट्रस होता है वह सिकुड़ कर वापस अपनी गर्भावस्था की पहली स्थिति जाने में भी इस स्तनपान से मदद मिलती है।
1: जी।
2: साथ ही माँ को अपना जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम करने में भी मदद मिलती है। एक दिन में स्तनपान कराने से लगभग 500 कैलोरी तक माँ बर्न कर सकती है। साथ में इसमें जिंदगी में आगे चलकर माँ को होने वाले टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इन सब से भी माँ को खतरा कम होता है। माँ को ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और हृदय रोग संबंधी जो खतरा होता है वह सब भी कम हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह और हर अवधि पे हर सही तापमान में उपलब्ध रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में मुकाबले में जो माँ स्तनपान करवाती है उसमें डिप्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है।
1: जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही है। आई होप एकदम मतलब मस्त वाला दिमाग में घुसेगा। वैसे मैम, बच्चे कई बार दूध पीने के बाद भी रोते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
2: बच्चों के रोने के बहुत से कारण होते हैं। बच्चे का अगर डायपर गीला हो, उसे ठंड लग रही हो, उसे गर्मी लग रही हो, उसे गोद में आकर घूमना हो तो वह बच्चा रोकर ही बता पाता है। बच्चे का रोने का मतलब ये नहीं है कि माँ का दूध पूर्ण नहीं है। माँ का दूध पूर्ण हो सकता है, उसके बाद भी बच्चे का रोने का मतलब यह है कि वह दूध के सिवा और किसी चाहत की इच्छा रखता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हमारी भी आदत होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, हमारा एक सिंपल सा फंडा होता है कि भाई उसको भूख लगी है, पर हम अदर चीजों पर ध्यान नहीं देते। सो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट थी। कैसे जाना जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है या नहीं?
2: अगर बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 1-1.5 घंटा सूता है, दिन में 6-8 बार यानी कि 24 घंटे में 6-8 बार सूसू जाता है और उसका वजन अगर सही तरीके से बढ़ रहा है यानी कि 1 महीने में कम से कम 500 ग्राम के करीब उसका वजन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है।
1: जी अगर माँ को खांसी जुकाम हो रहा है उस टाइम में बच्चे को दूध पिलाना सही होगा?
2: बिल्कुल, माँ के दूध से बच्चे को वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर माँ को वायरल इन्फेक्शन है तो बस वो सावधानी के तौर पे अच्छे से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोकर और अगर बहुत ज्यादा खांसी है तो मुंह पर मास्क लगाकर बच्चे को दूध पिला सकती हैं। बल्कि ऐसा करने से माँ के दूध से जो माँ ने एंटीबॉडीज बनाई है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो बच्चे को मिल जाएंगी। इससे बच्चे में वो बीमारी होने का खतरा और कम हो जाएगा।
1: अगस्त का महीना है और गर्मी भाई साहब बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैम अगर बच्चे को प्यास लग रही है उस वक्त में हम क्या बच्चे को पानी भी थोड़ा बहुत पिला सकते हैं?
2: बिल्कुल भी नहीं। शुरू के 6 माह में हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। माँ के दूध के ना 2 हिस्से होते हैं। जो शुरू का दूध एक छाती से आता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जो बाद का दूध होता है उसमें बच्चे का पेट भरने वाला तत्व फैट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर गर्मी ज्यादा होती है तो माँ का शरीर अपने आप उस चीज को पहचानता है और शुरू के दूध में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो पानी है वो माँ के दूध का पानी वो बच्चे के लिए उसकी प्यास मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए माँ के दूध के सिवा बच्चे को ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि शुरू के 6 माह में बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना है। बच्चे को कोई घुट्टी 555 घुट्टी, 112 बाल जीवन घुट्टी, कोई भी घुट्टी बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है।
1: जी ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई, हाईलाइट किया इसको, क्योंकि अक्सर लोग घुटियां पिलाते रहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ दिन भर थक हार के काम करके और रात में सोने जाती है और उस वक्त आधी रात को बच्चा उठ जाता है, उसको भूख लगती है वो उठ जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका जिससे कि माँ की नींद भी खराब ना हो और बच्चे की भूख भी मिट जाए?
2: बिल्कुल, माँ का दूध ही तो एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह हर मात्रा में सही तापमान पर उपलब्ध है। कुछ समय बाद दूध पिलाने के बाद तो माँ को पता चल जाता है कि वो जिस तरह बच्चा माँ दोनों कंफर्टेबल है किस तरह से वो उस बच्चे को दूध पिला सकती हैं।
1: जी
2: रात में बच्चे को गोद में लिया और उसे दूध पिला दिया और उसके बाद सुला दिया। बल्कि अगर बच्चा ऊपर के दूध पे है तो पहले दूध को बनाएं, उसे गर्म ठंडा करें, उसको लेकर आए, फिर धीरे धीरे बच्चे को पिलाएं, उससे तो माँ की नींद और ज्यादा खराब होगी।
1: आई होप उन महिलाओं को जो माँ बनी है पहली बार बहुत ही ज्यादा आपसे जानकारी मिली होगी और बच्चे को स्तनपान कराने में सही एक गाइड मिल पाया आपकी बातों से। मैम जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को, उन सभी महिलाओं को जो पहली बार माँ बनी है या स्तनपान की सही जानकारी नहीं है, तो एक छोटा सा मैसेज पहुँचाइए।
2: मेरा सबसे छोटा सा और सबसे सरल मैसेज एक ही है कि माँ का दूध शुरू के 6 महीने के लिए शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। इसके सारे फायदे बच्चे व माँ दोनों को ही मिलते हैं और शुरू के 6 महीने में ऊपर का दूध बच्चे को आगे के इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता और साथ में माँ का दूध जो बच्चे की मस्तिष्क के डेवलपमेंट में हेल्प करता है वह ऊपर का दूध कभी नहीं कर सकता।
1: जी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बात करके, इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: एक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया
5: है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। ये हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो महिला मंच। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतिहास लिख जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस, और आसमान कभी किसी की मंजिल नहीं होता, वह तो बस उड़ान की शुरुआत होता है। ऐसे ही एक छोटी बेटी थी भारत की शान, जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो धरती से लेकर अंतरिक्ष तक कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में जानते हैं भारत की पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रेरणा की मिसाल कल्पना चावला जी की प्रेरणादायक कहानी।
3: और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना, और इस महिला मंच शो में खुशी ने बताई दिया कि हम आज बात करने वाले हैं कल्पना चावला जी के बारे में। अगर आपके सपनों में उड़ान है तो पूरी दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह बात जिस शख्सियत पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है उनका ही नाम है कल्पना चावला। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में एक साधारण परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। परिवार में चार भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण सभी इन्हें प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। बचपन से ही कल्पना का नाम आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखकर रोमांचित हो जाता था। जब दूसरे बच्चे गुड़िया गुड्डे या खेलों में व्यस्त रहते थे तब कल्पना आसमान की ओर देखती और सोचती, एक दिन मैं भी इन बादलों के पार जाऊंगी। और 8वीं कक्षा में ही उन्होंने घर वालों से कह दिया था कि उन्हें इंजीनियर बनना है। पिता चाहते थे कि बेटी डॉक्टर या शिक्षिका बने, लेकिन माँ ने बेटी के सपनों को समझा और हर कदम पर उसका साथ दिया। और अब हम बात करने वाले है उनकी पढ़ाई और सपनों की उड़ान।
2: कल्पना जी ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एयर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री 1982 में हासिल की, लेकिन उनका सपना अभी पूरा नहीं हुआ था। उसी साल वे अमेरिका चली गईं, वहां यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्स आर्लिंगटन से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इसके बाद एक और मास्टर्स तथा कोलोराडो विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की। उन्होंने विमान उड़ाने का परीक्षण भी लिया। वे सिंगल इंजीनियर, मल्टी इंजीनियर, ग्लाइडर और कमर्शियल एयरक्राफ्ट उड़ान की लाइसेंस धारी पायलट थी। नासा तक का सफर 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने जल्द ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1994 में उनका चयन नासा के अंतरिक्ष यात्रा दल में हुआ। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। कई वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आखिर वह दिन भी आया जिसका इंतजार कल्पना बचपन से कर रही थी। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन सुनते हैं उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महिला मंच शो में, जहां हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो हर काम आप आसानी से कर सकते हो। तो अब हम बात करने वाले हैं यानी कि पहली अंतरिक्ष यात्रा उनकी। 19 नवम्बर 1997 को स्पेस शटल कोलम्बिया STS-87 उड़ान भरी और इसके साथ इतिहास भी बन गया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में आने वाली भारत में जन्मी पहली महिला बन गई। उन्होंने इस मिशन में लगभग 365 घंटे अंतरिक्ष में बिताए, 252 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और लगभग 1,04,00,000 किलोमीटर की यात्रा की। पूरे भारत में खुशहाली की लहर दौड़ आई। हर बेटी के लिए कल्पना एक प्रेरणादायक लड़की बन गई। दूसरी और अंतिम उड़ान। पहले मिशन की सफलता के बाद उन्होंने दूसरी बार STS-107 मिशन के लिए चुना गया। 16 जनवरी 2003 को फिर स्पेन शटल कोलंबिया अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ। इस मिशन में वैज्ञानिकों की टीम ने लगभग 80 वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी, चिकित्सा, नई तकनीक और मानव स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण शोध शामिल थे। कल्पना पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लगी रही। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी।
1: दर्दनाक दिन 1 फरवरी 2003। 16 दिन का मिशन पूरा हो चुका था। पूरी दुनिया को कोलंबिया की सुरक्षित वापसी का इंतजार, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेस शटल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा यान टूटकर बिखर गया। उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया शॉक में रह गई। भारत ने अपनी बहादुरी बेटी को खो दिया, लेकिन उसके सपने, उसकी मुस्कान और उसकी प्रेरणा आज भी जीवंत है। उनका परिवार कल्पना चावला ने 1983 में उड़ान प्रतीक्षण जीन पीरिये हैरिसन से मुलाकात की और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। 1990 में वे अमेरिका की नागरिक बनी, लेकिन भारत और अपने जन्म स्थान करनाल से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। उनके प्रसिद्ध शब्द, कल्पना चावला अक्सर कहा करती थी, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है और अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए मरूंगी। उनके ये शब्द आज भी हर युवा को बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब हम बात करेंगे इनके सम्मान और पुरस्कार के बारे में। उनके निधन के बाद उन्हीं के कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए, जिनमें शामिल है नासा स्पेन फ्लाइट मेडल, कांग्रेशनल स्पेन मेडल ऑफ ऑनर और अब हम बात करेंगे उनके नाम पर बने स्मारक। आज भी दुनिया में कई संस्थान और स्थान उनका नाम गर्व से धारण किए हुए हैं। भारत के मौसम उपग्रह कल्पना एक का नाम उनके सम्मान में रखा गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रवास के नाम पर है। हरियाणा सरकार ने कल्पना चावला तारा मंडल की स्थापना की। नासा ने उनके नाम पर सुपर कंप्यूटर सम्मानित किया। अमेरिका की कई सड़कों, भवनों और छात्रवृत्तियों का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया।
1: उनकी कहानी क्या सिखाती है? कल्पना चावला जी की कहानी केवल एक अंतरिक्ष यात्रा की कहानी नहीं है साथियों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने छोटी शहर से निकलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। इसलिए आज भी जब कोई बच्ची आसमान की ओर देखकर बड़े सपने देखती है तो लोग कहते हैं एक और कल्पना चावला तैयार हो रही है। कल्पना चावला भले ही आज हम बीच नहीं है, लेकिन श्रोताओं, उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो, मेहनत ईमानदारी से हो और सपनों पर विश्वास हो तो करनाल की एक साधारण लड़की भी सितारों तक पहुंच सकती है। कल्पना चावला केवल एक नाम नहीं बल्कि साहस, मेहनत, जुनून और सपनों की उड़ान का दूसरा नाम है। सपने देखिए, क्योंकि सपने ही आपको आसमान से भी आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे। फिर बात करने वाले हैं हम कल्पना चावला जी के प्रसिद्ध विचार और उनसे मिली प्रेरणा के बारे में। तो बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है महिला मंच में, आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में। और अभी मैंने आपसे कहा भी था कि कल्पना चावला जी के

0: युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनके विचारों और उनसे मिलने वाली सीख को विस्तार से समझते हैं। पहला विचार, सपनों से सफलता तक का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, बस उसे देखने की नज़र, उस पर चलने का साहस और अंत तक चले रहने का धैर्य होना चाहिए। दोस्तों, ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मंत्र है। आज हम में से बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। कल्पना चावला जी कहती हैं कि रास्ता हमेशा होता है, जरूरत है तो सिर्फ उसे खोजने की। अगर रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें खुद रास्ता बनाना पड़ता है। कल्पना चावला जी ने भी यही किया। करनाल जैसे छोटे शहर से निकलकर नासा तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, हमने कल्पना चावला जी के बारे में जाना, लेकिन उन्हीं के लिए उनकी जो कहानी है आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन चुका है। समय बदलता है, तकनीकी बदलती है, दुनिया बदलती है, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। कल्पना चावला की कहानी भी ऐसी ही है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति हमें कुछ नया सिखाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर आज के युवाओं, बच्चों और हम सभी को कल्पना चावला जी के जीवन से क्या सीख मिलती है। बड़ा सपना देखने से कभी मत डरिए। कल्पना चावला जी एक छोटे से शहर करनाल में पैदा हुई थी। उस समय बहुत कम लोग सोचते थे कि भारत की कोई लड़की अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की ऊंचाई और कभी छोटी नहीं होने दी। आज कई युवा सोचते हैं कि हम छोटे शहर से हैं, हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, इसीलिए हम बड़े सपने नहीं देख सकते। लेकिन कल्पना चावला की कहानी बताती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हर सपना बड़ा होता है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देखकर लोग सोचते हैं कि सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। कल्पना चावला जी ने भी दिन रात पढ़ाई की, रिसर्च की, कठिन ट्रेनिंग पूरी की और हर चुनौती का सामना किया। उनकी सफलता किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। और ये बात सही है, सपना सिर्फ आप देखते रहेंगे तो वो पूरा कभी नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर इंसान के जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कई बार मेहनत के बाद भी मन चाहा परिणाम नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम रुक जाए। कल्पना चावला जी ने हर चुनौती का सामना मुस्कुरा कर किया। उन्होंने कभी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। सीखना कभी बंद मत कीजिए। डिग्री लेने के बाद भी उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़ी, नई तकनीकी सीखी, रिसर्च की, खुद को लगातार बेहतर बनाया। आज के युवाओं के लिए ये बहुत ही बड़ी सीख है। अगर हम रोज कुछ नया सीखते रहेंगे तो समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जो सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। आज मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है, लेकिन अगर पूरा समय सिर्फ मोबाइल पर ही निकल जाए तो सपने पूरे नहीं होते। कल्पना चावला जी ने अपना समय सीखने, पढ़ने और अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाया। यही कारण है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी तक पहुंची। समय सबसे कीमती संपत्ति है, जो इसका सम्मान करता है वही आगे बढ़ता है। और कहते हैं ना श्रोताओं, आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग कहते थे कि यह मुश्किल है, तब भी कल्पना चावला जी कहती थी, मैं कोशिश करूंगी। उन्हें खुद पर भरोसा था। आज के युवाओं को भी अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। और इस समाज में लड़का और लड़की बराबर है। कल्पना चावला जी ने साबित किया कि सपनों का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने उन सभी धारणाओं को तोड़ा जिनमें कहा जाता था कि कुछ क्षेत्र सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। आज हर बेटी को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वह मेहनत करेगी तो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकती है। और हर बेटे को यह सीखना चाहिए कि बेटियों को बराबर का सम्मान और अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। अपने देश और अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। अमेरिका में रहने के बावजूद कल्पना चावला जी ने कभी अपनी भारतीय पहचान नहीं छोड़ा, कभी अपनी

ये पहचान नहीं छोड़ी। वे हमेशा अपने स्कूल, अपने देश को याद करती थी। आज की पीढ़ी को भी अपनी भाषा, संस्कृति और देश पर गर्व होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी जाए पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए और मुश्किलों से कभी भागिए मत। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती जब सब कुछ कठिन लगने लगता है, लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो मुश्किल समय में भी हिम्मत रखते हैं। कल्पना चावला ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समय से भागने के बजाय उनका समाधान खोजिए। सफलता केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। कल्पना चावला की उपलब्धियां सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, उनकी सफलता ने लाखों बच्चों, खासकर बेटियों को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाए। और इस शो में युवाओं के लिए विशेष संदेश, अगर आपके पास कोई सपना है तो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए, समय का सम्मान कीजिए, माता पिता और शिक्षकों का आदर्श कीजिए, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखिए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, कभी यह मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जिन्होंने कहा मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल्पना चावला ने हमें सिर्फ अंतरिक्ष की कहानी नहीं दी बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सपने देखो, मेहनत करो, सीखते रहो, डरो मत और कभी हार मत मानो। तो याद रखिए, कल्पना चावला का शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका साहस और उनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। तो श्रोताओं, बस बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ इस महिला मंच शो में। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम फिर से कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें और लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत।

0: तो दोस्तों, एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक अभी हमने लिया था और हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप सभी का फेवरेट शो लेकर महिला मंच, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कल्पना चावला जी के बारे में और उनका तीसरा विचार बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं आप सभी तक साझा करना चाहती हूँ। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, मैंने अपना हर पल अंतरिक्ष के लिए जिया है। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा जुनून होगा जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के नाम कर देता है। आज हम छोटी छोटी प्राणियों में अपना लक्ष्य बदल देते हैं, लेकिन कल्पना जी ने कभी अपना सपना नहीं बदला। उनकी मंजिल सिर्फ एक थी, अंतरिक्ष। लक्ष्य बदलते रहेंगे तो सफलता भी दूर होती जाएगी। साथियों, आपने कभी सोचा है आपका सपना क्या है? क्या आपने उसके लिए मेहनत करनी शुरू की थी या सिर्फ सोच रहे हैं? एक दिन करेंगे। याद रखिए, सपने इंतजार नहीं करते। जो काम आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है, उसी में अपना भविष्य खोजिए। कल्पना चावला जी को बचपन से ही हवाई जहाज पसंद थे। लोगों ने कहा लड़कियां पायलट नहीं बनती, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दुनिया क्या कहती है, इससे ज्यादा जरूरी है आपका दिल क्या कहता है। अगर कल्पना चावला जी दूसरों की बातें सुन लेती तो शायद आज इतिहास में उनका नाम नहीं होता। और उनका पांचवा विचार, डर होना गलत नहीं, डर के कारण रुक जाना गलत है। अंतरिक्ष मिशन आसान नहीं होते, हर उड़ान में खतरा होता है, लेकिन कल्पना चावला जी ने कभी डर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने खतरों को समझा, लेकिन अपने सपनों को उससे बड़ा रखा। और उनकी सीख, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक कहानी के साथ अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। मिलेंगे आपको एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: गुड वाली आफ्टरनून है श्रोताओं, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हैं। अपना शो शुरू हो चुका है हेलो फरमाइश, जहां पर आपने कॉल करना है और आप अपने पसंद के गाना सुन सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9823789896 और समय की बात करूं तो 3:07 हो चुके हैं। और आज का टेम्परेचर भैया थोड़ा उमस वाला है, तो देखिए कोई बात नहीं, गर्म वेदर है और हर वेदर में हमें हर सिचुएशन में ढलना आना चाहिए। लेकिन आप सिचुएशन में जब भी ढल पाएंगे, जब आप अपने पसंद के गाना सुनेंगे, जब अपने पसंद के गाना सुनते हैं तो और भी मज़ा ही आ जाता है। और साथ ही साथ दोपहर में हर कोई नींद के बड़े दीवाने होते हैं, सोचते कि यार चलो थोड़ा सा सो लेते हैं। अगर आप चाह रहे कि अच्छी नींद आए आपको, तो बिल्कुल आप रिक्वेस्ट शो में, फरमाइश शो में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। फिलहाल एक मेरी पसंद का गाना, इतने आप कॉल करते रहिए।
1: कहता हूँ कभी मैं हूर हूर कहता हूँ,

0: क्या बात है श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। इश्क दी बाजिया यानी कि दिलजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी का फरमाइश शो है वो शुरू हो चुका है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9837896896। और समय की बात करूं तो 5:13 हो चुके हैं, तो आइए अपने फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से बात कर रहा हूँ मैम।
0: हाँ जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप कैसी हैं मैम। आपसे ही बात हो रही है, आपसे 15 दिन में हो रही है मैम, एक शनिवार छोड़ दिया था मैम।
0: अच्छा, 15 दिन के बाद हो रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: पिछले सप्ताह किसी की से बात कर ली थी मैम।
0: अच्छा, तो बताइए कौन से गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम सावन का महीना चल रहा है, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम हो रही है दूरी, ये किस सुनवा दे मैम।
0: चलिए जी, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। किसका नाम लेना चाहते हैं?

हाँ जी सर, आप बताइए, आप नाम मेंशन करना चाहते हैं? हेलो, बस बस बस बस बस बस सर, दो ही नाम लेने थे आपने तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम सुनवाते हैं आपको ये गाना, ठीक है? तो चलिए श्रोता, इनकी रिक्वेस्ट पर ये गाना बहुत ही शानदार, और सावन का महीना शुरू हो गया है। आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, क्योंकि आज तीसरा दिन है।

0: हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है श्रोताओ। आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में आप। और समय की बात करूं तो 3:20 हो चुके हैं और आपने हमें कॉल करना है। जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं, नंबर है 9837896896। अभी आपने बहुत ही शानदार अपने गाना एंजॉय किया था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, हाय हाय ये मौसम ये मजबूरी। और सावन के जब महीने आते हैं ना, तो ऐसे ऐसे गाने सच बताओ दिल को छू जाते हैं। तो चलिए अपने सेकंड कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन से गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो मैम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम जी, आप बताइए कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी, हमारे परिवार में और एफएम में भी सब बहुत बढ़िया है
1: जी।
0: हाँ जी, आप बताइए आप अपना नाम, कहाँ रहते हैं?
1: मैं मैम जी सतीश वर्मा बोल रहा हूँ, लाइन पार विकास नगर से।
0: विकास नगर से
1: जी मैम।
0: अच्छा जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: लता मंगेशकर के सुनाऊंगे मैम जी, गाने जो बोले हैं, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी,
1: जी मैम।
0: ठीक है जी, आपको हमें गाना सुनवाते हैं, ठीक है? चलिए चलिए भैया, गाना सुनते हैं, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। और जब आपको मोहब्बत वो मिले तो उसका कद्र करिए, क्योंकि कद्र करना बहुत जरूरी है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं।

0: बात कभी कभी।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है आरजे रीना के साथ श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 3:27 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, यानी कि सदाबहार गाने हमेशा सदाबहार होते हैं। आप इनको कभी भी सुन लो लेकिन आपका मन नहीं भरता है, बार बार इस गाने की तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि जो ओल्ड गाने होते हैं इसीलिए तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि पुराने इस टाइम गोल्डन वाले गाने होते हैं। और अभी भी बहुत से ऐसे हैं लिसनर, बहुत से ऐसे श्रोता है जिनको भाई पुराने गाने से बहुत मोहब्बत है, सच में। चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो लल्लू जी, हेलो पर भाई, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
2: बस ओल्ड इज गोल्ड का गाना सुनवा दीजिए मुझे।
1: ओल्ड इज गोल्ड का आपने गाना बताया, चल तेरे इश्क में पड़ जाते, लेकिन आप हमारा नाम बताइए पहले।
2: वो फिल्म भाभी का बहुत छोटी में फिल्माया गया, पतंग उड़ा
1: रहा है। अरे अपना नाम तो बताइए, आपने नाम तो बताइए। अच्छा जी,
2: ये गाना
1: क्या? हेलो जी, एक दो शब्द बोले इन्होंने, इतने ही फोन ही कट गए। कोई बात नहीं, चलिए चलिए पतंग गाना सुन ही लेते भैया, पुराने गाने होते ही सदाबहार है, तो चलिए इस गाने को भी लुफ्त उठाते हैं और अभी कॉल करते रहिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, चली चली रे पतंग चली रे। और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत ये गाना था, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मतलब कुछ गाने इतने शानदार होते हैं ना कि भैया सुनने के बाद मन भरता ही नहीं। लेकिन उससे पहले हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलो जी, कैसे हो आप, क्या नाम है आपका?
1: मैं ठीक हूँ, मैं धैर्य बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बोल रहा हूँ मानसूर कॉलोनी मोहताबाद।
0: ओके, क्या करते हो आप?
1: मैं स्कूल में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा, कौन से क्लास में हो आप?
1: मैं सिक्स्थ हूँ।
0: ओके, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हो आप?
1: चले गया दिन हो गई शाम,
0: ढल गया दिन हो गई शाम।
1: हाँ।
0: किसी का नाम लेना चाहोगे?
1: मैं अपने फ्रेंड्स का नाम लेना चाहूंगा।
0: हाँ ले लो, दो का ही नाम लेना है, ठीक है? हाँ ले लो। क्या कह रहे हो?
1: वो एक तो खुशागर और एक अर्जित ठाकुर है।

0: क्या कह रहे हो आप?
1: मतलब एक का नाम खुशागर है, एक का नाम आदित्य ठाकुर है।
0: ठीक है, सभी के इन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है,
1: ठीक है,
0: चलिए। तो चलिए श्रोताओं, गाना सुनते हैं, यानी कि ढल गए दिन हो गई शाम। बहुत ही खूबसूरत भाई, ऐसा लग रहा है कि आज तो ओल्ड इज गोल्ड के दीवाने हो रहे सब, हर कोई बस ओल्ड ओल्ड ओल्ड गाने सुनना चाहते। चलिए कोई बात नहीं, सुनते हैं।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना है भैया, एकदम शानदार वाला। और देखिए अब दिन तो ढलता ही जाएगा और शाम होती जाएगी, है ना। सो बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं, आरजेरीना के साथ आप कनेक्ट है फरमाइश शो में। और समय की बात करूं तो 3:38 हो चुके हैं, तो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी बोलो, कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम गुंजन, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, 4th क्लास में पढ़ती हो आप? तो आपके स्कूल छुट्टियाँ पड़ गई?
1: नहीं,
0: आज स्कूल नहीं गई आप? गई थी? ओके, तो क्या क्या किया आपने आज? अच्छा,
1: और गेम खिलवा रहे थे।
0: अच्छा, गेम पसंद है आपको?
1: यस।
0: चलो, कौन सा गेम पसंद है आपको? चलो आप बताओ, गाना कौन सा सुनना चाहती हो?
1: टूट गई चूड़िया कलाई।
0: अच्छा,
1: सुनाना।
0: अरे हाँ, मैं आपको पूरा सुनाऊंगी, ठीक है?
1: यस, बाय
0: बाय। तो चलिए भाई, गाना सुनते हैं टूट गई चूड़िया कलाई में, बहुत ही शानदार गाना। उसके बाद लौट कर आते हैं।
2: चलें।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
4: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है। फरमाइशों में आर्जरीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 3:45 हो चुके हैं। और वेदर की बात करूं तो मुरादाबाद में 2 से 3 दिन तक बारिश बता रखी है, यानी कि बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। तो वेदर थोड़ा और भी, क्योंकि कल यानी कि अगर मैं कल और परसों की बात करूं तो परसों तो यानी कि सावन का जो फर्स्ट सोमवार है तो उस दिन तो बारिश तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी, क्योंकि सावन का व्रत है। और तो उस दिन तो बारिश ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वेदर अपडेट ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना जताई जा रही है, और यूपी के कई राज्यों में भी, कई हिस्सों के राज्यों में भी बारिश बता रखी है। तो चलिए फिलहाल अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? नमस्ते।
5: ठीक है।
4: हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
5: बहुत बढ़िया है, हम पूना से बोल रहे हैं।
4: हाँ जी हाँ जी, बताइए। और पुणे का वेदर कैसा है सर?
5: पुणे का मौसम तो बहुत बढ़िया है।
4: चलिए,
5: घटाएं चारों तरफ, बारिश का मौसम, बारिश हो रही है बराबर रेगुलर।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, ठंडा मौसम है?
5: ठंडा एकदम, बढ़िया मौसम।
4: चलिए अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
5: नैनो में बदरा छाए, मूवी है मेरा साया।
4: ओके जी, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
5: जी हम हैं, हमारी वाइफ हैं अजमत जहां।
4: चलिए जी, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर?
5: ओके
4: ओके, चलिए भाई गाना सुनते हैं। और समय हमारे पास यानी कि 3:47 हो चुके हैं श्रोताओं, तो आज का जो ये मौका है वो बिल्कुल हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कल आपको पता है कि संडे है और संडे का ये प्रोग्राम नहीं आता है। अगर उसके लिए आपको रात का इंतज़ार करने पड़ेगा, गीत आपके नाम से आता है उस शो में आप कॉल कर पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपके पास गोल्डन चांस है, तो आप कॉल करिए और गाना सुनिए।

0: बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओ। लता मंगेशकर जी की आवाज में और आप अर्जुरीना के साथ कनेक्ट है फरमाई शो में। और समय की बात करूँ तो 3:52 हो चुकी है। हमारे पास समय अभी है, आराम से आप कॉल करिए। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि यानी कि मंडे से लेकर आज फ्राइडे तक अगर आपने कॉल किया है तो प्लीज़ आप कॉल मत करिएगा। और जो नए श्रोता है जिन्होंने इस वीक कॉल नहीं किया है उनको मौका मिलना चाहिए, उनकी भी फरमाइश आप सुनिए। उनकी भी फरमाइश बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत ही फैंटास्टिक होती है। तो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: थैंक यू जी। बताइए फैमिली में सब कैसे हैं?
1: सब बढ़िया है, सब मौज बहार है।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाने का फिल्म का नाम है जानकी बाजी और गाने बोले आते आते तेरी याद आ गई।
0: क्या बात है, किन के लिए?
1: ये गाना सबसे पहले तो आपको डेडिकेटेड है।
0: ओके जी।
1: और साथ में मेरी पत्नी मायदे भी है, दोनों बेटे ऋतिक और आदित्य का साथ है और साथ में दोस्त है बीजना से राजवीर सिंह यादव और यूनुस खान जी।
0: ओके ओके ओके, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर?
1: ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।
0: ओके जी, तो चलिए गाना सुनते हैं। बहुत ही शानदार ये गाना है, जानकी बाजी, यानी कि मूवी रिलीज हुई थी 1985 में।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो 4:01 हो चुका है। और सही कहावत है, यानी कि देखिए, मिलजुल कर रहिए, क्योंकि समय का बिल्कुल भी नहीं पता है कब क्या हो जाए। इसीलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए और अपने जुबान यानी कि मीठे शब्द बोलिए। कभी भी ऐसे शब्द ना निकाले ताकि दूसरों को हर्ट कर जाए। और कभी भी अपना गुस्सा हमें किसी और के ऊपर नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जिसके वजह से आपका दिमाग खराब है तो ज़रूरी नहीं है कि आप थर्ड पर्सन पे अपना गुस्सा दिखाए, ये नहीं करना चाहिए। चलिए फिलहाल हमारे जो लिसनर है वो वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं।
1: हेलो।
2: अरे आरा जी, सुनता हूँ, राज साहब को सुनता हूँ।
0: अरे सर, आप अपना नाम बताइए। गुड नमस्ते,
2: मेरा नाम मनोहर खान।
0: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं कपूर कंपनी से।
0: कपूर कंपनी से, बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: तो मैंने तो यूँ कहा था, क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम।
0: अच्छा, चलिए सर, आपको हम ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर?
2: आप पूरे ही सुना ना।
0: अरे आप कहे तो मैं दोबारा चला के सुना दूं।
2: नहीं नहीं, नहीं उसमें हिसाब भी आएगा कि मेगा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा ही गाना सुनवाऊंगी सर मैं, ठीक है?
2: ठीक है सर, ओके
0: ओके ओके। चलिए श्रोताओं, गाना सुनते हैं, क्योंकि इतना प्यार हम तुमको करते हैं। और अभी कॉल करते रहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बचता है, तो कॉल करते रहिए और अपना गाना सुनते रहिए।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, आपको भी पता है, यानी कि 4:07 हो चुके हैं और बहुत ही बिंदास आपने गाना सुना है, यानी कि 90s सुपर डुपर हिट गाना। तो आइए अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता भैया कि कॉल करके सो गए हैं लेकिन उन्होंने गाना बता दिया था, सो ये गाना हम प्ले करते हैं उनकी रिक्वेस्ट पर। मुस्कान नाम है इनका, और चलिए गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। और आज सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कॉल करके भूल मत जाया करिए, ये भी याद रखिए कि हमें बात भी करनी होती है जी। चलिए जी।

जी हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ श्रोताओं, तो समय हो चुका है यानी कि 4:13 और

0: और देखिए जो लोग यानी कि पतले होते हैं, दुबले होते हैं, तो वो यही सोचते हैं ना कि यार बस कैसे भी करके ना थोड़ा सा वेट हमारा बढ़ जाए जिससे अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है आपने। जो भुना हुआ चना होता है वो खाना है आपने, और खजूर खाइए। देखिए वेट गेन आराम से होने लग जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी डाइट भी सही करनी होती है, तभी आप अपने जो वेट को गेन कर सकेंगे। और साथ ही साथ बहुत से ये कहते हैं कि हम बाहर का भी खाना खाते हैं तब भी हमारा वेट बढ़ता नहीं है, तो बॉडी में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी हो तो आपको जल्दी से पता चल जाए और आप आगे ग्रो कर पाए। चलिए फिलहाल अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: मैम नमस्कार। बढ़िया
0: नमस्कार जी, कैसे हैं?
1: मैम।
0: बताइए क्या नाम है आपका?
1: मैं रेडियो दो परवेज अहमद सुकुलपुरा बनारस से, हम रीना मैम से रेडियो मुरादाबाद में जुड़ गए हैं।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आपको फिर?
1: बढ़िया लग रहा है मैम, 1 महीने से कोशिश कर रहे थे, बात नहीं हो पा रही, आज आपके आपसे हमारी बात हो रही है मैम।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब वही है ना, ट्राई करते रहना चाहिए, आज नहीं तो कल आपका कॉल लग ही जाएगा।
1: जी, आ बहुत अच्छा हुआ। इसके पहले भी जब मेरी लास्ट बार कॉल लगी थी तो आप ही से बात हुई थी मेरी।
0: अच्छा, और
1: बीच बीच में मैं कोशिश किया मैम की बात हो जाए, लेकिन बात हो नहीं पाई।
0: एक्चुअली सर कॉल बहुत आते हैं ना, तो बिजी होता होगा, इस वजह से बात नहीं हो पाई होगी आपकी।
1: हाँ मैम, बिजी तो रहता है। चलिए आज बात हो गई, अच्छा लग रहा है, खुशी
0: हाँ,
1: हो रही है
0: और बताइए बनारस का वेदर कैसा है?
1: मैम। यहाँ बारिश जो है बहुत कम हो रही है, आज 3 दिन पहले बारिश हुई थी, फिर कल धूप, आज धूप, और यहाँ बारिश तो बहुत कम ही हो रही है बनारस में।
0: अच्छा,
1: हाँ मैम,
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैम गाना रहेगा धरती चार चार, कौन
0: ये
1: सा,
0: धरती चांद सितारे।
1: हाँ, ये नदिया पौन घटा दे, तू जब जब मुझको पुकारे, ऐसे गाना है मैम, ये
0: आपने
1: गाना मैं
0: आपने ये
1: सुनूंगा।
0: मूवी देखी है,
1: हाँ सलमान खान की मूवी है मैम,
0: कुर्बान
1: गाना
0: मूवी?
1: भी सुन जी, ये गाना हमको अच्छा लगता है बहुत मैम, गाना जो कि बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता था, आज हम सोचे थे रीना मैम से इसी गाने की गुजारिश की जाए।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, ये हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर?
1: जी मैम, और सभी श्रोताओं को ये गाना डेडिकेट कर रहेगा जो रेडियो मुरादाबाद सुनते हैं मैम।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी?
1: जी, शुक्रिया, धन्यवाद मैम।
0: ओके जी, तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही शानदार गाना है ये, धरती चांद सितारे गाना हम एंजॉय करेंगे, यानी कि अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में, उदित नारायण जी की आवाज में, खूबसूरत कुर्बान मूवी से ये गाना है।

0: start.
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो जी, हेलो। गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ फरमाइश शो में। और समय की बात करो श्रोताओं, तो 4:27 हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। चलिए बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, कैसे हैं?
1: मैम, मैं शिवा लोहट MP विदिशा से आपका नियमित श्रोता बात करता हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, और आपसे बातचीत हो रही है तो और भी अच्छा हो गया हूँ।
0: चलो जी, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बताया आपने?
1: शिवा लोहट MP विदिशा से।
0: ओके ओके जी, क्या करते हैं सर आप?
1: मैम, मैं एक्चुअली ब्लाइंड हूँ, समाज सेवा के कार्यों में लगा रहता हूँ मैम। जैसे हर 3 महीने में रक्तदान करना हो गया, गाय को चारा पानी रखना, पक्षियों को दाना पानी रखना, और गरीब लोगों को समय समय पे भोजन कराना मैम।
0: ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं सर आप, समाज सेवा करते हैं। तो बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैम, मूवी का नाम है कल की आवाज, और गाने के बोल रहेंगे, तुम्हारी नजरों से हमने देखा अजब की चाह झलक रही है, कुमार सानू जी ने गाया मैम।
0: ठीक है जी, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: हमारे मित्र रहेंगे अमल जी, विमल जी, पुरुषोत्तम कुमार जी हैं मथुरा
0: ओके
1: से,
0: ओके
1: अविनाश
0: ओके
1: जी
0: सर,
1: हैं।
0: दो सिर्फ दो, सिर्फ दो गाने नाम लेने होते हैं।
1: ओके,
0: हाँ जी, चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: थैंक यू मैम।
0: ओ वेलकम सर। तो चलिए गाना सुनते श्रोताओं, और सिर्फ आप अपने दोस्तों के दो ही नाम ले सकते हैं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं।

0: झलक रही है।
1: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। कल की आवाज मूवी से, जो कि मूवी 1992 में रिलीज हुई थी और कुमार सानू जी की आवाज में, आशा भोसले जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना, और आप सुन रहे हैं फरमाइश शो आर्जुरीना के साथ। समय की बात करूं तो यानी कि 4:34 हो चुके हैं। आइए बिना किसी देरी के अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
2: गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, कैसी हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हो?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कहाँ से बात कर रही हो आप?
2: मैं रायनावल से रिहाना बात कर रही हूँ।
1: हाँ जी रिहाना, कैसे है फैमिली में सब?
2: सब बढ़िया मैम।
1: क्या करती हो आप?
2: आपकी फैमिली कैसे हैं सब?
1: सब बहुत बढ़िया है।
2: Yeah.
1: क्या करती हैं आप?
2: मैम मैं घर पे रहती
1: हूँ। ओके, तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
2: मैम गाना सुना दिल मेरा तुम्हारी अदाई ले गई।
1: ओके, किसकी अदाई ले गई आप ये तो बताइए।
2: आपके।
1: चलिए जी, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी। चलिए फिर, आपको किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
2: मैम आपके साथ और मेरी सिस्टर है छोटी मेहर।
1: चलिए जी, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी?
2: ठीक है।
1: ओके, तो चलिए भैया, लड़की ने बाजी मार ली है सच में। चलिए गाना सुनते हैं, लौट कर आते हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। दिल मेरा तेरी अदाएं ले गई, और बहुत ही प्यारी एक लाइन अभी जस्ट मैंने पढ़ी है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप तक भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं, जानने पर मिलती है, यानी कि जागने पर मिलती है। अगर आप सोते रहेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसीलिए कामयाबी अगर चाहिए तो आपको उठिए, जागिए, जानिए और आगे बढ़िए आप अपनी जिंदगी में। अदरवाइज कहते हैं ना, सोने वाले खोते रहते हैं और जागने वाले पा लेते हैं। बहुत मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, हर कोई सुबह सुबह 6 बजे उठ जाते था, लेकिन अब आधे बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो वो तो रात के 2-3 बजे सोते हैं, तो सुबह 6 बजे तो पॉसिबल ही नहीं उठ जाए, 10-11 बजे तक उठते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हर किसी के पास फोन है, फोन में लगे रहते हैं। पहले इतना फोन किसी के पास नहीं होता था, इक्का दुक्का के पास होता भी था तो कीपैड वाला फोन होते थे, और फिर सब यानी कि 8-9 बजे तक सो जाते थे और सुबह 6 बजे तक छोटे बड़े सब उठ जाते थे। लेकिन अब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, भाई शहरों में तो अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर तो 10 बजे उनकी सुबह होती है, यानी कि ये सूर्य भगवान भी उग जाते हैं और कहते हैं उठ जाओ उठ जाओ। इसीलिए जागोगे तो पाओगे, सोओगे तो खोगे, ये कहावत आपने सुनी होगी। फिलहाल आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में, और समय की बात करूँ तो 4:42 हो चुके हैं श्रोताओं, और आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते,
1: जी, आदाब।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, बढ़िया है। हुसैन
0: क्या नाम है आपका
1: अंसार हुसैन बोल रहा हूँ।
0: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: आपके वहाँ सब ठीक ठाक है? और
0: हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं।
1: गौरव भैया कहाँ रह रहे हैं? बढ़िया
0: गौरव भैया साहब बहुत बढ़िया है
1: है। चलो
0: जी।
1: ये गाना सुनना था कि तुम क्या मिले जाने जा प्यार जिंदगी का।
0: चलिए जी, हम आपको एक खूबसूरत ट्रैक सुनवाते हैं, ठीक है सर?
1: एक एक नाम बोल रहे हैं
0: अरे बिल्कुल, दो नाम बोलिएगा, एक नहीं दो बोलिए
1: अब्दुल सलमान और
0: जी।
1: अली अब्बास।
0: चलिए जी, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं और बाकी सुनने वालों के साथ। चलिए श्रोताओं, तुम क्या मिले ये गाना है, लता मंगेशकर जी की आवाज में, उदित नारायण जी की आवाज में खूबसूरत गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं। और समय हमारे पास बहुत कम है श्रोताओं, तो आप कॉल कर सकते हैं बेधड़क बिंदास।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है अर्जरीना के साथ। फरमाइश शो में कनेक्ट है श्रोताओं, और समय की बात करूं 4:49 हो चुके हैं, यानी कि 10 मिनट और है हमारे पास। और देखना ये है कि इस कॉलर के बाद लास्ट लकी कॉलर हमारे साथ कौन कनेक्ट होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इनसे बात करते हैं। हेलो।
6: हेलो मैम, नमस्ते।
5: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
6: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
5: बहुत बढ़िया हूँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं?
6: मैम हम लोधीपुर मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, मेरा नाम उमेश कुमार प्रजापति है
5: जी। बताइए सर, कैसे हैं फैमिली में सब?
6: सब बढ़िया है, मौज आ रही है।
5: चलो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए। बताइए कौन से गाने सुनना चाहते हैं? ठीक है जी, हरियाणवी आपको सुनवाते हैं, हरियाणवी ट्रैक। किसी का नाम लेना चाहेंगे? चलिए जी, इन्हीं के साथ आपको एक गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर? बहुत बढ़िया है। चलिए जी, सुनवाते हैं आपको हम गाना, ठीक है? चलिए तो श्रोताओं, देखते अभी ये देखना ये है कि लास्ट लकी कॉलर हमारे साथ कौन कनेक्ट होते हैं।

0: हेलो, गुड वाली इवनिंग है फरमाइश शो में आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 5:54 हो चुके हैं, तो आइए अपने लास्ट लकी कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी मैम। जी
0: नमस्कार सर।
1: नमस्ते मैम,
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया जी, आपकी कृपा है
0: जी, बस बनी रहनी चाहिए भगवान की कृपा। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम राजू है मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं होटल 24 के पास एक फर्म है पैरामाउंट एक्सपोर्ट वहाँ से बोल रहा
0: हूँ। ओके जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, क्या मौसम आया है,
0: किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: सर मेरे ये फ्रेंड है पंकज है, नीरज जी है।
0: जी चलिए उन्हीं के साथ, आपको
1: आप सभी के साथ।
0: जी जी जी, हम तो सुन ही लेंगे सर, जब हम सुना रहे तो आपको।
1: जी जी जी मैम, जी जी।
0: चलिए सर,
1: ट्राई कर रहे थे, लास्ट बोला हम बन गए, ये देखो नसीब की बात है।
0: भगवान ने सुन लिया आपकी, भोले बाबा ने सुन लिया, सावन का महीना है ना,
1: भोले बाबा
0: हाँ, तो वो धरती पर आ चुके तो इसीलिए उन्होंने सुन लिया आपकी बात।
1: कितने पावन दिन चल रहे हैं सावन के।
0: जी जी जी
1: जी जी,
0: तो चलिए आपको हम गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर?
1: ठीक है मैम, ठीक है, नमस्ते।
0: ओके जी, नमस्ते। तो चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, अपनी मुलाकात होगी सीधा मंडे को करेंगे, शाम 5 से लेकर शाम 7 तक की शो आती है, उसमें बात करेंगे ढेर सारे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए, और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल वेदर भी बताया जा रहा है कि 2 तक बारिश की संभावना है, और इसी के साथ ही लास्ट गाना, बाय।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना, और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट आपके साथ हम ढेर सारी बातें तो करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बात करने वाले हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण बच्चों को अधिकारों से नजरअंदाज कर दिया जाता है। सो इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी। तो हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। मोस्ट वेलकम है सर, आप कैसे हैं? आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए जरा।
2: देखिए, मैं प्रोफेशनल एज एन एडवोकेट वर्किंग करता हूं, और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं।
1: हाँ जी।
2: और हम लोग कहीं भी अगर कोई अन्याय करता है या कोई भी हमें गलत बात लिखती है तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं।
1: लेकिन सर आपका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
2: मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है।
1: तो सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, बच्चों के अधिकार आखिरकार है क्या?
2: देखिए, जैसे समाज में बच्चे भी एक समाज का ही हिस्सा है, तो हमारे सरकार ने उनके लिए भी कुछ राइट्स बनाए हुए हैं। खास तो जो बच्चों के अधिकार है, वो हर बच्चे को जन्म से वो अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, सुरक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शोषण से बचाव का अधिकार है, और अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: और आजकल कई NGO भी आप देख सकते हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए कई डिफरेंट फील्ड्स में।
1: बिल्कुल।
2: तो हमें राइट्स बच्चों के पता होना सबको जरूरी है।
1: बिल्कुल। सो सर अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं?
2: देखिए, कानून बच्चों के लिए तो कई बने हुए हैं। जैसे अगर हम लेबर की बात करते हैं, कई फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है, तो लेबर डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेता है, उस पे एक्शन लेता है वो। ठीक है,
1: बिल्कुल सर।
2: और कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि बच्चे कहीं अगर पढ़ने जाते हैं या कहीं किसी जो है स्कूल में जा रहे हैं या कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके साथ कई ऐसी घटनाएं भी आती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी घटनाएं हमने देखी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो उसमें भी सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और कानून तो है ही है अपनी जगह।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और सबसे मेन बात तो सर इसमें यही है कि पेरेंट्स को बहुत इसमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आखिरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है?
2: देखिए, शिक्षा का अधिकार हमारा राइट टू एजुकेशन, हमारा फंडामेंटल राइट भी है ये। और ये प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ जो शिक्षा का अधिकार मिल जाता है वो 14 साल तक के लिए उसको होता है। सरकार भी हमारी काफी इसको प्रमोट कर रही है शिक्षा को लेके, क्योंकि अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए बता भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। और जो है सबसे बड़ी चीज है, अगर वो सजग होगा तो उसके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं होगी, अगर उसे नॉलेज होगी पूरी।
1: तो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, आपको पता है जो गवर्नमेंट स्कूल में, उनको तो फ्री ऑफ कोर्स हर चीजें मिलती है।
2: ठीक है।
1: और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको बुक्स भी हमारे स्कूल से ही खरीदनी है, यूनिफॉर्म आप लेना है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि सर इतनी चीजें अवेलेबल नहीं कर पाते।
2: बिल्कुल ठीक बात है रीना जी आपकी। देखिए, मैंने भी काफी सोचता हूं मैं कि शिक्षा हमारी सरकार कहां, जहां एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है जो गलत है। तो सोच उनकी थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा कि हर चीज में कमर्शियल नहीं देखना चाहिए। आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएं, ये नहीं होना चाहिए कि आप शिक्षा के नाम पे बुक्स भी यहाँ से लीजिए, ड्रेसेस भी यहाँ से लीजिए। कमर्शियल मैं मानता हूँ, चलिए रेवेन्यू हर चीज में भाई स्टाफ को सैलरी देनी रहती है, एक्सपेंसेस होते हैं,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन इतना कमर्शियल नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो पेरेंट्स हैं जो इस एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते उनको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स फील हो कि हम अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
2: और सरकार को भी हमारे कुछ स्टेप लेना चाहिए कि एक मापदंड ऐसे होने चाहिए, एक फीस, एक रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री लगानी चाहिए कि भाई इससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और बुक्स का भी मैं देखता हूँ हर सिलेबस में, हर ईयर जो सिलेबस चेंज हो जाता है। हमारे टाइम में तो ये होता था कि जैसे बुक्स होती थी हम हाँ। पास आउट होते तो पुरानी बुक से भी हम लोग पढ़ लेते थे।
3: अब तो ये है कि हम यूज ही नहीं कर सकते उस बुक को।
2: अब बुक्स का हर बार सिलेबस चेंज कर देते हैं हर बार, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस चीज को।
3: करेक्ट करेक्ट।
2: तो ऐसा भी कुछ सरकार को होना चाहिए कि 5 साल तक के लिए अगर कोई सिलेबस वो लगा रहे हैं तो 5 साल तक उसे चेंज ना करें वो।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: ऐसा कुछ उनको एक
3: नहीं, ये जो पहले जैसे चलता था कि एक ही बुक अवेलेबल होती थी 10th तक तो मतलब सेम होती थी सर।
2: बिल्कुल।
3: तो बुक्स आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे।
2: हम भी अपने सीनियर से, जैसे कोई सीनियर पास आउट होता था उनकी बुक से हम लोग भी पढ़ लेते थे, वही हमें भी उसी,
3: और कुछ समझ नहीं आता तो उनसे भी पूछ लेते थे।
2: बिल्कुल, गाइडेंस मिल जाती थी।
3: अब तो ये है कि हम बच्चे के अगर बुक पढ़ रहे हैं अगर वो मुझसे कुछ पूछेगा तो पहले तो मैं उसके उस चीज को पढ़ूंगी,
2: हर साल समझूंगी। तो एटलीस्ट प्रोविजन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि 5 साल तक कम से कम बुक्स में कोई बस ऐसा चेंज ना हो कि
3: बिल्कुल
2: वो
3: बिल्कुल कंफ्यूज
2: हो और जो है नई बुक्स खरीदनी पड़ जाए।
3: लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देखिए सर, अभी अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई ना करके अभी काम में लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं, तो क्या सर मुझे लगता है कानूनी अपराध है, तो इसके लिए ये क्या करना चाहिए?
2: देखिये कानूनी अपराध कहीं ना कहीं हम लोग अब खुद ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा है कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी फैमिलीज में बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, और खास तौर पे कुछ कम्युनिटीज में मैंने देखा है कि वो लोग एजुकेशन को सेकेंडरी रखते हैं, अर्निंग को प्राइमरी रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जन्म के साथ ही जैसे बच्चे ने होश संभाला, चलना फिरना शुरू करा था, किसी चीज की उसके अंदर स्किल्स आई तो उसे काम पे लगा देते हैं।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: जैसे किसी उसे फैक्ट्री में लगा दिया या कोई ऐसा लेबर का काम उसको कराने लग गए, तो बच्चे का क्या होता है जब वो अर्निंग करने लग जाता है ना तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा धीरे धीरे
3: खत्म
2: हो जाती है। वो सोचता है अभी मेरा तो यही, उसको सिखाया यही जाता है कि यही लाइफ है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: है ना, तो जब उसका बचपन ही आपने मार दिया उसको तो बेचारा वो क्या करेगा वो बड़ा होकर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है, हम लोगों को पहले बच्चे को बचपन देना चाहिए, है ना।
3: करेक्ट करेक्ट।
2: है ना, जब वो बचपन जिएगा सही से, उसकी शिक्षा अच्छी होगी तो ऑब्वियस है वो आगे चलेगा,
3: आगे भी बढ़ेगा,
2: बिजनेसमैन भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, एडवोकेट भी बन सकता है, IAS PCS भी बन सकता है।
3: सर तो आगे मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि ये बच्चों के साथ अगर जबरदस्ती करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई कानूनी नियम कुछ?
2: बिल्कुल, हेल्पलाइन भी है और हमारे कुछ एक लॉज भी ऐसे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर बच्चों के साथ कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है या कोई भी ऐसी बात होती है तो आप सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। कई एक एनजीओ से आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एनजीओ भी आज की डेट में कई एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो 1098 है। मैं अपने सभी कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं से बोलूंगा कि 1098 ये नंबर आपको इमरजेंसी में जरूर याद रखना है, अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी हैरेसमेंट होता है तो तुरंत इस नंबर पे आप कॉल मिलाए 1098
3: जी। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1098। और चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तो श्रोताओं, म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट हो गए आप सभी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ अगर कोई भी ऐसी धोखाधड़ी होती है या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको आप काम करवाते हैं और जो बच्चे काम करे पढ़ना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं। तो सर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा आखिरकार क्यों जरूरी है।
1: देखिए, बच्चे समाज का भविष्य, अगर उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।
0: बिल्कुल सर।
1: क्योंकि जो जैसे आपने देखा होगा, एक पौधा होता है, उसको अगर सही से आप खाद पानी दोगे तभी वो अच्छा बड़े होकर एक वृक्ष बनता है और फल देता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी, अगर हमें एक समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें अच्छा माहौल देना पड़ेगा।
0: और सर हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि ये कहा जाता है कि माता पिता ही बच्चे के लिए पहले गुरु होते हैं, तो सर माता पिता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बच्चों के प्रति?
1: देखिए, माता पिता का विशेष रोल होता है बच्चे के जो है भरण पोषण पे। सबसे बड़ी चीज तो ये कि वो गुरु, पहले गुरु वही होते हैं और बच्चे को प्यार, शिक्षा, अच्छा माहौल, सुरक्षा दें, उसका सही से विकास हो, तो यही सारी जिम्मेदारियां होती है। और खास तौर पे छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि माता पिता को हमेशा वॉच करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, किसके घर जा रहा है। कई बार हमने ऐसे केसेस भी हमारे पास में आए हैं कि जो बहुत ही नोन होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उन्होंने भी सेल्फ हैरेसमेंट बच्चों का किया होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बच्चों में मैं दोनों की बात करता हूँ, मेल और फीमेल दोनों की। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस नहीं आया, वो केसेस हमारे पास आते रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बच्चों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उनको खास तौर पे ट्रेनिंग देनी चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है,
0: क्या होता है, करेक्ट
1: पता होना चाहिए उनको। और बच्चों को ये शिक्षा घर के साथ साथ स्कूल्स में भी, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं जहाँ बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं, क्रीच में जाता है, तो वहाँ पे भी ये शिक्षा उनको जरूर दिलवानी चाहिए बच्चों को, कि उनको पता होना चाहिए कि किसकी इंटेंशन गलत है, कौन हमें कोई लालच दे के बुला रहा है या जो है इंटेंशन उसकी। बच्चे, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती,
0: बच्चे ये कहते हैं भगवान के रूप,
1: भगवान का रूप होते हैं, कोमल होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में दिलवानी चाहिए एडमिशन।
0: बिल्कुल सर। और सर मुझे लगता है कि कई बार बच्चे जब अपनी बात रखते हैं ना, तो कभी कभी ना हम उनको दबा देते हैं, तो क्या बच्चों को अपनी राय रखने का अधिकार है?
1: बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर बच्चा कोई बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है या किसी चीज को पूछ रहा है आपसे या उसके मन में कोई जिज्ञासा है, अगर आप उसको डांट के डपट के उसे चुप करा दोगे तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, है ना। और जब व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है तो उसका बड़े होके बच्चे का जो एक समाज का जो हिस्सा बनता है, बड़े होके कहीं जॉब में जाता है, कहीं बिजनेस में जाता है, तो उसका व्यक्तित्व वो निखर नहीं पाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो निश्चित तौर पे ये है कि अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है या जिज्ञासा है उसके अंदर, तो आपको पोलाइट वे में उसकी बात को समझना चाहिए। हो सकता है वो इतनी लॉजिकल बात पूछ रहा हो कि आप उसको समझ पाए।
0: करेक्ट।
1: कई बार हमें बच्चों की बातें, बचपन की बात, हम लोग उसे मजाक में उड़ा
0: मजाक
1: देते
0: में उड़ाते हैं।
1: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात मजाक की नहीं, कुछ बात गंभीर भी हो सकती है। बच्चा अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सहजता से सुनते हुए उसको समझे और उसका निदान करे।
0: बिल्कुल जी, ये तो सर आपने बहुत सही बात कही कि बच्चों की बातें हर सिचुएशन में हमें सुननी चाहिए उनकी बातें, कि क्योंकि कुछ नहीं पता उसके साथ बाहर क्या हुआ है और वो घर पर आके बता रहे, तो कभी कभी ना डिले कर देते हम कि नहीं ऐसा नहीं हुआ।
1: हाँ। पता चला बच्चे के साथ कोई हैपनिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत गलत हुआ है और बच्चा घर पे डर के माता नहीं पाता क्योंकि पेरेंट्स डांट डपट देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कुंठा का भाव बच्चे के अंदर भर जाता है और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के भी सुसाइड के केसेस आए काफी।
0: करेक्ट करेक्ट
1: ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो आप को उससे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना है एकदम।
0: सर आपने डिप्रेशन की बात कही है तो मैं एक बात और रखना चाहूंगी आपके साथ कि आजकल देखते हैं आप फोन हर माता पिता के पास है, हर बच्चे के पास है, जिसके वजह से माता पिता बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने
0: तीनों। तो सर मुझे लगता है कि इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को?
1: टाइम तो बिल्कुल जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, मेरी राय यही है। लेकिन कोविड के बाद से जो चीजें अब चेंज हुई है तो लोग ज्यादातर स्क्रीन टाइम, मेरा भी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन हम लोग उसे प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं। अगर हमें काम की चीज देखनी होती है तभी हम यूज करते हैं उसको, लेकिन टाइम जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मोबाइल का कम यूज करें, टीवी कम देखें, उनको आदत डलवाइए, वो बुक्स पढ़ें, नॉवल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। अब आज की डेट में सोशल मीडिया आप देखेंगे मोबाइल पे इतने वल्गर कंटेंट आते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, करेक्ट,
1: कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, तो बच्चा उसको देखता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में चीजें बैठती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, है ना, टीवी कम से कम देखें,
0: और मुझे लगता है कि इसका ध्यान पेरेंट्स ही देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और
0: कि बच्चा
1: बच्चों को तो खास तौर पे मोबाइल नहीं दे, बड़े बच्चों का तो चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनके ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए गैजेट्स का यूज भी है, मिसयूज भी है, दोनों ही चीजें हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: तो एक सर्टेन एज के बाद हमें जो है उन्हें यूज करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं।
0: अगर सर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी भाभी क्या करती है, काम करती रहती है, वो छोटा है अभी 2 साल का ही है, तो वो रोने लग जाता है तो घर पे कोई होता नहीं है संभालने के लिए, उनको फोन पकड़ा देती है। अब फोन पकड़ाने के चक्कर में उस बच्चे का आंख मतलब हमेशा रेड रहने लग गया।
1: हाँ, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा है, इसी वजह से उसकी आईज पे इफेक्ट आया है,
0: वही ना, बच्चों की लत लग गई, अब वो हटना,
1: फोन एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज है, किसी भी चीज का हो जाए, तो उस चीजों को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सर। सर तो हम आगे बढ़ेंगे कि स्कूल में बच्चों के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए एकदम?
1: देखिए, स्कूल में बच्चों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या कोई भी ऐसा हैरेसमेंट होता है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत देनी चाहिए, जो संबंधित जो भी ऑफिसर या अधिकारी है उसको देनी चाहिए, और पेरेंट्स को तुरंत उस पर एक्शन लेके कार्य करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के सेहत से या उसके मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पे बच्चा कोई भी सेटबैक का कोई ऐसा कदम भी उठा सकता है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, उनको जाति के ऊपर भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जाति ये है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रीना आपने, तो ये कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस खास तौर पे इसको मॉनिटर करना चाहिए, और ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेके उनको एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा वॉच भी करना चाहिए।
0: करेक्ट करेक्ट,
1: टीचर्स अपने ऐसे रखें जो माहौल अच्छा बना के रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चों में हमें ना ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चों के साथ बातें करते हैं, बच्चे मुझे लगता है कि वही सीखते हैं उस टाइम, तो कहीं ना कहीं तो एक तो हम ही होते हैं कि बच्चों को भेदभाव सिखाते हैं कि ये जाति ये है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसी चीज को खत्म करना चाहिए।
1: बिल्कुल खत्म होना चाहिए,
0: तभी जाकर हम बच्चे भेदभाव जो हो रहा है उनके साथ स्कूल में वो नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, आप बचपन से ही बच्चों के बीच में जो आप माहौल क्रिएट करेंगे तो उसका ही प्रभाव आगे चल के आपको देखने को मिलता है।
0: सर तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि शो में, समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है?
1: देखिए, समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए, अगर कहीं भी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको लेके उसको शिकायत करनी चाहिए और बच्चे को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। अगर कहीं भी आप किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता देखें तो आप तुरंत उसको हेल्प करें, लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, लोकल जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज मैंने एक आपको अभी नंबर बताया था 1098 हेल्पलाइन नंबर, तुरंत आप मिलाएंगे तो वहाँ से आपको तो हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पे जो है आप किसी का भविष्य बचा सकते हैं।
0: करेक्ट करेक्ट, वो ये ना कि भेदभाव ना रखे, चाहे बच्चे कैसा भी हो, किसी का भी हो, बच्चे भगवान का ही रूप,
1: बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि भगवान का रूप है, हमें इसकी हेल्प करनी है।
0: करेक्ट करेक्ट। सो सर हम यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। श्रोताओ, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आप हमारे साथ मैसेज कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837 8968 96।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: तो सर हम आगे बढ़ते अपने शो में और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के टाइम अगर देखा जाए तो पेरेंट्स यानी कि बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लेकर ना इतना हार्म हो कि उनको सुबह से लेकर शाम तक बुक पढ़ते रहो, मतलब खेलने की एक्टिविटी की बात आती है तो यही रहता है कि पहले अपना होमवर्क कम्प्लीट करो। तो लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है।
1: देखिए बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो लोड डाला जा रहा है आज की डेट में, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि एक पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक पैरामीटर उन्होंने बना लिया है कि वही पड़ोसी का बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो हमारा बच्चा कम नहीं आना चाहिए, उसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: तो ये ना कहीं बच्चों के बीच में कॉम्प्लेक्शन क्रिएट कर देगा और जो है ये जो कॉम्प्लेक्शन है ना ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है।
0: करेक्ट।
1: तो आप उसको हर समय अगर एक प्रेशर करो कि भाई बुक्स लेके पढ़ाई करो और तुम जो है मार्क्स कम है तुम्हारे, ये जो है उसका देखो कैसा आया तुम्हारे फ्रेंड का मार्क्स तुम्हारे कम क्यों है, तो इस तरीके से अगर आप उसको बोल रहे हो तो ये भी एक तरीके से एक जो है वो हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है ना। आप उसको
0: कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर हार्म हो रहा है,
1: हार्म हो रहा है उनका, उनका मेंटल पीस हार्म हो रहा है, उनकी हेल्थ हार्म हो रही है। आप बच्चे को फ्री छोड़ दिए, उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो वहां जाएगा, उसको खेलने उतने का टाइम दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे पढ़ाई जरूरी है उसी
0: हिसाब से खेल
1: हिसाब से खेल कूद भी जरूरी है, फिटनेस भी जरूरी है।
0: करेक्ट।
1: और खेल कूद से फिटनेस से हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील आती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में तो आप उस फील्ड में वर्क करिए, उसको जानने की कोशिश करिए कि हो सकता है भाई हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता।
0: नहीं बन सकता। करेक्ट सर, मैं यही पूछने वाली थी आपसे।
1: हर बच्चा एडवोकेट भी नहीं बन सकता।
0: करेक्ट।
1: तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है आप उसको उस फील्ड में डालिए।
0: बिल्कुल।
1: आप एक एक्सपेक्टेशन, एक पैरामीटर जो आपके माइंड सेट में है वो उसके ऊपर ना थोपिए, अपनी मर्जी ना थोपिए, तो उसको उसका डायरेक्शन खुद चूज करने दीजिए कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है।
0: करेक्ट।
1: हाँ उसको एक डायरेक्शन दीजिए जरूर, लेकिन उसको बाउंड मत करिए कि नहीं यही तेरे लिए सही डायरेक्शन है, वो उसको चूज करने दीजिए।
0: करेक्ट। और सही गलत का देखिए पेरेंट्स तो समझाते लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में भी उनकी राय भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, पढ़ना ही है चाहे कैसे भी करो, और बाद में ये होता है कि बच्चे पूरी जिंदगी कोसते रह जाए कि मैं करना क्या चाह रहा था, कर क्या रहा हूँ, उसको वो अच्छे से नहीं कर पाते,
1: कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चों का हमने देखा है कि उनको जो है फील्ड उन्होंने करा बीटेक है और जॉब कर रहे हैं वो बैंक में मार्केटिंग की। बीटेक का आप रिलेशन आप सोचिए कि उसको मार्केटिंग की जॉब से आपने उसको कनेक्ट कर दिया, हो सकता है अगर आप उसे मार्केटिंग में एमबीए की होता तो हो सकता है वो उसको और अच्छा कैरियर में ग्रोथ मिलता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप बच्चे को उसका इंटरेस्ट समझिए। कई कई एग्जांपल्स हैं, सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स आ रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि कम से कम बच्चे को फ्री छोड़े, उसको सही डायरेक्शन खुद चूज करने दो, उसके ऊपर कम से कम बाउंडेशन ना लगाएं। हाँ उसको ध्यान जरूर रखिए, उसको डायरेक्शन जरूर दिखाएं आप।
0: करेक्ट।
1: लेकिन डायरेक्शन दिखाने के बावजूद उसका अगर इंटरेस्ट आपको लगता है दूसरी फील्ड में तो आपको उसी फील्ड में उसको थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए।
0: बिल्कुल सर। सो हम आगे बढ़ते सर और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे कई बार ना सर बाहर जाते हैं या फिर घर किसी के घर भी जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं और उनको वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और कभी कभी वो घर पर भी बताते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं बताते कि नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी हम नहीं बताएंगे, उस चीज को दबा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज आगे बढ़ा रहे, उनको फोर्स कर रहे कि तुम जब बच्चों को डांट नहीं रहे हो तो इसका मतलब बच्चे आगे ही जाएगा, उसको यही लत लग जाएगी चाहिए तो अच्छी बात है, जब हमारे घर वाले ही कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ और ही होगा ये। तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए ये बहुत गलत हैबिट है। अगर आप बच्चे आपके बच्चे के अंदर ये आदत है कि वो किसी भी चीज को उठा लेता है बिना पूछे आपसे ले लेता है ना, दुबका देता है कहीं, तो अभी तो देखिए बचपन में आपको लगेगा कि बच्चा है, बचपन की बातें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के यही जो छोटी छोटी बातें होती हैं बड़ा रूप ले लेती हैं। हो सकता है कल को उसके अंदर ये जो हैबिट्स है इतनी ज्यादा पनप जाए कि कोई बड़ा क्राइम कर दे।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और जब बड़ा क्राइम करेगा तो निश्चित तौर पे उसको कैरियर पे भी उसके टैग लगेगा और आपकी भी उसमें इंसल्ट होगी। तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अगर बच्चे के अंदर ऐसी कोई आदत है या कोई चीजों को छुपाने की आदत है तो सबसे पहली चीज तो ये उससे फ्रेंडली अप्रोच रखिए बच्चे
0: Correct.
1: से। मैंने पहले भी अपने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि बच्चे से हमें फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, उसको डांटे मारे नहीं, और काउंसलिंग सेशंस, एजुकेशन सेशंस उसके लिए अरेंज करें, उसको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। आप किसी दूसरे के घर पे अगर जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए,
0: करेक्ट।
1: तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों को आपको बचपन से ही उसको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन, एक मैनर्स, उसको एटिकेट्स सिखाने पड़ेंगे। अगर उस चीज को आप बचपन में सोच के टाल देते हैं तो आगे चल के यही जो बचपन की बातें हैं बड़ी हो जाती हैं, और बड़ा जब कोई क्राइम होता है तो उसका कुछ आंसर नहीं होता,
0: उसका सॉल्यूशन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को हमें अभी से ही ध्यान रखना चाहिए।
0: और सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बच्चे अगर टीचर उनको मार भी रहा है तो अच्छे चीज के लिए मारते थे, लेकिन के टाइम अगर मार देते हैं बच्चों के ऊपर तो पेरेंट्स सर पर चढ़ जाते हैं कि मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ, बच्चों के ही मतलब साथ दे रहे हैं कि गलत चीजों को साथ दे रहे हैं, तो क्या सर ये सही है?
1: देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: मैं इसमें ये नहीं कहता कि टीचर जो मारते थे वो ठीक करते थे, और ये भी नहीं बोलूंगा कि टीचर नहीं मारते तो ठीक करते।
0: हाँ, हाँ।
1: जब हम अपने टाइम की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन, अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे, हम स्कूलिंग करते तो हमें टीचर्स डांटते भी थे, डपटते भी थे, पनिशमेंट भी देते थे, लेकिन उस पनिशमेंट का लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि आपको कोई हर्ट हो।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: आपके मन पे, आपके दिमाग में वो चीज इतनी बुरी तरह छप जाए कि आप उसको भूल ना पाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पनिशमेंट भी थोड़ा जरूरी है, लेकिन उस लेवल तक कि बच्चे को एटलीस्ट लगना चाहिए हाँ भी ये गलत काम है, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिला है, मैं अच्छा करूंगा, तो उसका आपको एप्रिसिएशन भी दीजिए बच्चे को।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा करे तो एप्रिसिएशन भी दीजिए उसको, तो उसको कम से कम बच्चे को फील नहीं होगा नहीं हर बार मुझे डांटा जाता है। और देखिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कुछ केसेस ऐसे भी आए कि टीचर ने अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया या हर्ट किया तो उसमें बच्चे की जान तक पे बनाई है।
0: करेक्ट ये सर।
1: तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज हमारी बना रखी हैं कि आप बच्चे को हर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो देखिए अपने बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है कि हमें बच्चे को कैसे समझाना चाहिए,
0: कैसे
1: टेक ओवर करना चाहिए उसको। और जो है हर चीज का सॉल्यूशन पनिशमेंट भी नहीं होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बेटर तो यही रहेगा कि उसको समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें, एजुकेशन से समझाएं। और थोड़ी बहुत डांट डपट भी बच्चों के लिए मैं मानता हूँ कि ठीक भी होती है, लेकिन बस इतनी बाउंड्रीज में होनी चाहिए कि उसके मन, उसके मस्तिष्क पे उसका ज्यादा
0: कोई भी हार्म ना हो चीज, ताकि उस चीज को, उस चीज से वो निकल ही ना सके, आगे बढ़ ही ना सके,
1: उसको सोच के बैठ जाए
0: कि हाँ उसको आगे कहीं आगे भी बढ़ रहा है तो सोचेगा नहीं ये मेरे साथ तो ये हो चुका है तो मैं शायद ये चीज को, इस कदम को नहीं उठाऊंगा, क्या पता वो सर सही भी हो।
1: डेफिनेटली वो मैंने बताया ना आपको कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही एक इस चीज को हम कह सकते हैं, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं मिलते हैं आप सभी से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? यू आर लिस्निंग टू एफ मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बिठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
1: हाँ हाँ,
0: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
1: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
0: जी,
1: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
0: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
0: जिसका
2: नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
0: चलिए बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
2: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
0: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
2: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
0: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
2: देखिए आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
0: करेक्ट करेक्ट।
2: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
2: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
0: बहुत जरूरी है।
2: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी पड़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
0: रोक सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
2: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है शायद, अगर मैं कहूँ तो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा दे के जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
2: ये टॉपिक इतना डीप में कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूं, तो नोबडी इज परफेक्ट।
0: आई थिंक
2: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
0: क्या बात है।
2: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
0: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीछे,
2: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
0: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो आगे बढ़ते हो तो वो और मजा आता है।
2: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके,
0: है ना,
2: तो उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
0: किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं में चल रही है,
2: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
1: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
2: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके,
2: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
0: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का जिक्र होता है?
2: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
0: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
2: PIL
0: का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
0: लिटिगेशन के बारे में बात।
2: देखिए, जो लिटिगेशन

0: होती हैं, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहां पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
1: ठीक है,
0: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
1: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
0: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकंसाइल कराने के लिए होती है कि दोनों पार्टीज जो हैं, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
1: करेक्ट,
0: उसको बैठ के
1: समझौता किया जाए, बेसिकली
0: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए।
1: मतलब दोनों पार्टी
0: क्योंकि के क्योंकि में... हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया है कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
1: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते, आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
2: जी। हाँ हाँ बिल्कुल।
1: यस, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
0: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
1: हाँ ठीक है,
0: सुनिए होगी ना,
1: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
0: तो PIL क्या होता है, एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
1: करेक्ट
0: है ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन यानी याचिका होती
1: है।
0: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए फाइल नहीं कर सकता,
1: ठीक है,
0: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को वो प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की ये वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
1: ओके,
0: ठीक है,
1: अच्छा,
0: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होते हैं, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए,
1: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो पब्लिक की हित की बात,
0: पब्लिक की बात होनी चाहिए, करेक्ट। अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
1: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
0: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या, सार्वजनिक समस्याओं की कोई,
1: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
0: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी आप
1: पब्लिक के लिए,
0: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी, सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
1: राइट,
0: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की, ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला
1: बेसिकली मॉडल पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल
0: रही बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके, सार्वजनिक,
1: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर पहला क्वेश्चन। इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बेसिकली
0: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही,
1: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
0: और हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है, तो उसको लेके ही हम
1: PIL उठाना,
0: उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं, इंडिविजुअल के तौर पर नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पर कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और एप्लीकेशन।
2: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
0: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में, सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह, पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
1: ठीक है,
0: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है, कोई सेल्फ है, तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते, उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशंस हैं और जो एप्लीकेशन है वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। सर अच्छा ये बताइए, पीआईएल और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
0: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं, ठीक है, वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीआईएल सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए, या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता पीआईएल नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
2: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
0: देखिए जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हो, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हो, तो उसके खिलाफ भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से रिलेटेड पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ पीआईएल की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
0: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो पीआईएल की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
1: करेक्ट, अरावली। हाँ,
0: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे, कि जितने भी भूमाफिया थे या लैंड माफिया थे वो खनन वहां पे कर रहे थे। बहुत उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था, उसके खिलाफ पीआईएल डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
1: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ। सर आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम पीआईएल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे होंगे ये है क्या, व्हाट इज दिस पीआरएल, इसके थोड़ा सा इसका एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
0: देखिए पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
1: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से। ध्यान रखना,
0: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि पीआईएल की फुल फॉर्म।
1: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है पब्लिक इंटरेस्ट
0: लिटिगेशन।
1: यार तो पब्लिक सीखने को मिली है,
0: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो,
1: जी सर,
0: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
1: ओके
0: ठीक है,
1: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं, और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए, हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आप गूगल नहीं करना
2: चाहिए, गूगल करके निकाल लेंगे तो मैं।
1: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। वेल आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट। हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
2: हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पीआईएल के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
0: यस बिल्कुल कराई जा सकती है, अगर जनहित याचिका पीएल के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो। हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
2: क्या बात
1: है। अच्छा, डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जरा।
0: देखिए, डिजिटल जब से युग आया है, डिजिटल ट्रेंड आया है, तो PIL का महत्व और ज्यादा की बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल, लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे हैं ना गूगल पे तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
1: एब्सोल्युटली 100%
0: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है, और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए। जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को, चैट भी कर रहे हैं, तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है। तो इसको लेके भी कई PIL जो है दाखिल करी थी, और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शंस दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भी जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए।
1: नहीं होना चाहिए,
0: तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
1: 100% राइट। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
0: देखिए, हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे, जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले। अच्छा, इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी, जैसे चुनाव पारदर्शिता से।
1: तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
0: भाई ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने, तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
1: करेक्ट करेक्ट, वही ना,
0: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
1: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
0: हाँ,
1: इस पे हम बात कर रहे हैं अभी,
0: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
1: रहती
0: है, ठीक है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है।
0: देखिए, हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके। लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको लेके जो है कई एक NGOs हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, NGOs हैं, एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी PIL या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसको लेके अगर PIL दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और PIL के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
1: ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, और ये जो आपका PIL का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ। एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट, तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में, एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे तो हमने आपको अभी बता दिया है, सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे। एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना। और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को FM मुरादाबाद 89.6 FM जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे।
0: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी FM मुरादाबाद 89.6 है, इसको सुनते रहिए, और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
1: भी अपने ऐड कीजिए,
0: अपने घर वालों को भी सुनाइए एफएम।
1: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला। और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है, जो आसपास
0: अच्छा,
1: के लोग हैं।
0: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा मैं,
1: जी सर,
0: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है।
1: हम अपने समुदाय की बात करते हैं
0: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं।
1: गॉट इट सर। और रेडियो बेसिकली है पब्लिक की आवाज और ये आम जनता की आवाज, इसीलिए हम आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
2: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे
1: लेकिन
2: में पता भी नहीं।
1: मैं आपको जेनरली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा आज का, तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग। मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
2: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्होंने
1: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था। तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप आए एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सी तू अपना सायुनारा करेगी या नहीं है ये बता भी।
2: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
1: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना।
2: नहीं वो हम घर पर भी बना सकते हैं,
1: वो मुझे नहीं पता। फिलहाल ये लीगल टॉक से यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, इट्स नॉट रेसिपी शो।
2: हम यही से जाने की इजाजत लेते हैं, श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रॉक मचाते रहिए
1: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए। और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो। तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, नमस्कार।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नार्कोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
1: क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया साहब।
0: आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है। आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
1: मैं क्या करूँ साहब?
0: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
1: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
0: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं। जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोता, और डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें। उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तार

जारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहे, जागरूक रहे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराए नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल की धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजिंग यानी ODOC योजना।
0: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
1: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
0: दोस्तों लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
1: सही कहा, पहले गाँव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
0: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
1: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
0: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
1: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
0: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
1: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
0: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
1: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
0: अब बात करते हैं इसके साथ ही यानी चोखे की।
1: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
0: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
1: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
0: और दोस्तों जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
1: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
0: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
1: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
0: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
1: और दोस्तों एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
0: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
1: यानी देसी स्वाद अब मॉडर्न स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
0: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी

0: दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आरजे आनंद को। प्रोग्राम का नाम है खेती किसानी। जी हाँ किसान भाइयों, राम राम आप सभी को। कैसे हालचाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं एक बार फिर से हमारे साथ एक और विशेषज्ञ मौजूद है। जी हाँ, आपने इनको पहले भी सुना है, डॉक्टर विनय कुमार जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है। एक बार फिर से हम चर्चा करने वाले हैं आप ही के काम के विषय पर। जी हाँ, मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में गन्ने की फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी पर बात करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर विनय जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
0: जी जी सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय एक बार फिर से निकाला और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए शुक्रिया सर।
1: जी धन्यवाद सर। जी
0: सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि गर्मियों में गन्ने की फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है क्या सर?
1: जी हाँ, देखिए गर्मियाँ क्या है कि सभी लोगों के लिए जल आवश्यक होता है। और फिर बेसिकली जब गर्मियाँ चल रही हो तब तो वो जो है जल मांग जो है कई गुना बढ़ जाती है, चाहे जीव हो, चाहे जीव में कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या हमारी फसलें हो, या हमारे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, कई गुना हमारा वो बढ़ जाता है। तो जैसे गन्ने की बात करें तो गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। हल्की भूमि में सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है।
0: जी ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जो ड्रिप सिंचाई का उपयोग भी लाभकारी हो सकता है क्या, और इससे पानी की बचत होती है क्या, और पौधों को पर्याप्त नमी भी मिलती है क्या?
1: जी देखिए, ड्रिप सिंचाई जिसको हम लोग बेसिकली बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, हमारे जैसे जहाँ पे जल की समस्या होती है, सिंचाई जल जहाँ पे कम होता है, और बाकी अगर अमूनता अगर देखा जाए तो हमें तो यही लगता है कि प्रत्येक किसान को ये चीजें धीरे धीरे एडॉप्ट करनी चाहिए।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि
0: हाँ जी,
1: एकदम
0: हाँ
1: से इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसमें पाइपलाइन पड़ती है, उसमें गन्ने की जो लाइन होती है उसी में ये पाइपलाइन डाल करके बूंद बूंद पानी डाला जाता है। इसमें अतिरिक्त जल जो होता है हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल हम पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको कोई जैसे फर्टिलाइजर देना है, जिसको उर्वरक कह सकते हैं, उर्वरक देना है, या कोई और हमको जो है पेस्टिसाइड या फंजीसाइड कुछ भी हमको देनी है, तो हम सिंचाई जल के साथ में उनको प्रेषित करके हम अपने फसल को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त जल भी हमारा बचता है और किसान की जो है कह सकते हैं कि उनको जो है अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार हमारी पाइपलाइन डल जाती है तो हमेशा वो यूज किया जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, तो गर्मी के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ता है और फसलों से पोषक तत्व और नमी भी छीन लेता है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिसे समय पर जो है निराई गुड़ाई आवश्यक होती है।
0: हाँ जी,
1: कोई भी फसल हो।
0: हाँ जी, हाँ
1: गन्ने की ही नहीं बल्कि कोई भी फसल हो, समय पर निराई गुड़ाई आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवार नाशी, जिसको हम लोग जो है वीडिसाइड भी कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए।
0: जी जी,
1: और प्रयास करना चाहिए कि अगर हाथों से इस काम को कर सकें, क्योंकि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए। और हमारे अगर हाथों से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो उस स्थिति में हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खेत को खरपतवार मुक्त बनाए रखना ये जरूरी होता है, क्योंकि इससे जितना ज्यादा खरपतवार होगा उतनी ही फसल हमारी गुणवत्ता कम होगी और उसमें पैदावार भी घट जाएगी।
0: ओके अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए अर्थिंग अप जिसको हम लोग मिट्टी चढ़ाना भी कहते हैं।
0: हाँ जी, हाँ
1: जब पौधे जो है हमारे बढ़वार की ओर अग्रसर होते हैं, इसमें कई सारी हमको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि हम अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब हमारा बरसात या वर्षा ऋतु आने से पहले अंतिम जुताई होने के बाद हम इसमें जो है अर्थिंग अप की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी जो होती है बीज की क्यारियों के दोनों लाइनों के बीच की जो खाली जगह होती है, वहां पे निराई गुड़ाई करके, और जो इसकी मिट्टी होती है वो भुरभुरी किस्म की करके उसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है टिलर्स जिनको हम लोग कहते हैं वो ज्यादा निकलते हैं, और मिट्टी चढ़ने से हमारा रूट एरिया मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल गिरती नहीं है, गिरने से बच जाती है। और यदि हमारी फसल गिर जाती है, ऐसा नहीं अगर हम करेंगे और हमारी फसल गिर जाती है तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप लगातार तमाम जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। इसी बीच मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में संतुलित उर्वरक देना बहुत आवश्यक है क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए संतुलित, जैसे हम लोग भी भोजन की थाली जो हम लोग लेते हैं तो उसमें भी हमको दाल चावल और रोटी सब्जी और सलाद अचार इत्यादि तरीके के हम लोग संतुलित चीजें खाएं। जितना ही संतुलित हम लोग रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ भी संतुलित रहेगी। इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है, जैसे गन्ने के लिए है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश इत्यादि का संतुलित उपयोग करें। मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं। जैसा ही परीक्षण रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उर्वरक देना ही हमको लाभकारी रहता है। जिंक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी होने पर उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है और बहुत ही अल्टीमेट सी वाइब आ रही है मुझे इनके साथ बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
3: जी मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे UG PG AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो एक फील आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
3: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
3: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कनेक्शन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं, नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली, और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
3: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है, जैसे पुराने जमाने
0: दाई जी बिल्कुल बिल्कुल
3: ठीक है, तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, देयर आर लॉट ऑफ चीज, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड। तो क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबॉडी सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल है, पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
3: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते
3: हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ, देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड,
0: वेरी बैड।
3: तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं, आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच, आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
3: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर,
0: ठीक है,
3: ठीक है। अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 to 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 to 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर, ठीक है। इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है, ठीक है। ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है। इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन HPV वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रहे हैं। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है। कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए,
0: करेक्ट करेक्ट,
3: गवर्नमेंट इज रनिंग
0: की एब्सोल्युटली।
3: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे, ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंट तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3,000 से 4,000 रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल।
3: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें दो तीन तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं। डोजिंग का भी है कि 9 to 15 ईयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे। और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर हैं तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन, ठीक है, और ये लगवानी चाहिए। इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाई ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें, प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
0: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है। आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
3: आई वुड से कि प्लीज लगवाइए, ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही, कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए,
0: absolutely.
3: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
0: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
3: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम, इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
0: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज HPV का वैक्सीन आप जरूर कराएं, ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
3: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है, आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना,
0: जिसके
3: पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी, मंदिर ऊपर हुआ करते थे तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं, दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना. सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे. द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू. आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो. ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर. ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की. ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल. तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन

0: अपन नहीं चेंज कर सकते.
1: थिंग
0: इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी. जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता.
1: राइट,
0: थिंग्स आर चेंजिंग. व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग, व्हाई कांट वी अपडेट ना.
1: करेक्ट. अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं.
0: एग्जैक्टली.
1: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं.
0: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज. आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज. ठीक है, अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया, यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज. तो ये सब बीमारियां हैं. अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है. बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
1: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं.
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार. आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ाई। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उद्योगों के लिए संशोधित कण पदार्थ PM उत्सर्जन मानकों को लागू करने की समय सीमा 1 अक्टूबर तक बढ़ाई। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आज 3 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज शुरू हो गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना से मिलने वाली राशि सभी महिलाओं का आत्मसम्मान और सुदृढ़ करेगी, आत्मविश्वास को नई शक्ति देगी और जीवन की अनेक छोटी बड़ी जरूरतों को भी पूरा करेगी।
3: ये पैसा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज करना है, इसलिए इसमें कुछ कंडीशन लगाई गई। ना तो ये पैसा उसे मिलेगा जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ना ही जिसके 3 से ज्यादा बच्चे हैं, ना ही ये पैसा ऐसी किसी वस्तु के लिए खर्च हो सकता है जैसे कि शराब, तंबाकू, लॉटरी इत्यादि। जैसा मैंने बताया है कि ये पैसा महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए यूज होना है, तो इसलिए जनता का पैसा है, बहुत सोच समझ के उन महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा जिसको सही मायने में इसकी जरूरत है, जिससे उनके जीवन में एक बेहतर सवेरा आ सके।
2: हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से 11 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को लाभ होगा।
4: दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की 11 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य कराएं। सभी पात्र महिलाएं dly.delhi.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकती हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा इस महीने की 16 तारीख तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे।
5: दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ये निर्णय स्मार्ट कार्ड आधारित प्रणाली में सुचारू रूप से बदलाव लाने और ये सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि किसी भी पात्र यात्री को असुविधा न हो। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों, डिपो प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और कंडक्टरों को जन जागरूकता अभियान तेज करने और महिला यात्रियों को संशोधित समय सीमा से पहले पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने में सहायता करने का निर्देश दिया। डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस महीने की 15 तारीख तक मौजूदा व्यवस्था के तहत किसी भी महिला यात्री को मुफ्त यात्रा से वंचित न किया जाए। दिल्ली सरकार ने बताया कि आज तक कुल 17,04,042 पिंक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं धर्मेंद्र मणि राजेश।
2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली NCR में चल रहे उद्योगों के लिए संशोधित कण पदार्थ यानी PM उत्सर्जन मानकों को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है। संशोधित कण पदार्थ उत्सर्जन मानक अब इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होंगे।
4: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि कार्यान्वयन समय सीमा में बढ़ोतरी से उद्योगों के लिए नियमों का असरदार और एक जैसा पालन करना आसान हो जाएगा और इससे औद्योगिक उत्सर्जन कम करने का मकसद भी प्रभावित नहीं होगा। आयोग ने कहा कि संशोधित PM उत्सर्जन मानक तकनीकी रूप से हासिल करने योग्य है और औद्योगिक उत्सर्जन कम करने तथा इलाके में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य सिर्फ उद्योगों को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने, रेट्रोफिटिंग और जांच पड़ताल का काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना है ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर कड़े PM उत्सर्जन मानकों का पूरी तरह पालन कर सकें। प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com www.lakshmi.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज NDCC कन्वेंशन सेंटर में मासिक सुविधा शिविर का आयोजन किया। सुविधा शिविर के दौरान कुल 80 जन शिकायतें प्राप्त हुई। इन्हें संबंधित विभागों द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर उनके समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। NDMC के अनुसार प्राप्त अधिकांश शिकायतें कार्मिक, सिविल इंजीनियरिंग, उद्यान, जन स्वास्थ्य, प्रवर्तन, वाणिज्यिक, कर और संपदा विभागों से संबंधित थी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सदर बाजार के कुतुब रोड के तेलीवाड़ा अखाड़ा क्षेत्र में जल भराव की समस्या का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इससे वर्षा के दौरान पानी की निकासी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री आशीष सूद ने आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान श्री सूद ने वर्तमान परियोजनाओं का जायजा लिया और बुनियादी ढांचे से जुड़ी मुख्य प्राथमिकताओं पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में आशीष सूद ने बताया कि बैठक में जनकपुरी के लोगों के लिए बेहतर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और बेहतर नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए समय पर काम पूरा करने, गुणवत्ता के मानकों और आपसी तालमेल के साथ किए जाने वाले प्रयासों पर बल दिया। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ORBO ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 38 अंग, ऊतक और शरीर दानदाताओं के परिवारों को सम्मानित किया। ORBO ने पिछले महीने की 14 तारीख से लेकर आज तक अंगदान जीवन संजीवनी अभियान विषय के अंतर्गत अंगदान पखवाड़ा आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य के प्रतिनिधि के तौर पर तैयार करना था। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने आज कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

0: दिल्ली के अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनर्वास विभाग ने एक गैर सरकारी संस्थान के सहयोग से आज रीढ़ की हड्डी की चोट से प्रभावित मरीजों के लिए व्हीलचेयर वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी की चोट से प्रभावित मरीजों को उपयुक्त गतिशीलता सहायक उपकरण यानी व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर उनकी गतिशीलता, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली गेट चौक पर ट्रैफिक की पाठशाला नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षित ड्राइविंग और नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने यातायात के नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को सम्मानित और पुरस्कृत भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में यातायात पुलिस उपायुक्त निशांत गुप्ता ने कहा कि यातायात पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: ट्रैफिक पाठशाला के थ्रू हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों के बारे में। जो लोग ट्रैफिक का वॉयलेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेड लाइट जंपिंग हो, चाहे स्टॉप लाइन का वॉयलेशन हो, रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो, हम उनको बताना चाहते हैं कि सिर्फ चालान काटना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रैफिक पुलिस इन लोगों को एजुकेट करने में भी अपना पूरा सहायता दे रही है। ऐसे वॉयलेटर्स को हम लोग रोकते हैं और उनको ट्रैफिक पाठशाला के माध्यम से बताते हैं कि उनकी की हुई गलती से उनको और उनके परिवार को किस तरह की नुकसान भरना पड़ सकता है। जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं उनको छोटे छोटे उपहार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिए जाते हैं ताकि लोग मोटिवेट हों।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जनभागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा।
2: नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देश भर में जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की है। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए हो गई है। कोलकाता में 2872.50, मुंबई में 2691.50 और चेन्नई में 2906 इसकी कीमत हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम द्वारा चल रहे अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट निपटान किया जा चुका है। श्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली के नरेला पॉकेट 11 में कर्मजीवी आवास योजना के अंतर्गत बन रहे फ्लैट्स का निरीक्षण भी किया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉर्टपुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुआल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये रजत पदक नीरज चोपड़ा की शानदार

सफर का एक और चमकदार अध्याय है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। मेजबान देश के 8 खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में क्लीन स्वीप करते हुए सेमीफाइनल में चारों स्थान पर कब्जा किया। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सैली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ाई। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उद्योगों के लिए संशोधित कण पदार्थ पीएम उत्सर्जन मानकों को लागू करने की समय सीमा 1 अक्टूबर तक बढ़ाई। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आज 3 और स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और कैसा ये इश्क है, गजब का रिस्क है। तो रिस्क तो बनता है साहब, अगर इश्क नहीं होगा तो रिस्क कैसे होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ एक प्यारा सा आरजे जुड़ने वाला है, तो बताया तो है आप लोगों ने, मगर अभी भी जवाब वो नहीं आ रहे जो आने चाहिए थे। तो सुनते हैं उसकी आवाज और हमें करो आप फटाफट मैसेज कि हाँ भाई यही है वो आरजे जो मैंने किया था गैस। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये वही है जो सुबह सुबह आती है और खूब सारी खुशियों की ढेर सारी बातें करती है। वन एंड ओनली आरजे खुशी। और खुशी क्या हालचाल है?
1: मैं बहुत ही अच्छी हूँ। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप?
0: वो तो तुम्हारी आवाज से ही पता चल रहा है, जैसे आई हो ना एकदम वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे शो का। ऐसे कैसे होता है?
1: ये हमारे श्रोताओं का प्यार है एंड आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं चीजें।
0: तो खुशी से तुम्हें पता है कि ये दिल से दिल तक अखिल संघ है, तो इतनी सारी बातें हम करते हैं, अपने दिल से निकली हुई बातें एक दूसरे के दिलों तक पहुंचाते हैं और शायरी के थ्रू ही पहुंचा पाते हैं, क्योंकि शायरी में वो दम होता है जो सभी के गम भुला देता है। तो क्यों ना तुम एक शायरी सुनाओ आज।
1: अखिल जी, अब आपने इतनी प्यारी रिक्वेस्ट मुझसे की है तो मैं कैसे ना कुछ सुनाऊं। अपने आप को मैं रोक ही नहीं पा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको भी और अखिल जी को भी सुनाती हूँ मैं एक प्यारी सी खूबसूरत सी शायरी। मैंने कहा वो अजनबी है, मैंने कहा वो अजनबी है, दिल ने कहा ये दिल लगी है, मैंने कहा वो सपना है, दिल ने कहा फिर भी वो अपना है, मैंने कहा वो दो पल की मुलाकात है, दिल ने कहा ये सदियों का साथ है, मैंने कहा वो मेरी भूल है, दिल ने कहा फिर भी कबूल है, मैंने कहा वो मेरी हार है, दिल ने कहा यही तो प्यार है।
0: तो आज आपके दिल ने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, क्या खूब शायरी लिखी है आपने खुशी जी।
1: अखिल जी, ये शायरी मैंने नहीं लिखी है, लेकिन हाँ इसमें रेडियो के प्रति प्यार छुपा हुआ है। बचपन से हम रेडियो को सुनते आ रहे हैं और आज उसी स्टेशन पर हम बैठे हैं जो बचपन में हमारी जर्नी रही है, जो हमने सुना है, आज फाइनली वो हमारे सामने है, तो इस प्यार को हम दिल से अलग नहीं कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, दिल होता ही ऐसा है कि दिल है कि मानता ही नहीं, ये तो आपने

0: सुना ही होगा। और जब दोस्त होते हैं ना, उस दिल के साथ जो जुड़े होते हैं, तो कहते हैं जिंदगी में पैसा, सक्सेस और नाम, चलो ठीक है ये जरूरी तो है, थोड़ा सा जरूरी है, मगर लेकिन एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो सारी जो चीजें हैं ना ये आसपास हमारे, ये सब आसान लगने लगती है। क्यों, ठीक कहा ना?
1: हाँ जी अखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। दोस्ती का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। कहते हैं ना कि दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, ये दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, मिल जाए तो बातें लंबी, बिछड़ जाए तो यादें लंबी।
0: क्या बात कही है, बिल्कुल दिल से दिल तक छूने वाली बात कह दी आज।
1: तो अखिल जी अभी लेते हैं कुछ म्यूजिकल ब्रेक, उसकी बात करेंगे हम फिर से गुफ्तगु, फिर से शायरियाँ। एंड दोस्तों आई होप आप कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे मालूम है कुछ तो छत पर बैठकर आराम से तारों को निहार रहे हैं, तो कुछ बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ ऑन द वे कार में हैं, एंड कुछ हमारी फीमेल्स जो इस समय किचन में कुछ ना कुछ बनाने में लगी हुई हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है आज कुछ अच्छा पक रहा है किचन में।
0: अच्छा एक बात बताओ खुशी,
1: हाँ?
0: अगर ड्राइविंग सीट पे हस्बैंड हो
1: जी
0: और बगल वाली सीट पे वाइफ हो, तो वाइफ क्या सोच रही होती है कि ये आज राइट ले लेंगे या लेफ्ट ले लेंगे? ये आप भी सोचिए और बताइए कि अगर आपके बगल में आपके हस्बैंड बैठे हैं और आपका मन है कहीं लेफ्ट में जाने का, तो क्या वो लेफ्ट लेंगे या नहीं लेंगे, या क्या वो राइट में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो जरूर हमें बताइए, मैसेज करिए 9837896896 पर।
1: मुझे ऐसा लगता है अखिल जी कि जो मिसेज मन में अपने विचार कर रही हैं, जो बातें वो सोच रही हैं कि मुझे लेफ्ट जाने का मन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सफर दिल की बातें जान ही लेते हैं, तो वो जो मैडम जी कहेंगी वही वो जनाब मानेंगी।
0: हॉर्न भी वही बजेगा।
1: हाँ, तो चलो दोस्तों गुफ्तगू तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ प्यारे गाने सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और हाँ, मेरे साथ हैं आरजे खुशी, जो आज खुशी खुशी में इतनी रात में भी भाई साहब खुशी खुशी में अपने दिल की शायरियां बता रही हैं। आप लोग नहीं कर पा रहे हैं मैसेज, मगर वो एकदम बता देती है कि आज तो मैं ये सुनूंगी। तो क्या सुनाने वाली हो?
1: मैं तो अभी फिलहाल आपको सुनने वाली हूँ। और आपने बड़ी प्यारी शायरियां कर रहे थे, माइक के पीछे पीछे अब ऑनियर भी आ जाइए और अपने श्रोताओं को भी सुनाइए।
0: जो दोस्त आंसुओं को पहचान ले, वही असली हमसफर होता है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: बाकी तो मुस्कुराहट देखकर सब अपने बन जाते हैं।
1: हाँ, ये बात तो आपकी 100% श्योर है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का दिल से दिल तक अखिल के संग।
0: मेरे लगता है शो की तुम भी फैन होती जा रही हो।
1: बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। आपका शो मैं एवरी इवनिंग सुनती हूँ 9 से 10। और अखिल जी, हमने शायरियाँ तो बहुत सारी कर ली हैं, बहुत सारी हमने दोस्तों के ऊपर भी शायरियाँ कर ली हैं, लेकिन अब कुछ फन हो जाए, कुछ फन एक्टिविटीज करते हैं। आज मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ कुछ गेम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। मैं एक शब्द बोलूंगी, आपको बताना है जो आपके मन में है। तो फर्स्ट मेरा वर्ड है टी।
0: टी चाय दोस्त के साथ।
1: मैगी
0: बीवी के साथ।
1: ट्रिप
0: दोस्त के साथ।
1: लोन
0: दोस्त से मत लेना।
1: अरे वाह, सुपर, क्या बात है खिलजी, आपने तो कमाल कर दिया है, धोती फाड़ के झुमाल कर दिया है। पंच लाइन बोलते हैं आरजे आनंद जी
0: ये तो हर, और ये पंच लाइन जो बोलते हैं ना आनंद जी, तो एक अलग ही मजा आ जाता है उस समय।
1: हाँ
0: भाई साहब, मैं तो उनसे जब भी आनंद जी से मिलता हूँ ना स्टूडियो में,
1: हाँ,
0: मैं कहता हूँ भाई साहब मैं अपना रुमाल लेके साथ में घूम रहा हूँ, वो कोई धोती वाला नहीं है।
1: हाँ, तो अखिल जी आपको मिलते हैं 100 में से 100 नंबर।
0: क्या बात है,
1: आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। तो अभी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, एक प्यारा सा गाना है जो मैं स्पेशली आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: मोस्ट वेलकम।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और हमारे पास खुशी आज बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, और सबसे पहला मैसेज जो हम पे आया है वो आया है प्रियंका जी का। प्रियंका जी कहती हैं MDA से कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी सिस्टर से भी ज्यादा क्लोज है। तो बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका जी, ये तो दोस्ती की खूबसूरती है कि रिश्ता खून का नहीं दिल का होता है। तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं तो दिल से जुड़ाव है आपका, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कहूंगा खुशी ऐसी दोस्ती हो जाती है।
1: बिल्कुल, ऐसी दोस्ती हर किसी की होनी चाहिए। सच्चा दोस्त आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है, और जिनके पास सच्चे दोस्त हैं मैं उनसे कहूंगी कि उनका विश्वास वो दोस्ती हमेशा संभाल कर रखें।
0: अभी एक मैसेज किया है हमारे पास अरुण जी ने, चलिए मैसेज पढ़ते हैं। एक दोस्त दूसरे से, भाई तू उदास क्यों है? तो दोस्त कहता भाई गर्लफ्रेंड नाराज है। कहते पक्का? बोले हाँ, कल से ऑनलाइन है, रिप्लाई नहीं कर रही है।
1: बहुत बढ़िया
0: भाई, पता चल जाता है अगर गर्लफ्रेंड नाराज है ना आपकी, तो आजकल तो बहुत इजीली पता चल जाता है कि वो ऑनलाइन होके भी देखो तुम्हें जवाब नहीं दे रही है।
1: अच्छा, ये नाराजगी जताने का
0: साइन हो जाता है साहब। अगर आपका कोई साथी रूठा हुआ हो तो फटाफट जोमेटो करके उसे मना लो, या कुछ भी ऐसा आइटम आप ऑनलाइन मंगवा लो, इतनी देर में उसे पता भी नहीं चलता, एक सरप्राइज का सरप्राइज हो गया और आपका
1: जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी।
0: हाँ, हमारे पास अनमोल जी शायरी लिखते हैं, कहते हैं दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं होता, कभी पीछे रहकर भी अपने दोस्त को गिरने से बचाना भी होता है। तो अनमोल जी बहुत बढ़िया लिखा है आपने।
1: अनमोल जी ने बहुत अनमोल बातें की हैं।
0: और अनमोल जी हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा जुड़ा होगा जो आपको हमेशा गिरने से बचा रहा होगा। हमारे पास आनंद जी, क्या बात है, एक आनंद जी तो हमारे अपने, और एक आनंद जी का हम पे मैसेज आया है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ये शो डेडिकेट करना चाहता हूँ। थैंक यू आनंद जी, आप अपने एक दोस्त को हमारा भी शो डेडिकेट करना चाहते हैं तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात, क्यों ना खुशी।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आनंद जी का नाम सुनते ही ना चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ गई है। मॉर्निंग वाले आरजे आनंद की याद आ गई है ना आपको भी। हाँ, मैं जानती हूँ आप पूरा दिन उनके साथ रहते हैं, बहुत खुराफाती करते हैं आप दोनों।
0: हम करते हैं खुराफाती क्योंकि हमारी दोस्ती है एक कहते हैं ना खुराफाती वाली दोस्ती, हम दोनों ही खुराफात दोस्त हैं
1: क्योंकि दोनों का नाम ए से ही स्टार्ट होता है, दोनों की राशि एक है।
0: अच्छा, अब ये तो तुम निकाल दो, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ना लड़कियों को तो भाई साहब निकालना होता है कोई ना कोई लॉजिक। तो इनकी दोस्ती के लिए हम भी एक गाना डेडिकेट करते हैं खुशी।
1: बिल्कुल, चलिए एक प्यारा सा गाना सुनते हैं अभी एंड उसके बाद लौट कर आते हैं। तो दोस्तों हम लौट कर आते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: जो दोस्त मेरे बहुत करीब हैं वो तो बिल्कुल ही करीब हैं, उनको तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मगर हाँ दोस्त ऐसा भी नहीं कि, मगर हाँ दोस्त मेरे बहुत हैं और जो लिसनर सुन रहा है ना वो भी आज से मेरे दोस्त हैं।
1: बिल्कुल, ये तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तभी तो देखिए वो कितना ध्यान से आपको सुन रहे हैं और एवरी डे वो आपको इतना सारा प्यार देते हैं। अखिल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक ऐसा दोस्त जो आपका बहुत ज्यादा खुराफात हो, जो बहुत ज्यादा शरारती करता हो, कभी आप सैड हो लेकिन आप उनके पास जब भी जाते हैं तो वो आपके सैड मूड को भी हैपनिंग मूड बना देते हैं।
0: हाँ होता है, एक है मेरा एक ऐसा दोस्त, अगर कभी भी किसी भी कोई ऐसा मूड अपसेट हो उसे मैं कॉल कर दूं तो वो पहले ही छूट के साथ कहता है अबे ड्रामेबाज कहाँ है क्या कर रहा है।
1: तो जो भी इंसान हंसना ना चाहे वो भी हंस देगा।
0: हाँ तो वो उसका तरीका ऐसी है, उसे पता है कि इसने कोई बात हुई होगी तभी इसने मुझे इतना एकदम कॉल करी ऐसे, मगर वो भाई साहब जैसी वो लाइनें सुनता हूँ ना उसकी तो मुझे लगता है यार अब क्या इससे क्या बात छुपाऊं और क्या बात कहूँ। तो वो कहीं ना कहीं नेटवर्क होता है, अगर गाड़ी में ही बैठे हैं और अपने दोस्त लोग तीन चार दोस्त हम सब बातें कर रहे हैं आपस में तो कहीं ना कहीं तो यार कनेक्टिविटी होती है ना साहब। तो चलिए,
1: जो सामने हमारी लिसनर जो अभी सुन रहे हैं, जो ऑन द वे कार में है, चार पांच दोस्त जो मिलकर बैठे हैं बड़ी गौर से आपको सुन रहे हैं, कह रहे हैं हाँ मेरे बगल में भी ऐसा मेरा दोस्त बैठा है।
0: और ऐसा होता है,
1: बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो दोस्तों अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आप भी बहुत हंसे होंगे, कुछ अपने यादों में खो गए होंगे तो कुछ अपने दोस्तों को मिस कर रहे होंगे।
0: बिल्कुल सही, और हाँ उन सभी से माफी जिनकी आज हम फरमाइश प्ले नहीं कर पाए हैं, मगर कल फिर मिलेंगे दिल से दिल तक अखिल के संग, और हाँ सबसे पहले बजेगी आपकी फरमाइश।
1: हाँ जी दोस्तों, तो अभी चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट,
0: शुभ बखैर,
1: शुभ रात्रि।
0: नहीं, खुशी जाने से पहले ऐसे नहीं जाने देंगे, एक गाना तो हम डेडिकेट करते हैं आज अपने सभी लिसनर्स को।
1: क्या बात है, अमेजिंग, सुपर, आपने तो ये बात बोलकर हमारे श्रोताओं का दिल जीत लिया अखिल जी। चलिए बाय बाय।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास

0: विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019,00,000 रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक

0: ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट समाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
3: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊंगा। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
2: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष

0: ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: लोग मुझसे कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा, जाहिर सी बात है अच्छे लोगों से मिलोगे तो अच्छा ही लगेगा ना। हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे, आनंद के साथ जुड़ चुके हैं एक और खूबसूरत से माहौल में, और ये माहौल आज का और भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, और भी ज्यादा शायराना वाला जो ये माहौल है अब होने वाला है। और आज की जो ये अमेजिंग सी वाइब है, इसमें हम सिर्फ शायरी नहीं, बहुत सारी चीजें आज आपके लिए लेकर आए हैं। और एक बहुत ही कमाल के शख्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अब उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, गीत संगीत का सिलसिला भी चलेगा और प्रोग्राम जो है ये और भी खूबसूरत हो ही जाता है जब ये जनाब हमारे बीच में आते हैं। मैं किन की बात कर रहा हूँ, जरूर मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको इनकी बात या मेरी बात कुछ भी पसंद आए तो आप इस बीच हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। सर, FM मुरादाबाद के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: धन्यवाद आनंद, मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। कि जैसा कि यह माहौल भी है, मौसम भी है,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: तो इसमें आपने मुझे याद किया, आपने मुझे अपना समय दिया, श्रोताओं के लिए मैं उनसे रूबरू होने का मेरा सौभाग्य मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है, और आपने अपना नाम तो बता ही दिया होगा
2: नाम तो कोई नया नहीं है,
0: लेकिन हमारे लिस्टनर को, हमारे जो लिस्टनर है ना, वो हर बार नए नए होते हैं
2: जी, तो मेरा
0: पता तो होना चाहिए।
2: जी जी, मैं बता दूं, खाकसार को मनोज वर्मा मनु कहते हैं, आपके ही शहर से ताल्लुक रखते हैं, और जैसा कि पहले भी ये बात हो चुकी है, शायरी में और कविता में दोनों में ही कुछ कहने की, कुछ सीखते रहना प्रयास रहता है।
0: बहुत बढ़िया, और मुझे लगता है हर शायर के अंदर, हर कलाकार के अंदर ये खूबसूरत प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए, है ना?
2: जी,
0: आप जिस फील्ड में है, यहाँ पर हर दिन एक नई चीज, हर घंटे एक नई चीज जन्म लेती है।
2: नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये सृजन की बात है।
0: हाँ।
2: जैसे प्रकृति, जैसे नेचर अपने आप को क्षण क्षण चेंज करती है, वैसे ही जैसे जैसे प्लॉट मिलते हैं, वैसे वैसे एक कलाकार या एक लेखक या एक शायर या एक गीतकार वहां से उसे उस ऊपर वाले की नियामत से, जो माँ सरस्वती का वरद हस्त उसे प्राप्त होता है, उसके अनुकंपा जो उसे प्राप्त होती है, तो उससे वो बनाता है।
0: क्या बात है, इतनी शुद्ध हिंदी, ये अगर बोलेंगे तो आज मैं अच्छा अनाउंसर बन ही जाऊंगा, मतलब इतनी अच्छी हिंदी तो मैंने पढ़ी नहीं, जितनी आज मैं सीख रहा हूँ।
2: ऑलरेडी बहुत अच्छे अनाउंसर
0: है। आपसे बात करके मुझे एक चीज लगती है साहब कि, मतलब ऐसे लगता है मैं किसी प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ साक्षात, कोई मेरे साथ मेरा रेडियो साथी बैठा है, क्योंकि आप इतने अच्छे से शब्दों का उच्चारण करते हैं, इतनी बढ़िया वॉइस क्वालिटी है, तो वो थोड़ा सा एक फील हो जाता है मुझे। तो चलिए आज आपको बताइए,
2: आनंद जी आपकी ये जर्रा नवाजी है,
0: ये तो सर
2: हम इस काबिल कहां
0: सर, ये तो आपका प्यार है,
2: लेकिन ये है कि चूंकि मामला चाहे आपका है या हमारा है,
0: जी जी,
2: उसमें शब्दों से जुड़ा है,
0: बिल्कुल,
2: तो अधिकतर ये कोशिश रहती है कि प्रोनाउंसिएशन उसका सही हो सके, जहां हम अपने उस शब्द को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो उस एनवायरमेंट में बैठने लायक हो, उस बात को अपनी अदा करने लायक हो, तो बस यही हमारी सफलता होती है।
0: यही चीजें सीखने सिखाने में बहुत आनंद आता है आनंद को, और जब ऐसे अच्छे लोग आते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है। तो लिसनर, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे। एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुन के वापस आएंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए,

0: तो वेलकम बैक एक बार फिर से मनु जी, मैं आपकी तरफ सबसे पहले तो आपका स्वागत करूंगा और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब भी आप स्टूडियो में आते हैं तो आपको यहाँ का वातावरण कैसे लगता है? बाहर निकलने के बाद एक अलग माहौल होता है, स्टूडियो में आने के बाद, माइक के पास करीब आने के बाद आपको कैसा लगता है?
1: जाहिर सी बात है कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी एग्जाम हॉल में कोई विद्यार्थी परीक्षाएं देने जाता है।
0: अरे वाह क्या बात है, लेकिन आपके दिल के करीब है ना, क्योंकि इन सब चीजों से तो आपका जुड़ाव पहले से ही रहा होगा, आई एम श्योर।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल क्या है कि यही तो हमारी जान भी होती है।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: ये जो माइक है, ये जो श्रोताएं हैं, तो इसके बिना तो कोई रचनाकार कुछ नहीं है, कोई कलाकार कुछ नहीं है।
0: क्या बात है,
1: उसकी जो जान बसती है वो उसके श्रोताओं में बसती है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो डर भी कि हम अपने श्रोताओं को अच्छे से अच्छा दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें, बस यही चीज है।
0: कई मर्तबा हमने इनसे बात करने का प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया कनेक्शन। फाइनली जैसे तैसे बातचीत करके आज हमने इनको बुला ही लिया। उपस्थिति तो कल ही थी लेकिन किसी कारणवश कल हो नहीं पाए, कल ये बारिश में कहीं भीग गए, क्योंकि आजकल मौसम भी सुहाना हो रहा है। मुरादाबाद की बारिश ऐसी है पता ही नहीं चलता है कब आ जाती है साहब।
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: सुबह में धूप है तो शाम में बारिश है।
1: आजकल मौसम इसीलिए इसी तरह से मेहरबान है।
0: आज आपको बुलाया, आप समझ रहे ना मेरा इशारा, आज हम अपने श्रोताओं को कुछ नया देने वाले हैं। मौत ना खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है और मतलब बारिश की जो बूंदे है वो कहीं ना कहीं एक शायर के मन के हिसाब से देखा जाए तो कैसी होनी चाहिए, क्या कहता है एक शायर इस मौसम में, क्योंकि हर एक मौसम का अपना एक लहजा होता है सर, है ना, अपना एक मजा होता है हर एक मौसम का।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: देखते हैं मनु जी क्या इस पे आपको बताने वाले हैं आज।
1: नहीं बात सही है आपकी, देखिए बारिश का जो मौसम है ये अपने आप में क्या क्या समेटे हुए है, अब मैं क्या बताऊं। दरअसल क्या होता है कि बारिश के इस मौसम में जिसके साथ जो बीती होती है वो वही अनुभव करता है।
0: बिल्कुल सही बात,
1: अगर बात नायक और नायिका से कही जाए तो जिनको अपने साथी की कुर्बत, जिनको सानिध्य हासिल होता है, वो उसी तरह से यहाँ पर प्रफुल्लित होते हैं, और जो जुदाई में होते हैं वो वैसे ही बेचैन हो जाते हैं। और अगर हम सोचें कि इसका जो वास्तविक मतलब है, तो एक किसान आंख उठा के ऊपर देखता है कि कब ऊपर से बारिश बरसेगी और कब मेरी धरती सोना उगलेगी। तो ये मौसम हर किसी के लिए अपने अलग अलग मानी रखता है, हम शायरों के लिए भी, हम रचनाकारों के लिए भी ये उसी तरह से है।
0: क्या बात है, और उन्हीं में से एक रचनाकार मनु जी हैं, इनके जो शब्द हैं वैसे सर करके बाहर निकल रहे हैं मोतियों की माला की तरह, एकदम एकदम सही फ्लो में और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यही खूबसूरती होनी भी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, गाने का हो, सुनाने का हो, चाहे बोलने का हो, क्योंकि हर किसी में हर एक कला नहीं होती सर, राइट?
1: बिल्कुल,
0: हर किसी की कला बहुत अलग है, हम किसी को जज भी नहीं कर सकते हैं। हर किसी के बोलने का तरीका अलग है, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप पूरी एक पूरी डायरी लेकर आए हैं और बड़ी खूबसूरत लाइनों में आपने कुछ लिखे हुआ है, तो ये आप खुदते हैं?
1: हाँ,
0: राइटिंग तो बड़ी प्यारी है सर आपकी, सर्दी में डायरी देख रहा हूँ, बड़ी सुंदर सी क्यूट सी लिख के लेकर आए हैं और काफी पुरानी भी लग रही है मुझे।
1: माँ सरस्वती की कृपा है जो शब्द उतरते हैं,
0: ये कितने साल पुरानी डायरी है, जरा ये बताएं आप लिसनर को।
1: ये सिलसिला तो चलता रहता है असल से।
0: क्या, अरे क्या बात है दोस्तों, आपको हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन करा सकते हैं। आप महसूस कर पा रहे होंगे हमारी इन बातों से कि हम अभी डायरी खोल रहे हैं और डायरी में जो लिखावट है वो शायद आप महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि एक शायर की कलम से जब बातें निकलती है ना तो वो सिर्फ बातें नहीं होती है, उसमें जज्बात होते हैं, राइट? उसमें इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होती है।
1: बेशक, अगर ये इमोशंस ना होते तो शायद शायर ना होते।
0: क्या बात, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं। और अभी तो सिर्फ हमारी बातें हुई, अब सिलसिला शुरू होगा, तो सिलसिले से पहले एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे और कुछ मनु जी से बेहतर सुनेंगे। आज मौसम इतना अच्छा है, मौका इतना बढ़िया है, सब कुछ तो हमारे आसपास है, तो इसको और ज्यादा इंजॉय करेंगे। आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही जुड़े रहिए, सुन रहिए FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो, आपका अपना फेवरेट देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद। और हमारे साथ मनु जी स्टूडियो में उपस्थित हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं। शायद मैं इनका नाम थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि शॉर्ट नाम मुझे भी अच्छा लगता है। सर का भी शायद ये प्यारा सा शॉर्ट वाला नेम है, इसको हम ले सकते हैं ना?
1: इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ये मेरा उपनाम है, ले सकते हैं आपका। इसी से मेरे रचनाकार क्या पता चलता है।
0: तो बहुत सारे ऐसे आपके श्रोता और साथी हैं जो आपकी आवाज सुनकर आपका चेहरा इमेजिन कर रहे होंगे, अच्छा ये वही मनु जी हैं जो हमेशा मुस्कान लिए घूमते रहते हैं, जब भी इन्हें मिलो मुस्कुराते हुए मिलते हैं,
1: आप कह सकते हैं।
0: तो अभी जो है हम चाहेंगे सर, अभी आप मुझे ऑफियर कोई गीत सुना रहे थे, उसकी दो लाइनें अगर हमारे श्रोताओं के लिए हो जाए। मौसम इतना अच्छा है, मॉनसून भी कहीं ना कहीं दस्तक दे ही चुका है अब।
1: बिल्कुल, बल्कि अपने शबाब पर है इस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: आपने गीत की बात रखी है तो मौसम से ही मुतालिक मैं एक गीत रखता हूं आपके सामने।
0: जरूर, जरूर।
1: और बल्कि उसे अपने श्रोताओं के लिए गुनगुनाने की भी कोशिश करता हूं। ये एक देखना है कि मैं कहां तक सफल हो सकता हूं।
0: अरे वाह।
1: मौसम में बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुशनसीब हूं कि उसके करीब हूं, मैं कितना खुश नसीब हूँ। मौसम में बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ। अब गीत अपने अंतरों में चलता है।
0: जी।
1: मैंने जिसे प्यार किया, प्यार का इजहार किया, उसने भी प्यार से मेरे प्यार का इकरार किया।
0: वाह।
1: मैंने जिसे प्यार किया, प्यार का इजहार किया, उसने भी प्यार से इस प्यार का इकरार किया। आज मैं उसके दिल के कितना करीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि उसके करीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ।
0: क्या बात है, ये चंग पंक्तियां थी लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत थी, मैं कितना खुश नसीब हूँ। वाह, और हम भी बड़े खुश नसीब हैं कि आपके साथ बैठे हैं साहब, बहुत ही खूबसूरत।
1: अनवरत सिलसिला चलता रहेगा।
0: बहुत बढ़िया। तो ये आपको कैसे दिमाग में आया कि मुझे ये लिखना चाहिए, कलमों से उतारना चाहिए? ये रात में आया या दिन में आया या किसी को देखकर आया, पहले तो आप ये बताइए।
1: जाहिर सी बात है कि
0: भाभी जी रेडियो सुन तो रही होंगी ना पक्का? मेरे क्या जरा सोच समझ के पूछ लेते हैं भाई, कैसे ना और रॉन्ग दिशा में सवाल चला जाए, तो इसलिए पूछना जरूरी है। लेकिन
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या बात है कि देखिए, एक रचनाकार किसी का नहीं होता,
0: ये तो बिल्कुल सही,
1: वो सबका होता,
0: सब
1: है,
0: सबका होता है, बिल्कुल
1: ठीक है ना। और ये जो पंक्तियां मेरी है,
0: हाँ जी,
1: जो ऊपर वाले के कर्म से जो उतरी, जो ये एहसास जो जहन में थे वो जब कागज पर उतरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे जो भी सुन रहा है वो इसे अपने ही परिवेश में अपने ही तरीके से इसका आस्वादन करे, इसको महसूस करे, इसे फील करे, तब उसका एक मजा अलग होता है और वो गीत सार्थक होता है। जाहिर सी बात है, मौसम है, बरसात है, बरसात का जो मौसम है तो इसमें नायक और नायिकाओं की जो स्थिति होती है उसके दो ही पहलू होते हैं, या तो संयोग या वियोग, या तो मिलन या जुदाई। तो सबका अपना अपना मजा भी है और ये गीत भी उन्हीं कड़ियों को लेकर के चलता है। आप ये समझिए कि बस ये आगे चलता रहेगा और चीजें खुलती रहेगी।
0: वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन सर एक चीज तो आपने बड़ी अच्छी बोली इस पूरे में, जो मुझे भी मैंने नोट करी कि जैसे आपने बताया ना कि जो एक रचनाकार होता है वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है।
1: बिल्कुल,
0: वैसे
1: बिल्कुल
0: ही कोई अनाउंसर है, उद्घोषक है, कोई एक्टर है, वो किसी एक का नहीं होता, वो सबके लिए होता है। क्योंकि वो कोई भी बात अगर बोल रहा है तो वो किसी एक के लिए नहीं बोल रहा, वो सबके लिए बोल रहा है। कोई रचनाकार अगर कोई रचना लिख रहा है तो उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो हर एक सुनने वालों को लगेगा कि वो मेरे लिए है, है ना?
1: बिल्कुल,
0: वो फील और वो मैजिक आपकी उस शब्दों में होना चाहिए, उस रचना में होना चाहिए कि जो उसे पढ़े सुने उसको ऐसा महसूस हो कि तो मेरे लिए लिखा है मनु जी ने, तभी वो सक्सेसफुल भी हो,
1: तभी उसके सार्थकता है। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि ये हर कला के क्षेत्र में ऐसा है।
0: जी जी।
1: क्योंकि जब ऊपर वाला किसी बंदे को किसी कला से किसी हुनर से नवाजता है,
0: जी जी,
1: तो जाहिर सी बात है कि वो फिर अपना अपने लिए नहीं रह जाता।
0: ये बिल्कुल सही बात है,
1: है ना, जैसे कि साहित्य की बात है, आप मुझे याद आता है मेरा नाम जोकर आपने पिक्चर देखी होगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारी,
1: उसमें जो आदरणीय राज साहब ने, राज कपूर साहब ने जो अभिनय किया था, उस अभिनय में एक आपने देखा होगा कि उनकी अपनी माँ उस समय उस दुनिया में नहीं रही है और उन्हें अगला शो करना है जो पब्लिक के लिए करना है, तो उन्होंने उस अपनी उन भावनाओं को भी दरकिनार करते हुए जो उनके श्रोता थे, जो उनके दर्शक थे, उसके लिए अपना समर्पित हो करके पूरा अपना प्रोग्राम दिया,
0: प्रोग्राम दिया। ये तो खैर मैं यहाँ पे तो इस चीज को तो मैं भी अग्री करता हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में भी चल रही होती हैं लेकिन हम सब वो गेट के बाहर ही छोड़ के अंदर आते हैं, ये बिल्कुल सच है। अभी भी मेरी लाइफ में मैं, हर इंसान अगर जीवन में आया है तो उसकी जिंदगी में परेशानियां आना स्व जेन्युइन है, बहुत नेचुरल सी बात है, इंसान है हम यार, यही तो है नहीं, है ना, हम कंप्यूटर तो है नहीं, जो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी सबकी जिंदगी में आती है, लेकिन जब हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है, जब हमारे सर पे एक ठेकरा होता है कि भाई उसे अब हमें निभाना है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं।
1: नहीं सर आप कह रहे हैं सही बात है, लेकिन बात यह है कि जो AI का आपने देखा होगा आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है तो वो भी इंसानों की तरह सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, वो फील कर रहा है कि वो अपनी बात को उन भावों के साथ रख सके जो उसका ओनर है,
0: लेकिन फिर भी सर इंसान तो इंसान ही होता है,
1: इंसान तो इंसान है,
0: जिसको ऊपर वाले ने बनाया है वो इंसान है, और जिस इंसान ने AI बनाया है भले वो इंसान का रूप ले ले लेकिन बनाया तो उसे भी इंसान ही है।
1: जी जी इंसान बनाया और अशरफुल मखलूक कहा, यानी कि सभी जातियों में सबसे ऊपर बताया गया है उसे।
0: तो बस तो यही तो हम आपसे सुनना चाह रहे थे। तो मनु जी की और मेरी बातों की जो ये चैन है वो लगातार जारी रहेगी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरा नाम जोकर मूवी का नाम इन्होंने जिक्र किया, उस मूवी के बारे में राज कपूर साहब का जिक्र हुआ है तो उन्हीं की फिल्म का एक बढ़िया सा गाना, कोई गाना जो आपके जहन में हो मेरा नाम जोकर, ठीक है मनु साहब कह रहे हैं सारे गाने अच्छे हैं तो उसी फिल्म का एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं और आप भी थोड़ा सा फ्लैश बैक में पहुंचे, हम भी पहुंचते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, बजे रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: मार्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप आनंद के साथ जुड़े हुए प्रोग्राम में, मनु जी हमारे साथ हैं और आज की ये जो महफिल है वो और भी खूबसूरत हो रही है सर की बातों से, सर के अल्फाजों से, और कुछ न कुछ हम भी बीच बीच में तड़का लगाते ही रहते हैं तभी माहौल और अच्छा बन जाता है। बड़ी खूबसूरत एक लाइन मेरे जहन में आई तो मुझे लगा आपके साथ साझा करनी चाहिए कि पहली बारिश का नशा ही कुछ अलग होता है, पहली बारिश का नशा ही कुछ अलग होता है, पलकों को छूते ही सीधा दिल पे असर होता है।
1: क्या बात है,
0: मतलब मजा आ गया। हालांकि मेरी आवाज में आपको कशिक नहीं महसूस हो रही होगी, फील नहीं हो रही होगी, हमारा जोनर नहीं है, लेकिन मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी और मैं कभी कभी गुलजार साहब को भी पढ़ता रहता हूँ, उनकी भी मुझे बहुत चीजें बहुत प्यारी लगती है
1: और बहुत अच्छा।
0: ऐसे मतलब उसमें इतनी सुंदर सुंदर चीजें पढ़ने को मिलती है, कई बार गजलों से इतनी अच्छी निकल जाती है पंक्तियाँ की, उन्हें पढ़कर ही मतलब सुकून मिलता है, ऐसे लगता हमारे लिए लिखी है सच में। नो डाउट।
1: एक शेर के दो मिसरे मैं आपको, शोख बरसात का मौसम है या अभी जाओ,
0: वाह,
1: शोख बरसात का मौसम है या अभी जाओ,
0: अभी जाओ,
1: मेरे जज्बात का मौसम है या अभी जाओ।
0: अरे वाह क्या बात है, मेरे जज्बात का मौसम है आप ही जाओ, मजा आ गया, क्या बात है। इस माहौल को जो है ऐसे ही बरकरार रखेंगे, मैं आप और आप लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपको मजा आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए या इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, एफ एम मुरादाबाद 89.6 का हमारा ऑफिशियल आईडी है, आप वहां के फॉलो कीजिए। अगर आपके पास भी कोई अच्छा शायर है या आप खुद एक अच्छे शायर है, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, आपको लगता है यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, तो ये मंच आपके लिए भी है। आप हमें इंस्टेंट डीएम करें, रजिस्टर कराएं और अगले दिन हो सकता है आप भी हमारे साथ हों स्टूडियो में। फिलहाल मनु जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, उनसे ढेर सारी बात कर रहे हैं हम और इस माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं आपकी बातों से। तो सर अभी हम जो है जिक्र कर रहे थे, जैसे कि आपने कुछ अल्फाज सुनाए, कुछ बातें कही, मैं चाहूंगा कि उन्हीं को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं।
1: हाँ सही कहा आनंद जी, दरअसल ये गीत का एक मुखड़ा चल रहा था
0: जी जी,
1: और गीत का एक अपना जो मजा है वो ये है कि जब तक वो मुकम्मल ना हो जाए
0: 100%
1: तब तक उसकी बात पहुंच नहीं पाती है। तो फिर हम इस बारिश के गीत में थे, इसे मैं कंटिन्यू करूंगा जैसा कि आपका आदेश है, और आप देखें कि किस किस तरह से, किस मोड़ से चीज कहाँ पहुंचती है,
0: क्या बात है।
1: और अपने श्रोताओं के लिए भी ये क्यूरियोसिटी हम बना के रखते हैं।
0: आपके पास सब कुछ होता है यहाँ, हर हर मर्ज की दवा है आपके पास।
1: अरे जरा नवाजी सर,
0: आते हैं पकड़ के।
1: मैं कंटिन्यू करता हूँ
0: जी।
1: मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि उसके करीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ जिस मैंने जिससे

0: खुश नसीब हूँ, मौसम बरसात है वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। देखें और एहसास करें
1: क्या
0: कि जब बारिश मुसलसल पड़ जाती है
1: जी जी,
0: तो आपने देखा होगा कि बच्चों के भी होठ कांपने से लगते हैं। कोई भी बारिश में जब ज्यादा देर तक टिक जाता है तो होठ बस वो कैफियत आप नजर में रखें और ये संतरे का
1: आप लुत्फ करिएगा। आप सोचिए कि आप बारिश में है, इमेजिन करिए खुद को।
0: उसके कांपते लब पे मेरे दिलो जा कुर्बान, भीगती

0: खुश नसीब हूँ, और खुश नसीबी का क्या आलम है
1: जी,
0: देखें अगला अंतरा। वो संग मरमर है, कोही नूर हीरा है,
1: वाह,
0: उसकी हुस्न अदा और दिल पे हक मेरा है।
1: क्या बात,
0: वो संग मरमर है, कोही नूर हीरा है, उसकी हुस्न अदा और दिल पे हक मेरा है। कौन ये कहता है कि अब मैं गरीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ। मौसम में बरसात है, वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ। और अब इसका अंतिम अंतरा आ रहा है
1: जी,
0: और लौट के हम फिर वापस अपने इस जहान में आ जाते हैं।
1: अरे वाह, बिल्कुल।
0: दर्द दिल सताता है शाम को उजालों में,
1: आहा,

0: मौसम बरसात है, वो भी मेरे साथ है, मैं कितना खुश नसीब हूँ।
1: क्या बात है, मजा आ गया सर। मतलब मुझे इतना मजा आया है तो सोचिए हमारे सुनने वालों को कितना मजा आएगा। ये तो आपने नो अपने टैलेंट को छुपा के रखा था ना ये गाने वाले को, अगली बार हम आपसे पहले गाना ही सुनेंगे। मतलब सच में अमेजिंग यार, इतना बढ़िया आपने गाया। पहले तो आपकी आवाज इतनी अच्छी है,
2: थोड़ा सा
1: नहीं सच में यार मेरे को सुनने में बहुत मजा आया। मुझे पता है हमारे लिसनर को भी बहुत आनंद आ रहा होगा, इतना अच्छा आपने गाया और इतनी गहराइयों से आपने सुनाया, हमें बिल्कुल हमारे सामने पिक्चर चल रही थी। आपने गाना को इमेजिन करना
2: है
1: सच में, लेकिन बहुत
2: हमारे श्रोताओं तक बात ये पहुंच पाई है।
1: जी बिल्कुल,
2: दरअसल क्या है कि इसे तहत में भी पढ़ा जा सकता था, लेकिन जो इसका रोमानी अंदाज है, जो फील है वो इन गुनगुनाहट के साथ है।
1: क्या बात है,
2: ये एक अलग बात है कि हम रफी साहब
1: लेकिन बट सर आपने जिस तरीके से अपने शब्दों को रखा ना गुनगुनाहट में भी, तो वो एक था उसके अंदर एक चाम की है, मजा आ रहा है सुनने में, वो वाइब मिल रही थी आपके शब्दों की और आपके गाने की जो सुर तालमेल थे एकदम बढ़िया वाले थे, तो वो अच्छा लगा मुझे।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
1: सर, आपका भी शुक्रिया। आप इतनी बार आए लेकिन आपने कभी हमें सुनाया नहीं, ये बड़ी गलत बात है, लेकिन आज लगे हाथ आपने सुनाई डाला, बहुत बढ़िया।
2: हाँ दरअसल क्योंकि मौसम है और मौसम में बात है कि मैंने अभी जिक्र किया कि जब महबूब के साथ होता है तो उसका साथ जिंदगी की सबसे बड़ी नियामत होती है।
1: शायर होते ही महबूबा की बात क्यों करते हैं, मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ क्या? मतलब मैं यहाँ मोस्टली जितने भी इंटरव्यूज कर चुका हूँ, हर कोई महबूबा और मतलब मैं क्या बताऊँ, पहली मोहब्बत, ये सब पे बात होती है ज्यादातर। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार क्या चल क्या रहा है देश दुनिया में, हर किसी ने प्यार किया, मैंने नहीं किया शायद, इसीलिए मेरे को समझ नहीं आता क्या जरूरी है सब समझने के लिए प्यार करना।
2: नहीं नहीं, आप क्या चाहें, आप चाहे तो आप चाहे तो छुपा सकते हैं, कोई बात नहीं है
1: सर। आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों,
2: लेकिन
1: सर निशाना कहाँ मार रहे हैं?
2: सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, ये रूह से महसूस करने की चीज होती है। और एक बात और होती है, मैं ये बिल्कुल पुख्तगी के साथ बता सकता हूँ,
1: हाँ जी हाँ जी,
2: वो बताना चाहता हूँ और ये रखता हूँ कि इश्क नहीं दुनियावी यारो,
1: क्या बात है,
2: इल्हाम ही है रास मियां, रूह से रूहों का रिश्ता है, दिल ने जिसे पिरोया है,
1: क्या बात है।
2: तो ऐसी कंडीशन में कि जब व्यक्ति दुनियादारी के बारे में सोचता है तो वो उस प्रेम को, उस इश्क को, इस जज्बे को फील करना उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है, और जो इसे डीपली सेंटीमेंट्स के साथ फील करता है इस रूहानी एहसास को, वो दुनिया उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है।
1: सर बहुत मजा आ रहा है आपकी बातों में, ऐसे सारे लिसनर भी खो गए हैं, मैं भी खो गया हूँ, मुझे जागना पड़ेगा कि मैं रेडियो में बैठा हूँ। तो अभी एक काम करते हैं कि अच्छा से गाना सुनते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे, क्योंकि दोबारा के लिए भी सर को दोबारा बुलाना है ना, तो पिटारे को थोड़ा संभाल के रखना है, इनके पास बहुत बड़ी पोटली है, तो उस पोटली में से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी रखी जाए, क्यों मनु जी?
2: अरे बस ये आपकी मोहब्बत है जो
1: अभी अभी हम थोड़ा सा
2: और हमें भी उस जिंदगी को, उस पास्ट को जीने के लिए मजबूर
1: करती है, और
2: मजबूर नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस मामले में कि
1: ये शुक्राना जो है, एक कप चाय से होगा, ऐसे नहीं होगा, खाली खाली शुक्राने से काम नहीं चलता मनु जी, है ना?
2: क्या बात है, हाँ मौसम भी इजाजत दे रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, तो हम बिल्कुल आपसे अभी इजाजत नहीं ले रहे, लेकिन एक गाने की इजाजत जरूर चाहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, और अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप फरमा सकते हैं साहब, अपने दिल की बात हम तक रख सकते हैं हमारे मैसेजेस के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं, जाइए अपने मैसेज बॉक्स में, टाइप कीजिए अपना नाम और अपना प्यारा संदेश, उसको छोड़िए ना हमारे नंबर पे 9837896896, 9837896896 पर।

0: मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस एपिसोड को सुनने के बाद जितनी खुशी आपको मिल रही है ना, उतनी खुशी सर के बच्चों को भी मिल रही है। अरे वाह पापा, रेडियो पे बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रहे हो, कभी इतना हमें नहीं सुनाया आपने। रेडियो पे बैठ के जनता बहुत गाने सुनाते हो, बच्चों को भी सुनाते हो या नहीं? कुछ ऐसा बढ़िया सा कभी रिक्वेस्ट आती है बच्चों की, पापा आज कुछ सुना दो बढ़िया सा?
1: नहीं नहीं, बच्चे भी पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर होता यही है कि घर की मुर्गी भी दाल बराबर होती है।
0: नहीं, आपने वो बात बिल्कुल सही कही है, मेरे दिल की बात आपने छीन ली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके घर का एक माहौल ऐसा बनता जा रहा होगा ना, कि कहीं ना कहीं बच्चे भी फिर वो ढलते चले जाते हैं, उनको भी वो चीजें पसंद आने लगती है। जितना मुझे लगता है
1: बच्चों का और हमारी शरीर के हयात का और परिवार में जो भी है सभी का बड़ा सहयोग रहता है।
0: अरे वाह,
1: बड़े प्यार से जो है अपनी जिंदगी चल रही है, ये
0: चलिए हमारी तो शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, आपकी ये जो गाड़ी है वो ऐसी चलती रहे, बस हमारा भी यही आपके लिए कहना है जी। सर तो चलते चलते देखिए, इस घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही, और कैसे हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ये तो आपकी कह सकते हैं जर्रे नवाजी है, जो आपने इतने खूबसूरत तरीके से जो है पेश किया हमारे साथ कार्यक्रम, मजा आ गया। कैसे मतलब टाइम हो गया पता ही नहीं चल रहा है।
1: अरे नहीं यार आनंद जी, एक बात मैं बताऊं कि जब भी श्रोताओं से मिलने का मेरा मौका होता है तो मेरे अंदर भी एक अलग उत्साह आ जाता है।
0: वो तो मैं देखता हूं,
1: और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यार आनंद जी, जो तुमने मुझे बुलाया है वो मेरे मन की बात छीन लिए, या तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसा रहता है।
0: अरे वाह क्या बात।
1: चलिए एक मौजू बदलते हुए एक शेर मैं आपके
0: बीच जरूर सुनना चाहूंगा, इरशाद स्वागत है।
1: अभी मरासिम की बात चल रही थी, संबंधों की बात चल रही थी, तो मैं दो लाइन रखता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जमाना बहुत बदल रहा है और लोग मोहब्बत को भी उसकी कमी समझ बैठते हैं।
0: तो बिल्कुल सर,
1: तमाशा बन के रह जाए मरासिम, तमाशा बन के रह जाए मरासिम, मोहब्बत में कभी इतना न झुकना,
0: वाह
1: उसी की जी हुजूरी मार देगी, मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना।
0: क्या बात,
1: मोहब्बत में अजी इतना ना झुकना,
0: मोहब्बत में इतना ना झुकना, वाह। लेकिन सर मोहब्बत में झुके बिना काम नहीं चलता ना।
1: हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, ये इश्क की बाजी है।
0: हाँ।
1: और जो हार जाता है वही जग को जीत देता है।
0: क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
1: लेकिन यहाँ मैंने अभी जैसे जिक्र किया
0: जी
1: कि जमाना बहुत बदल गया है, लोग आपकी शराफत को अलग तरीके से भी देखने लगते हैं।
0: ये बिल्कुल सही बात,
1: और यकीनन तो है ही है कि जो घटिया लोग होते हैं वो उसका अक्सर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
0: सही बात,
1: वो चाहते हैं कि उनके साथ वही ब्रूटल स्वभाव को रखा जाए ताकि वो अपनी औकात समझते में नीचे रहें। लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूं कि हमें जो अपनी सादगी है, जो अपनी मासूमियत है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए।
0: क्या बात,
1: इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्रोताओं के साथ विदा लेते हैं।
0: आपने मनु जी आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छी बात भी कह दी जाते जाते हैं। तो बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी की वजह से खुद को नहीं बदलना है,
1: बिल्कुल,
0: जो हम हैं वो हमें रहना
1: डेफिनेटली
0: है ना
1: जी,
0: जो
1: जी,
0: आपकी नेचुरलिटी है, जो आप नेचुरल है, जो आप ओरिजिनल है, उसको ही रखिए। मेरा मानना तो ये है, जो जैसा है।
1: अरे हमारे गाली चचा कह गए भाई, बस

0: जी, तो बाकी श्रोताओं अब हम लेंगे आपसे जाने की इजाजत, कुछ अच्छे गीत आपके लिए छोड़ के जाएंगे, जल्दी मनु सर के साथ वापस जुड़ेंगे कुछ और नई रचनाओं के साथ, कुछ नए गीतों के साथ, कुछ और नई उनकी प्यारी सी शायरियों के साथ,
1: फिर
0: वो आपके दिल के तरानों को
1: छेड़ेंगे।
0: हाँ जी,
1: हमेशा हाजिर हूँ।
0: हाँ,
1: जब चाहे।
0: बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और वैसे भी हमारी मुलाकात तो चलते फिरते कई बार हो ही जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी श्रोताओं, आपसे भी हमारा यही कहना है कि अगर आप भी कुछ अच्छा करते हैं तो उसे करते रहिए, सही दिशा में काम करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन पहचान आपको भी मिलेगी। बस वही है कि अपने कर्म को मत छोड़ो, जो आप चाहते हो वो आप करते रहो। बाकी अभी मैं लेता हूं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी होगी मुलाकात कुछ अच्छे गीतों के साथ। आप जो है आनंद लेते रहिए एफएम मुरादाबाद का। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर कुछ और नए साथियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। 2023-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
2: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
1: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
2: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।